0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

से हो। चल चल चल चल चल चल उड़न चल रे सागर पार करे हनुमाना। चल चल चल चल

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
2: सुप्रभात श्रोताओं, घड़ी मिलाते चलें। इस समय सुबह के ठीक 6 बजे हैं। ये जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।
3: को मेरा नमस्कार। कांटोरेल मामले में पिंक कपड़े पहने हुए और कथित रूप से तलवार लिए उस युवती को कल CCID में पेश की गई। हिंसा की घटनाओं के 15 दिन बाद उससे पूछताछ की गई और उसके वकील राव गुलबुल भी उसके साथ थे। 22 साल की इस युवती ने इस आरोप से इनकार किया है। उसने घटनास्थल पर अपनी मौजूदगी की पुष्टि की और बताया कि वहां के कुछ निवासी उस पर और उसके दोस्तों पर हमला करना चाहते थे और उनका वाहन जला देना चाहते थे। उन्हें जंगल में शरण लेनी पड़ी और बाद में SMF द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया। पाइकी इस निवासी को पूछताछ के बाद घर लौटने की अनुमति दी गई। पूर्व वित्त मंत्री रंगनाथन पदयाची को कल सेंट्रल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनसे उन बयानों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया जिनमें कहा गया था कि बैंक ऑफ मॉरिशस ने 2025 में 83 बिलियन रुपए छापकर सरकार को ट्रांसफर किए गए थे। साहित्य, कला और मानवता के प्रतीक रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके 165वें जन्म वर्ष पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर संस्थान में कल आयोजित समारोह में इस वर्ष का टैगोर मेमोरियल लेक्चर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने प्रस्तुत किया। विदेश में इसराइल और हेजबुला के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इसराइली ताकतों ने दावा किया है कि उन्होंने लबनान सीमा के पास स्थित ऐतिहासिक किले पर कब्जा कर लिया है। अरब मौसम का हाल, पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है सुबह के समय और इस बीच हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह को देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी। दिन के दौरान मौसम अच्छा रहेगा, रात को भी मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिण पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान, सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 23 से 26, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:38 पर, सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा। तो मौसम की इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला।

0: ना हम मिलेंगे 6:30 बजे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:04 होने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई कुछ विज्ञप्तियों पर नज़र डालते चले। ये वाकवा के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए है। कॉम मुंबई नंबर 1, 2, 3 और 4, देवियागु रोड, गौपा रोड, मौसलमा ईदू, पेरिया रोड, रेलवे रोड, लामागी रोड, कारोसोंज, मौसलमा गायुत, नाथू लेन, लालू लेन, फ्रीलैंड लेन, बक्सू लेन और कौ टिकफिन के निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 7 जून को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन शाम के 5 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। और अंत में है बुतोन के आसपास के इलाके, जिनमें है टूटकोट लेन, एपास रामजान, एनफील्ड रोड के निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 4 जून को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्तियां जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
2: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
3: सुप्रभात श्रोताओं, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम एवार्ड 19 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:06 होने को हैं। हृदय की गहराई से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जून का महीना, 2 तारीख, 2026 का वर्ष और मंगलवार का दिन। मैं हूँ रत्ना, उपस्थित हो चुकी हूँ आपकी सेवा में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का दिन सभी के लिए बहुत ही सुखदायी रहे, मंगलमय रहे, यही शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे कार्यक्रम मानस मोती के साथ और ये कार्यक्रम रामायण सेंटर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर वीनू अरुण सदाबहार गीतों के साथ। नहीं पर हम आज हम जुड़ेंगे एक विशेष कार्यक्रम के साथ। जी हाँ, एक विशेष कार्यक्रम, और ये विशेष कार्यक्रम सत्यार्थ प्रकाश मास पर आधारित रहेगा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी श्रीमान रामधनी जी और ये कार्यक्रम आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा ठीक 6:20 पर। सदाबहार गीतों का सफर रहेगा सुबह का नजराना कार्यक्रम में, जो चलेगा समाचारों के बाद। 6:30 बजे हम जुड़ेंगे समाचार बुलेटिन के साथ। तो आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ। हीरा परखने वाले से ज्यादा पीड़ा परखने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। आइए इसी के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर वीनू अरुण का मानस मोती कार्यक्रम में।
4: सुनिए मानस मोती रामायण सेंटर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम।

रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मोती कार्यक्रम में मैं वीनू अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज जो चौपाइयाँ मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ उनमें जीवन के एक बहुत गहरे सत्य का निरूपण किया गया है। क्या हैं वो चौपाइयाँ? माँ तु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिश सुनु हरि जाना, मित्र करई सतरि पुके करनी, ता कह बिबुद नदी बै तरनी, सब जगुता ही अनलहुद ते ता।

ता जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। काकभुशुंडी जी गरुण जी से कहते हैं कि हे गरुण जी सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं जैसा व्यवहार करने लगता है। देव नदी गंगा उसके लिए बैतरणी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी से विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। ये चौपाइयाँ उस प्रसंग में आई हैं जब देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कौए का रूप धरकर सीता जी के चरणों में चोंच मार करके भागता है। राम जी ने धनुष पर सींक का एक बाण संधान किया और मंत्र से प्रेरित होकर जब वह ब्रह्म बाण दौड़ा तो वो कौआ भयभीत होकर भागने लगा। वो अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, लेकिन राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने भी अपने पुत्र को शरण नहीं दी। तब वह निराश होकर समस्त लोकों में भय और शोक से व्याकुल होकर भागता रहा, पर किसी ने भी उसे आश्रय नहीं दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, भला राम जी के द्रोही को कौन शरण देना चाहेगा। श्रोताओं, जब हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का भाव रहता है, तब जीवन की कठिनाइयां भी साधक को विचलित नहीं कर पाती। किंतु जब मनुष्य भगवान से दूर हो जाता है तो जीवन के मधुर और प्रिय संबंध भी उसके लिए पीड़ा और दुख का कारण बन जाते हैं। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा में ये विश्वास बड़ी गहराई से निहित है कि मानव जीवन की वास्तविक सुख शांति केवल परमात्मा की कृपा और उनके प्रति समर्पण से ही संभव है। संसार के जितने भी संबंध हैं, सुख सुविधाएं हैं, उपलब्धियां हैं, तभी तक सार्थक दिखाई देती हैं जब तक मनुष्य का अंतःकरण ईश्वर से जुड़ा रहता है। और जैसे ही मनुष्य का मन भगवान से विमुख होता है, वैसे ही जीवन का संतुलन डगमगाने लगता है। और वही संसार जो कभी आनंद और आश्रय का आधार था, वही धीरे धीरे भय, क्लेश और दुख का कारण बन जाता है। ये गहन आध्यात्मिक सत्य भक्तिकाल के महान संत कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत ही मार्मिक और प्रभावपूर्ण शैली में व्यक्त किया है। इन चौपाइयों में ये बताया गया कि जो व्यक्ति भगवान राम से विमुख हो जाता है, उसके लिए सारा संसार दुखदायी हो जाता है। जिस माता को स्नेह, करुणा और जीवन का आधार माना जाता है, वही मृत्यु के समान प्रतीत होने लगती है। अमृत भी विष के समान लगता है। और जो मित्र सामान्य रूप में प्रेम और सहयोग का आधार होता है, वह शत्रु के समान आचरण करने लगता है। और गंगा नदी वैतरणी की नदी की तरह भयावह हो जाती हैं। इस प्रकार कवि ये संकेत देते हैं कि जब मनुष्य पर भगवान की कृपा नहीं रहती या वह स्वयं भगवान से दूर हो जाता है, तब जीवन की सारी मधुरता समाप्त होने लगती है और सारे संबंध अपनी वास्तविक गरिमा खो देते हैं। इन चौपाइयों में केवल संबंधों की कटुता का वर्णन नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से तुलसीदास जी मानव जीवन के एक गहन आध्यात्मिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। संसार का सुख और दुख केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये मनुष्य की अपनी आध्यात्मिक स्थिति से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब मनुष्य भगवान से जुड़ा रहता है, तब वही संसार उसके लिए आनंद का स्थल बन जाता है। किंतु जब वह भगवान से विमुख हो जाता है, तो वही संसार उसके लिए दुख और भय का कारण बन जाता है। इस प्रकार ये चौपाइयाँ ये स्पष्ट करती हैं कि

0: परमात्मा की कृपा ही जीवन की वास्तविक मधुरता का आधार है। इसी तथ्य को अनेक स्थलों पर तुलसीदास जी ने अभिव्यक्त किया है, रेखांकित किया है। एक जगह उन्होंने कहा कि गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरु रेनु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। उसके लिए यानी जिस पर प्रभु की कृपा होती है, जिसे राम जी एक बार कृपा करके देख लेते हैं, ऐसे मनुष्य के लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है, सुमेरु पर्वत उसके लिए धूल के समान हो जाता है। तो प्रभु की कृपा हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है, प्रभु से प्रेम करना, प्रभु की शरण में जाना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को तुलसीदास जी इन चौपाइयों में, जिसे मैंने अभी आपके सामने रखा, अभिव्यक्त करते हैं। वे बताते हैं कि जब मनुष्य पर भगवान राम की कृपा होती है, तब जीवन की कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। और इसी बात को एक जगह जामवंत जी राम जी के समक्ष कहते हैं कि जामवंत कह सुनु रघुराया, जापर नाथ करहु तुम दाया, ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी बिनई गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। हे रघुनाथ जी सुनिए, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण प्राप्त होता है, उसी का निरंतर कुशल होता है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी ऐसे व्यक्ति पर प्रसन्न रहते हैं। वही व्यक्ति विजयी होता है, वही विनयी कहलाता है और वही व्यक्ति गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है, जिस पर आपकी कृपा होती है। इस बात को अनेक स्थलों पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत ही गहराई के समक्ष के साथ रखा है कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सुफल यही है कि वो परमात्मा की शरण में जाए, क्योंकि जो परमात्मा की शरण में जाता है उसी पर प्रभु की कृपा होती है। और ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक सत्य है कि परमात्मा की कृपा से जीवन के संकट, भय और बाधाएं अपनी शक्ति खो देते हैं। जब मनुष्य भगवान से विमुख हो जाता है, तब संसार की सारी मधुर वस्तुएं दुखदायी बन जाती हैं। इसलिए यदि जीवन में यश प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, हर प्रकार की सफलता प्राप्त करनी है, तो प्रभु की शरण में जाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और श्रोताओं, आज इन्हीं चौपाइयों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस मोती।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर और ये कार्यक्रम है एक विशेष कार्यक्रम सत्यार्थ प्रकाश मास पर आधारित आर्य सभा मॉरिशस द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमान रामधनी जी, आइए उनका स्वागत करते हैं और यही कार्यक्रम हमें जोड़ेगा 6:30 बजे के समाचारों के साथ। मिलते हैं आपसे सुबह का नजराना कार्यक्रम के अंतर्गत।
2: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

नमः। प्रिय श्रोतागण, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश जयंती के संदर्भ में आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 12 जून 18

सौ चौहत्तर वह महत्वपूर्ण तिथि है जब इस युग के क्रांतिदूत एवं युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना सर्वोत्कृष्ट एवं कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना का कार्य प्रारंभ किया था और लगभग साढ़े तीन महीनों में संपूर्ण कर दिया था। महर्षि दयानंद सरस्वती की समस्त मानव जाति पर महती कृपा रही है, कारण कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश अर्थात सत्य के अर्थ को दर्शाने वाले ग्रंथ में 377 ग्रंथों का निचोड़ तथा 1542 प्रमाणों को उद्धृत कर यह अनमोल ग्रंथ तैयार करके सबके हितार्थ उपलब्ध कराया है। सत्यार्थ प्रकाश दो भागों में विभक्त है, पहला पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 10 समुलास है और उत्तरार्ध में 4 समुलास। महर्षि दयानंद सरस्वती वह पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने अध्याय के बदले समुलास शब्द का प्रयोग किया। समुलास अर्थात जिससे पढ़ने के बाद मन उल्लास से भर आए। अतः सत्यार्थ प्रकाश के 14 समुलास हैं। 19वीं सदी के क्रांतिदूत एवं युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने मानव समाज में फैली अविद्या, अंधकार, अंध परंपरा, अंधविश्वास आदि सामाजिक बुराइयों का गहरा अध्ययन किया था, जिसके कारण मनुष्य दुख की बेड़ियों में ऐसे जगड़े थे कि इन बंधनों से मुक्त होकर विकास की ओर नहीं बढ़ पाते थे। महर्षि ने हर एक समुलास में एक महत्वपूर्ण विषय की समीक्षा कर मानव समाज को उत्कृष्ट बनाने का समाधान प्रस्तुत किया है। अतः पहले समुलास में महर्षि ने ईश्वर के 100 नामों की अर्थ सहित व्याख्या करके समझाया है कि ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव से कई नाम होते हैं, मगर ईश्वर एक ही है और उसी परमपिता परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। दूसरे समुलास में संतानों की शिक्षा, अंधविश्वास और जन्मपत्र आदि से बच्चों की क्या हानि हो सकती है, इस पर प्रकाश डाला है। तीसरे समुलास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुलास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार का उल्लेख है। पंचम समुलास में वानप्रस्थ और संन्यास की विधि और कर्तव्य की चर्चा की गई है। छठे समुलास में राजधर्म विषय एवं दंड प्रधान विधि, इसमें महर्षि ने बताया है कि राष्ट्र में सर्वांगीण विकास के लिए 3 सभाओं का होना अनिवार्य है, राज्यार्य सभा, धर्मार्य सभा और विद्यार्य सभा। एक राष्ट्र में प्रजा से लेकर राजा तक कोई भी दंड विधि से मुक्त नहीं। सप्तम समुलास में वेद और ईश्वर विषय की व्याख्या है। अष्टम समुलास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की सुंदर व्याख्या। नवम समुलास में विद्या, अविद्या, बंधन और मोक्ष पर अच्छी तरह समझाया व्याख्या की गई है। नवम समुलास में विद्या, अविद्या, बंधन और मोक्ष की व्याख्या है। दसवें समुलास में आचार, अनाचार और भक्ष, अभक्ष विषय पर प्रकाश डाला है। 11 से 14 समुलास तक महर्षि ने संसार के विभिन्न मत मतांतरों की समीक्षा करते हुए सत्य धर्म पर प्रकाश डाला है। आज महर्षि हमारे बीच नहीं है, पर उनकी अमृतमयी कृति सत्यार्थ प्रकाश विश्व भर में सुरक्षित है, जिनसे लाखों करोड़ों ही नहीं संसार के असंख्य लोगों ने मार्गदर्शन प्राप्त किया है और भविष्य में भी प्राप्त करते रहेंगे। महर्षि की मान्यताएं और सिद्धांत निजी नहीं है, बल्कि वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल है, जो न केवल आर्य समाजियों के लिए है अपितु मनुष्य मात्र के लिए है। यह महाग्रंथ अब तक 23 भाषाओं में अनुवादित हो चुके हैं और विश्व के उन कुछ एक ग्रंथों में से हैं जिनके संस्करण सबसे अधिक निकाले गए हैं तथा बिक्री भी अधिक हुई है। यह ग्रंथ अब तक बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों, विचारकों एवं मनीषियों के लिए प्रेरणाप्रद रहा है। महर्षि के इस कालजयी ग्रंथ को देश विदेश के कई धर्मों के विद्वानों, राजनेताओं ने
इसे अमर ग्रंथ

0: पथ प्रदर्शक, ज्ञानदीप, युग के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ आदि न जाने अन्य कितने नामों से अलंकृत किया है। इतिहास शिरोमणि विद्वान डॉक्टर भवानीलाल भारतीय ने इसे विश्व धर्मकोश की संज्ञा दी है। मॉरिशस में आर्य सभा के प्रादुर्भाव और विकास का एकमात्र कारण सत्यार प्रकाश ही है। इसलिए आर्य सभा ने जून मास को दशकों से सत्यार प्रकाश मास घोषित किया है और इस मास के अंदर सत्यार प्रकाश पर विशेष प्रवचन, विचार गोष्ठी का भव्य आयोजन पूरे देश में किया जाता है और सत्यार प्रकाश के स्वाध्याय के लिए जनता को प्रेरित करते हैं। इस जून महीने में भारत से एक प्रसिद्ध विद्वान आचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री हमारे बीच हैं और पूरे मास सत्यार प्रकाश पर प्रवचन और चिंतन का कार्यक्रम चलेगा। आर्य बंधुओं एवं समस्त जनता से विनम्र आग्रह है कि आचार्य जी की विद्वता से लाभ उठाने का पूर्ण प्रयत्न करें। साथ ही हम ये भी कहेंगे कि हर व्यक्ति को जीवन में एक बार सत्यार प्रकाश का पढ़ लेना जीवन के लिए बहुत ही कल्याणप्रद रहेगा। इति ओम शम।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह के 6:30 बजे है।

0: सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। राष्ट्रीय सभा की कार्य आज दिन के 11:30 बजे विपक्ष नेता जो रिजोंग की प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन से होगी। एजेंडा में कुल 60 से अधिक प्रश्न है, जिनमें से लगभग 20 प्रश्न प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से पूछे जाएंगे। अफ्रीका की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इथियोपियन एयरलाइंस बहुत जल्द मॉरिशस के प्लेनमायों के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। पिछले सप्ताह इस नई सेवा की घोषणा की गई। इथियोपियन एयरलाइंस इस नए मार्ग पर सप्ताह में 3 उड़ानों का संचालन करेगी। जुलाई 2026 से मॉरिशस में कई सामाजिक अकाउंट्स में धीरे धीरे कमी किए जाने की संभावना। इन परिवर्तनों के केंद्र में सेजे इनकम अलाउंस स्कीम है, जिनका प्रबंधन मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य उन कर्मचारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनकी मासिक आय निर्धारित सीमा से कम है। और विदेश में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। कांटोरेल में पेश आई घटना के सिलसिले में उस दिन पिंक कपड़े पहने और कथित रूप से तलवार लिए उस युवती को कल CCID में पेश किया गया। हिंसा की घटनाओं के 15 दिन बाद अपने वकील अगाफ गुलबुल की मौजूदगी में उससे पूछताछ की गई। 22 साल की इस युवती ने इस आरोप से इनकार किया है। उसने घटना स्थल पर अपनी मौजूदगी की पुष्टि की और बताया कि वहां के कुछ निवासी उस पर और उसके दोस्तों पर हमला करना चाहते थे और उनका वाहन जला देना चाहते थे। उन्हें जंगल में शरण लेनी पड़ी और बाद में SMF द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया। पाइकी से निवासी को पूछताछ के बाद घर लौटने की अनुमति दे दी गई। चलिए उनके वकील गौफ गुलबुल को सुनते हैं।
1: Donc il y a une sortie et une motion bail pour ban du monde qui fait amener dans l'affaire de Cantourelle. Mais certainement c'est qui mon cas j'ai ça madame la patine à sable de cela. Alors que tu filmes la vie à vous trouver. Prends film là zoom li gété patine à sable de cela.
2: Qui t'était ça mettre?
1: Mon bezao patine à sable
2: avec au client.
1: Mon bezao non, mon pas dire voir avec mon client j'ai moi. C'est mon bezao ça ban c'est qui peut passer l'eau.

0: La femme au sable, c'est pas grêté, parce qu'il y a un sable dans la main. On dit au pays dans le sable.
1: और इस मामले में हिरासत में मौजूद संदिग्धों की जमानत पर रिहाई के लिए याचिका आज 2 जून को मोका की अदालत में विचार किया जाएगा। पूर्व वित्त मंत्री रंगना देन पदयाची कल दिन के 1:30 बजे अपने वकील राउफ गुलबुल के साथ पोर्ट लुइस के CCID पहुंचे। पदयाची जिन के खिलाफ 16 मई से बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी, उनके साथ पूछताछ शाम 4:15 बजे तक चली। उन्होंने 11 मई को फेसबुक पर प्रकाशित एक वीडियो में कहा था कि सरकार ने पिछले साल 83 बिलियन रुपए छापे। पदयाची ने कहा कि वे संपन्न आर्थिक बहस के अपने अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं। बैंक ने उनके इस बयान को अगले ही दिन खारिज कर दिया था। पूर्व वित्त मंत्री रंगना देन पदयाची को सुनते
2: हैं। Économique serein. L'économie, c'est un débat permanent, contradictoire. C'est pas une science figée. Donc, c'est un débat en permanence. On peut être d'accord avec moi, on peut ne pas être d'accord avec moi. Je peux être d'accord avec vous. On commence à empêcher que les gens émettent des opinions. Vous vous rendez compte, un ancien ministre des Finances, imaginez-vous quelqu'un qui va dire quelque chose par rapport à l'économie. Il n'aura plus le droit. Il n'aura plus le droit parce qu'on va utiliser la loi pour empêcher cette personne de parler.
1: राष्ट्रीय सभा की कार्य आज दिन के 11:30 बजे विपक्ष नेता जूलियस रोंगा के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन से होगी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम होगा। एजेंडा में कार्यसूची में कुल 60 से अधिक प्रश्न हैं, जिनमें से लगभग 20 प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम को संबोधित होंगे। ये प्रश्न संवेदनशील मामलों से संबंधित हैं, जिनमें रोड्रिग्स नशे के खिलाफ लड़ाई, सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन और प्रशासनिक सेवाएं शामिल हैं। चलिए जेनी येलापा की रिपोर्ट पर सुनते हैं अशिता रघु को।
3: आज राष्ट्रीय सभा की कार्यवाही सत्र में शासन यानी गवर्नेंस, सार्वजनिक सेवाओं तथा देश की आर्थिक स्थिति से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। विशेषकर वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट प्रस्तुत किए जाने से पूर्व सबसे पहले गोम्बी पुथोदो चुनाव क्षेत्र के सांसद राम इतवरिया प्रधानमंत्री से वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट की तैयारियों के तहत आयोजित परामर्श बैठकों तथा उनमें शामिल हितधारकों के बारे में जानकारी मांगेंगे। सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी से जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 के बीच प्राप्त वैट से संबंधित एक प्रश्न भी उठाया जाएगा। वित्तीय मामलों से जुड़े एक अन्य मुद्दे पर रिविया डिजांगी सुयाक चुनाव क्षेत्र के सांसद रोशन जमन कोविड-19 प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट फंड के मामले पर प्रश्न करेंगे। वे वर्ष 2022 में सिल्वर बैंक में निवेश किए गए 2.5 बिलियन रुपए के विथड्रॉवल तथा शेष 500 मिलियन रुपए की राशि की वर्तमान स्थिति पर स्पष्टीकरण चाहेंगे। वहीं सांसद जोआना बेरांजे एकाधिकार यानी मोनोपोलिस्टिक और अर्ध एकाधिकार यानी क्वाजी मोनोपोलिस्टिक वाली बाजारों में मूल्य नियंत्रण के मुद्दे को उठाएंगी। वे जानना चाहेंगी कि क्या एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग निर्धारण पर नियंत्रण के मामले में कंपटीशन कमीशन को अप्रभावी माना जा रहा है और इसी कारण एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। सार्वजनिक सेवाओं के संचालन पर भी चर्चा का केंद्र रहेगा। पोर्ट लुइस नॉर्थ मोटाइलोंग निर्वाचन क्षेत्र के सांसद लुडोविक काजेन प्रधानमंत्री से कैश ऑफिसर्स के कार्य समय को दोपहर 2:30 बजे के बाद तक बढ़ाने तथा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नकदी रहित पेमेंट प्रणाली लागू करने की संभावनाओं पर सवाल पूछेंगे। रोड्रिक से संबंधित एक प्रश्न में पो माथ्यूरें ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। साथ ही पिछले 5 वर्षों में ड्राइविंग परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या और जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंसों के आंकड़ों पर भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। सांसदों के प्रश्न सत्र के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल विधेयक पर बहस फिर से शुरू होगी। इसके अलावा सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन 2024-2025 नंबर टू बिल भी राष्ट्रसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इस विधेयक में वित्त वर्ष 2024

0: 2025 के दौरान सरकार के संचालन और निवेश संबंधी अतिरिक्त खर्चों के लिए प्रावधान किया जाएगा।
1: अब तक मॉरिशस से अडिस अबेबा जाने के लिए यात्रियों को जोहान्सबर्ग, नैरोबी या अंटानानारिवो में ठहराव करना पड़ता था। अफ्रीका की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इथियोपियन एयरलाइंस बहुत जल्द मॉरिशस के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। पिछले सप्ताह इस नई सेवा की घोषणा की गई थी। इथियोपियन एयरलाइंस इस नए मार्ग पर सप्ताह में 3 उड़ानों का संचालन करेगी। प्रणव बिहारी की रिपोर्ट पर सुनते हैं करुणा लालू को।
2: ये उड़ानें बुधवार, शुक्रवार और रविवार को भरी जाएंगी। 12 जुलाई को अडिस अबेबा से सुबह 8:50 पर उड़ान भरी जाएगी, जो मॉरिशस को दोपहर 3:20 पर पहुंचेगी। वापसी में यात्री मॉरिशस से शाम 4:15 रवाना होंगे। रात 9:45 इथियोपिया की राजधानी अडिस अबेबा पहुंचेंगे। इस मार्ग पर इथियोपियन एयरलाइंस अपने लोकप्रिय विमान बोइंग 737 MAX 8 का उपयोग करेगी, जिसमें 16 बिजनेस क्लास और 144 इकोनॉमी क्लास सीटें उपलब्ध हैं। ये विमान क्षेत्रीय और मध्यम दूरी की उड़ानों के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। एयरलाइन वर्तमान में ऐसे 29 विमानों का संचालन कर रही हैं और पिछले वर्ष नवंबर में 11 अतिरिक्त विमानों का ऑर्डर भी दिया गया था, जिससे उसके कुल ऑर्डर की संख्या 44 हो गई। समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेफिन टास्यू के अनुसार मॉरिशस के लिए ये नई उड़ान कंपनी की अफ्रीकी विस्तार रणनीति का हिस्सा है। इस नई कनेक्टिविटी से दोनों देशों के बीच पर्यटन और व्यापार आदान प्रदान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
1: जुलाई 2026 से मॉरिशस में कई सामाजिक भत्तों यानी अकाउंट्स में धीरे धीरे कमी किए जाने की संभावना है। इस फैसले ने विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के बीच कई सवाल और चिंताएं पैदा कर ली है। इन परिवर्तनों के केंद्र में सेर्जे इनकम अलाउंस स्कीम है, जिनका प्रबंधन मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनकी मासिक आय निर्धारित सीमा से कम है। हजारों परिवार इसका असर हजारों परिवार पर पड़ सकता है, जो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस सहायता पर निर्भर हैं। जेनी येलप्पा, अशिता रघु।
0: जुलाई 2026 से मॉरिशस के सोशल रजिस्टर में पंजीकृत नहीं होने वाले लाभार्थियों के अकाउंट में धीरे धीरे कमी की जाएगी। ये सहायता उन लाभार्थियों और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोगों के लिए हैं, जिनकी मासिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति महीने में 20,000 रुपये से कम कमाता है, तो उसकी सहायता राशि 1,000 रुपये कर दी जाएगी। जिनकी आय 20,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच हैं, उन्हें लगभग 833 रुपये मिलेंगे। 25,000 से 30,000 रुपये कमाने वालों को 667 रुपये मिलेंगे। 30,000 से 50,000 रुपये मासिक आय वाले लाभार्थियों को 500 रुपये का अलाउंस दिया जाएगा। साथ ही रेवेन्यू मिनिमम गारंटी अलाउंस उन फुल टाइम कर्मचारियों को दी जाएगी, जिनकी मासिक आय 20,000 रुपये से कम है। ये अलाउंस जुलाई 2026 से अधिकतम 1,890 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकता है। जो लोग इस लाभ से फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के पास अपनी बैंक जानकारी पंजीकृत करनी होगी, जो उसकी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार, इन बदलावों का उद्देश्य कम आय वाले कामगारों के लिए सहायता बनाए रखना और सामाजिक सहायता प्रणाली को धीरे धीरे पुनर्गठित करना है।
1: भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर है। इस अध्ययन यात्रा का उद्देश्य है अलग अलग देशों के विकास मॉडल, प्रशासनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय चुनौतियों को करीब से समझना। इसी कड़ी में डेलीगेशन ने कल एबन में मंत्री शकील मोहम्मद से मुलाकात

0: की करुणा लालू।
1: मॉरिशस उन 16 देशों में शामिल हैं जिसे नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज के एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन प्रोग्राम के संदर्भ में चुना गया। इस पहल का मकसद दुनिया के विभिन्न इलाकों के नागरिक और सैनिक उच्चाधिकारियों को विकास, शासन और सहयोग की चुनौती

0: उच्चाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल वर्तमान में मॉरिशस में है। भारत में 11 महीने के एक प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं जिसके दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति का अध्ययन कर रहे हैं। सैद्धांतिक भाग पूरा होने पर 16 देशों में जाएंगे। इनमें मॉरिशस शामिल हैं जहाँ की संस्कृति और हमारे द्विपक्षीय संबंधों का अध्ययन कर भारतीय सरकार को सुधार के मार्ग का प्रस्ताव करेंगे।
1: And to suggest to the government of India how we can improve upon that. So that is the main focus of our tour over here.
0: इस डेलीगेशन का स्वागत भूमि एवं आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने किया। कई विकास बिंदुओं पर चर्चा की गई जिनमें भारत के समर्थन से मॉरिशस सरकार द्वारा साकार की जाने वाली परियोजनाएं भी शामिल
2: रहीं।
0: पर्यावरण क्लाइमेट चेंज मंत्रालय की नीति, मकान निर्माण को लेकर नीति, डिजिटल स्ट्रेटेजी आदि पर सवाल किए गए, यह प्रमाणित करता है कि दुनिया में मॉरिशस की एक अहम जगह है। ये डेलीगेशन 6 जून तक मॉरिशस में रहेगा। कई मुलाकातें निर्धारित हैं, खासकर पुलिस कमिश्नर और विभिन्न मंत्रालयों के साथ जिनमें विदेश मंत्रालय भी शामिल हैं।
3: और साहित्य, कला और मानवता के प्रतीक रवींद्रनाथ टैगोर को उनके 165वें जन्मवर्ष पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रवींद्रनाथ टैगोर संस्थान में कल एक समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष का टैगोर मेमोरियल लेक्चर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने प्रस्तुत किया। विधिमा सिबुरन की ये विशेष रिपोर्ट।
4: कवि, दार्शनिक और साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा, रचनात्मकता और मानवतावाद के अपने दृष्टिकोण से पीढ़ियों को प्रेरित करते आ रहे हैं। टैगोर मेमोरियल लेक्चर के 18वें संस्करण के संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर संस्थान ने द परफेक्ट पर्ल ऑफ द डीप ओशन विषय पर आयोजित एक ड्रॉइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। ओहेलिया कहती हैं, मेरे अध्यापकों ने मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं समुद्र पसंद करती हूँ। कैम्ब्रिज प्रोजेक्ट में मैं इस पर काम कर रही हूँ, इसलिए मैं अधिक प्रेरित हुई हूँ।
5: एडिशेवा
4: ने कहा, मैं खुद मोती हूँ, मैं अपने आप को सीमित नहीं रखती। मैं इस पेंटिंग के माध्यम से अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रही
5: हूँ।
4: इस वर्ष टैगोर मेमोरियल लेक्चर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल द्वारा दिया गया, जिन्होंने आज की दुनिया में टैगोर के विचारों की प्रासंगिकता पर विशेष जोर दिया।
6: L'occasion cause la vie et la contribution de Rabindranath Tagore, essentiellement comment nous refaire une réflexion nous-mêmes. Deuxièmement, mais aussi cause la philosophie de l'éducation de Rabindranath Tagore.
4: मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन और योगदान पर बात की कि कैसे हमें अपने आप पर चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात, मैंने शैक्षिक आध्यात्मिकता पर बात की जो बच्चों की जरूरतों पर आधारित है। और तीसरी बात, टैगोर की अवधारणा ये है कि विश्व एक बड़ा परिवार है और हमारे बीच सॉलिडारिटी, साझा और शांति होनी चाहिए। ये दिखने में आसान विचार हैं, लेकिन जबरदस्त संदेश हैं। हमारी युवा पीढ़ी को ऐसे संदेश अपनाने चाहिए और अपनी जिंदगी में ढालने चाहिए।

0: शिक्षा, संस्कृति और कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से इन आयोजनों का उद्देश्य रविंद्रनाथ टैगोर के मूल्यों को बनाए रखना और मॉरिशस की युवा पीढ़ी को अपनी रचनात्मकता, सीखने के प्रति रुचि तथा सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपने लगाव को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: मॉरिशस में आर्य समाज का महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और वैदिक आयोजन सत्यार्थ प्रकाश मास आरंभ हो चुका है। ये विशेष माह महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन, चिंतन और प्रचार प्रसार

0: संसार को समर्पित है। इस अवसर पर देश भर के विभिन्न आर्य सभा समाजों और आर्य में मतलब वहां पर प्रवचन, सत्संग, वैदिक यज्ञ, भजन का आयोजन किया जा रहा है। जनता को सत्यार्थ प्रकाश के सिद्धांतों को समझने और अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मॉरिशस में यह आयोजन भारतीय संस्कृति, वैदिक परंपराओं और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। आर्य सभा मॉरिशस की प्रधाना डॉक्टर शांति मुहाबीर को सुनते हैं।
1: जून महीना हिंदू जाति के लिए एक विशेष महीना है। यह मास सत्यार्थ प्रकाश मास नाम से प्रचलित है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 के जून मास में ही सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया था। सत्यार्थ प्रकाश में मानव जीवन को पवित्र बनाने वाले उच्च विचार निहित हैं। हजारों वर्षों से होश और जोश गंवा चुकी हिंदू जाति को सत्यार्थ प्रकाश ने नया जीवन दिया। हिंदुओं के लिए यह ग्रंथ संजीवनी है। स्वामी दयानंद चिंतक थे, महर्षि थे, इसलिए सत्यार्थ प्रकाश में वे गंभीर चिंतन और विचारशीलता का परिचय देते हैं। अगर हम अपने विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। इस वर्ष भारत से प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। वे वैदिक साहित्य के प्रकांड विद्वान हैं और शिक्षाविद हैं। परिवारों में, स्कूलों में और समाजों में उनके व्याख्यान निर्धारित किए गए हैं। आप उनके प्रवचनों से अवश्य लाभ उठाइए।
0: विदेश में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। इसराइली ताकतों ने दावा किया है कि उन्होंने लबनान सीमा के पास स्थित ऐतिहासिक किले पर भी कब्जा किया है और सीमा पार बढ़ते हमलों और लगातार बिगड़ते हालात के बीच कार्रवाइयों का आयोजन किया जा रहा है। अब मौसम का हाल। पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ेगा और अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा और रात को भी मौसम अच्छा रहेगा। हवा हल्की रहेगी और पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 23 से 26 वाले इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:38 पर हुआ, सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा।

0: 6:53 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक कादिर को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार और फ्रेंच विभाग को भी, और साथ ही रेडियो असिस्टेंट कोविला को भी हम धन्यवाद करते हैं, जिनकी मदद से हम ये बुलेटिन आप तक पहुंचा पाए हैं। कुछ ही समय में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड नोवेल डे कुवैत में अठहत्तर साल की 78 years old बीबी फातिमा लौटन बीबी

फातिमा लाउटन पैदाशी नाम तपसी और जिन्हें लोग फतेह नाम से ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे इनके शौहर वाहब लौतन के मकान रॉयल रोड नोवेल डे कुवैत से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए नोवेल डे कुवैत की मस्जिद ले जाया जाएगा। फिर दफनाने के लिए सैकोंस्टान सैंपिया का कब्रिस्तान फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। सर अब्दुल रहमान उस्मान लेन लिस्कालिये में 73 साल के 73 years old जनाब अहमद बाशिया खुसी जिन्हें लोग बाशीर नाम से ज़्यादा जानती थी इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज सुबह दस बजे इनके मकान साबदुल रहमान उस्मान लेन लिस्कालिये से उठाकर दफनाने के लिए लासूजी लिस्कालिये का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। सावन रोड नोवेल फ्रांस में श्रीमती लक्ष्मीन बासुदेल सिंह पैदाशी नाम बाबूलाल और जिन्हें लोग कुसिल नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ ही आज दिन के एक बजे इनके मकान सावन रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामदीन नोवेल फ्रांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। नंबर 8 इंकमन स्ट्रीट वाले पीटो पोर्टलुइस में 43 साल के 43 years old श्री पुरेंद्र सिंह पुनीत जिन्हें लोग पोपो नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ ही आज दिन के दो बजे इनके पिता राम पुनीत के मकान नंबर 8 इंकमन स्ट्रीट वाले पीटो पोर्टलुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेदीदाम की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। लासूस का ट्रबोन अवेन्यू सिनेवासन में 54 साल की 54 years old श्रीमती चूरामणि रामभजन पैदाशी नाम दौलत और जिन्हें लोग आरती नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज सपहर के तीन बजे इनके बेटे मनोज रामभजन के मकान लासूस का ट्रबोन एवेन्यू सिनेवासन से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। लाकावियन नंबर एक वाकुआ में 79 साल की 79 years old श्रीमती मेरामा कालीमुतु पैदाशी नाम लक्ष्मिया और जिन्हें लोग माना नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग मिस कालीमुतु एकोल मैटरनल नाम से भी जानते थे। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके बेटे तिरुवन कालीमुतु के मकान लाकावियन नंबर 1 वाकुआ से उठाकर थ्वामामेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड ओकुले में 77 साल की 77 years old श्रीमती सुलमा बीबी चमरू पैदाशी नाम मोहम्मद अली और जिन्हें लोग सुल नाम से ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 11 बजे इनके मकान रॉयल रोड ओकुले से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। कोमियासों स्ट्रीट क्यूपिप में 34 साल के 44 years old श्री रविंद्रनाथ सिउरतन जिन्हें लोग प्रवीण नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ ही आज सुबह दस बजे इनके पिता किशन सिउरतन के मकान कोमियासों स्ट्रीट क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM।

0: Avenue Guy Rosemont, Trèfle Rose Hill, May, 78 Sal Ki, 78 years old, Shri Ganesh Venkatachillam. श्री गणेश वेंकटाचलम जिन्हें लोग विष्णु नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे इनकी बहन रोजा वैथिलिंगम के मकान एवेन्यू गी रोजमो ट्रेफलरोज हिल से उठाकर सैमौते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। ये शोक समाचार फिर से सुन लीजिए। एवेन्यू गी रोजमो ट्रेफलरोज हिल में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड श्री गणेश वेंकटाचलम जिन्हें लोग विष्णु नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे इनकी बहन रोजा वैथिलिंगम के मकान एवेन्यू गी रोजमो ट्रेफलरोज हिल से उठाकर सामौते की सिमिट्री ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM शास्त्री रोड बुआ पियोलेते आरूज में 56 साल की 56 ईयर्स ओल्ड श्रीमती प्रबीता चौधरी पैदाशी नाम तिरबोहन और जिन्हें लोग सुनीता नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे इनके मकान शास्त्री रोड बुआ पियोलेते आरूज से उठाकर सिपाही ब्रिले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 10 AM और नंबर 22 रोवलिन ओकुले क्यूपिप में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड श्री करणदेव आलिया जिन्हें लोग करणदेव नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे इनकी पत्नी लीला देवी आलिया के मकान नंबर 22 रोवलिन ओकुले क्यूपिप से उठाकर बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 1:30 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: स्पोर्ट्स न्यूज। सभी सुनने वालों का अरविंद का प्यार नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीमियर लीग टाइटल जीतने के बाद अब आर्सेनल अपने स्क्वाड को और तगड़ा बनाना चाहता है। यूफोरिक ट्रॉफी पैरेड से उठा लाल धुआं अभी तक लंदन में ताजा है, फ्रेश है, पर आर्सेनल के अधिकारी अगले सीजन की तैयारी करने लगे हैं। क्लब को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात चल रही है। इसके लिए मैनेजर आर्टेटा के लिए नया पैकेज और नए खिलाड़ियों की लिस्ट बन रही है। एस्टन विला से मोर्गन रॉजर्स, बोर्नमुथ से एली जूनियर क्रूपी टॉप प्रायोरिटीज हैं। फिर एटलेटिको मैड्रिड से जुलियान अल्वारेज भी टारगेट हैं। इनको लाने के लिए कुछ 3-4 खिलाड़ियों को बेचा जाएगा। फ्रेंडलीज कल खेले गए। फ्रेंडली मैचों में कोलंबिया ने कोस्टा रिका को 3-1 से हराया। इसमें सांचेज, जाज और स्वागेज स्कोर कर पाए। मोंटेनेग्रो ने बुल्गेरिया को 1-0 से हराया। स्लोवेकिया 2, माल्टा 1, नॉर्वे 3, स्वीडन 1। नॉर्वे के लिए स्ट्रन लार्सन का डबल, स्वीडन का एक गोल इसाक ने स्कोर किया। टर्की 4, नॉर्थ मैसिडोनिया 0, ऑस्ट्रिया 1, चुनिजिया 0। UEFA अंडर 17 चैंपियनशिप में डेनमार्क 3, इटली 3, फ्रांस 5, मोंटेनेग्रो 0। आज के कुछ फिक्स्चर्स, क्रोएशिया का मुकाबला बेल्जियम से होगा, जॉर्जिया रोमेनिया, मोरक्को मेडागास्कर, वेल्स गाना, ये कुछ फ्रेंडली मैच हैं। ट्रांसफर बाजार से कुछ खबरें। चेल्सी के मार्क कुकुरेला को साइन करने के लिए एटलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड लाइन में है। लिवरपूल अब लेप्ज़िग से यान जियोमांडे को साइन करना चाहता है। कई अन्य क्लब उसके पीछे हैं। मार्कुस राशफोर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापस आ सकता है। बार्सिलोना के साथ लोन डील समाप्त होने वाली है, पर मैनचेस्टर यूनाइटेड उसे बेचना चाहता है। टेनिस फ्रेंच ओपन में कल कुबुडी क्वार्टर फाइनल में पहुंचा वाजडा को हराकर। अन्य मैचों में आरिना साबालेंका ने ओसाका को 7-5, 6-3 से हराया। श्वालिंस्का, ओगा अलियासिमे, साबालेंका, कालिंस्काया, श्नाइडर, बेरेटिनी और नाल्डी ये सभी जीत पाए। आज के मैचों में मेंसिच का मुकाबला फोंसेका से होगा। अंद्रीवा शिएस्टिया, विटोलिना कोस्टुक और जोदा वेरेव के खिलाफ खेलेगा। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आप सभी लोगों को नमस्कार, शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: ये समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:04 हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर ये नज़र डालते चले। मोगौश और बोबासे के आसपास के इलाके जिनमें है मोगौश, बर्कले, बाकोरी सिंह, स्कूल लेन, व्यश बिसम्बर, हेयरशे एवेन्यू बर्कले असाइलम, CWA बर्कले, पिसिन सेज, अल्फ्रेड और कुछ इलाके रेमोन रिवेट के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज मंगलवार 2 जून को सुबह 8:30 से लेकर 9:00 के अंतर्गत और दोबारा से दोपहर के 3:30 से लेकर 4:00 के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
2: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर

0: सुप्रभात श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:06। जून महीना 2 तारीख 2026 का वर्ष मंगलवार का दिन और आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी है रत्ना। पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं दिल की गहराई से। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपकी सेवा में रहेंगे, तो जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं, आशा करते हैं कि आप भी दिल से साथ निभाएंगे और आज का दिन आप सभी के लिए स्फूर्ति से भरा रहे। सदाबहार अनसुने गीतों के साथ आज की ये सुबह हम सजाएंगे अभी थोड़ी ही देर में, पर उससे पहले लेंगे आज का ये चिंतन जिसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर शांति मोहाबिया। आइए उनका स्वागत करते हैं।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: किसी की विनम्रता को उसकी कमजोरी समझने की भूल न करें। जो झुकना जानता है वह ऊंचा उठता है। अहंकार से भरा व्यक्ति बड़ा तो दिखता है परंतु महान नहीं होता है। विनम्रता आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। विनम्र व्यक्ति परमात्मा का प्यारा होता है।

0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
0: झलकियां,
1: झलकियां,
2: रेडियो मॉरिशस।
1: वही कहते हैं ना, कुछ भी एक जैसा नहीं रहता है, ना मौसम, ना हालात, ना ही इंसान। परिवर्तन संसार का सबसे बड़ा नियम है, जिसे अपनाना बहुत आवश्यक है। और 7:11 हो चुके हैं। नया संसार का ये प्यारा सा गीत हमने चलाया इस वक्त हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में। आशा करते हैं कि आज का सिलेक्शन भी आपको बेहद पसंद आएगा। कुछ ऐसी ही अनसुने गीतों के साथ सजाई हुई आज की ये सुबह हम प्रस्तुत करेंगे, पर उससे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं झलकियों के साथ। इस समय आप हमें सुन रहे हैं, रत्ना का साथ है और सुबह का नजराना कार्यक्रम में हम आपका साथ देते जा रहे हैं। 8 हम जुड़ेंगे भोजपुरी समाचारों के साथ और उसके तुरंत बाद करवाएंगे आपकी मुलाकात एक ऐसी अभिनेत्री के साथ जिसका जन्मदिन बस में मना रही है। और बिल्कुल कौन है उसके लिए करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इंतज़ार। और साथ ही साथ हम आपको बताते चले 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम में हम जुड़ेंगे किरण जानकी के साथ, जहां पर वो बहुत ही बेहतरीन जानकारियां लेकर उपस्थित होती हैं। और साथ ही साथ एक भोजपुरी गीत का आनंद उठाते हुए हम बढ़ेंगे आगे 9 के समाचारों के साथ। और 9 के समाचारों के बाद आज की चर्चा का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। और आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन आपके साथ जुड़ती हैं सुमिता सरकार। वैसे आपको बताते चले, आज 2 को ग्लोबल पेरेंट्स डे पर मनाया जाएगा ये कार्यक्रम। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो है श्रीमान अश्विन कुतवाहू जी। तो ज़रूर आप इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे, जिसका सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर होगा। साथ ही साथ MBC के तीसरे चैनल पर इसे आप देख पाएंगे और फॉलो कर पाएंगे फेसबुक पेज पर भी। इसी कार्यक्रम का पुनः रीब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे, यानी ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम जो होगा ये दोपहर के 3 से 4 के अंतर्गत आप सुन पाएंगे इसी कार्यक्रम को रेडियो मनोरंजन पर। और बिल्कुल 9 से 10 तक ये कार्यक्रम रहेगा। 10 के समाचारों के बाद पुनः मैं उपस्थित रहूंगी भक्ति धारा कार्यक्रम में, जहां पर भक्तिमय गीतों के साथ इस सुबह को हम प्रस्तुत करेंगे। और 10:15 आप सुन पाएंगे वेद सुधा का कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुदेश बद्री जी। हमारा और आपका साथ 10 से 11 के अंतर्गत। 11 के समाचारों के बाद विविध भाषाओं के कार्यक्रमों को सजाए जाएंगे आपके लिए। 11 शम्मे फरोजा ये कार्यक्रम को लेकर आएंगी सैयदा सुबाई। 12 वर्षा की प्रस्तुति में रहेगा कार्यक्रम तेलुगु भाषा में सौंदर्य लहरी। 12:30 मगलीर मतुम तमिल भाषा का कार्यक्रम आरसी की प्रस्तुति में। 2:15 रंगारंग गुजराती गीतों का कार्यक्रम, जिसे सजाएंगी अमिता।

दोपहर के 2 बजे मैंडरीन का कार्यक्रम डेविड की प्रस्तुति में, 2:30 बजे दैनिक कार्यक्रम आपकी पसंद, जहां पर आप ही के पसंदीदा गीतों को चलाया जाता है, जो चलेगा 2:30 बजे से शाम 4 बजे के बीच। 4 बजे पुनः तमिल भाषा का कार्यक्रम होगा, जिसे प्रस्तुत करेंगी कलाईवानी वीरन। शाम 5 बजे भूले बिसरे गीत, पुराने गीतों का ये सफर लेकर आएंगी गिनीशा, जो चलेगा शाम के 6 बजे तक। 6 बजे समाचार बुलेटिन, और समाचारों के बाद पुनः गीतों का सिलसिला जारी रहेगा। विविध भाषाओं के कार्यक्रम 6:30 बजे मैंडरीन का कार्यक्रम हॉन्ग हॉन्ग, जिसे प्रस्तुत करेंगी। शाम के 7 बजे युवराज सेन की प्रस्तुति में तमिल भाषा का कार्यक्रम। 7:30 बजे कृतिका की प्रस्तुति में तेलुगु भाषा का कार्यक्रम स्वरला वेदिका। 7:50 पर श्री श्रामा की प्रस्तुति में होगा गीत गंगा, मराठी गीतों का ये कार्यक्रम। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम, भक्तिमय इस भेंट को प्रस्तुत करेंगी देवीना। 8:40 पर उर्दू भाषा का कार्यक्रम महफिले शब, जिसे लेकर आएंगे निसार अख्तर। 9:00 बजे से 11:00 बजे के अंतर्गत भोजपुरी तड़का कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत करेंगी उषा। और 11:00 बजे से 12:00 बजे के बीच सुनहरे पल का कार्यक्रम होगा, जिसे प्रस्तुत करेंगी नीतूषा। 12:00 बजे से कल सुबह 6:00 बजे के अंतर्गत ओवरनाइट प्लेलिस्ट, जिसे सजाया जाएगा हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट द्वारा। आपको याद दिला दें, आज पुनः दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर मैं आपका साथ दूंगी उड़ान की कहानी में। और आज के उड़ान की कहानी होगी श्रीमती प्रीति रंजीत की कहानी, जो खुद एक नेचुरोपैथ है। और नेचुरोपैथ वो कैसे बनी, इस पर आज का ये कार्यक्रम होगा बिल्कुल। तो जरूर जुड़िएगा दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच। अब फिलहाल सुबह का नजराना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और इस समय 7:16 हो चुके हैं। तो चलिए पुराने गीतों का ये सफर हम रखते हैं जारी, और मज़ेदार गीतों के इस सफर में हम लेकर आए हैं एक ऐसा गाना जो है 1958 के दौर का गाना, फिल्म रागिनी से लिया गया। इसमें गीता दत्त और आशा जी की आवाज़ है, और इस फिल्म में नज़र आए थे किशोर कुमार और पद्मिनी। संगीत निर्देशन है OP नैयर साहब का। आइए इस मज़ेदार गीत को सुनते हैं।

1959 के दौर का गाना लव मैरिज और लता जी की प्यारी सी आवाज। भाई रात सुहानी तो कह गई है पर अब दिन खुला है, दिन चढ़ाया है, तो दिन के साथ मुस्कुराते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं और प्यारे प्यारे गीतों के साथ मजेदार गाने। भाई अच्छी राय और अच्छी चाय से लाइफ बनती है, आय हाय, पर कहते हैं ना ये सिर्फ कहीं कहीं मिलती है, यानी अच्छी चाय और अच्छी राय कायम रखिए और मजेदार गीतों के साथ मुस्कुराहट को बनाए रखिए। आपका दिन बिल्कुल इन गीतों की तरह हो टकाटक, मजेदार, कड़क, लाजवाब और आपकी मुस्कुराहट कभी फीकी ना पड़े। चलिए इस वक्त 7:25 और आप भी हमारा प्यार से साथ दे रहे हैं, ये जानकर हमें भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और मज़ेदार गीतों के सफ़र में कुछ अनसुने गाने, क्योंकि कहते हैं ना कि रोज़ कुछ नया ढूंढता है हमारा मन, ऐसा ही कुछ लेकर आए हैं आपके लिए। और आज के सफ़र में चलिए आपको एक और ऐसा अनसुना सा गाना सुनाते हैं। फिल्म है बंदी, 1957 का दौर का ये गीत है, किशोर कुमार साहब की आवाज़ में। हो सकता है कि इस गीत को शायद ही कभी आपने सुना होगा, पर बहुत ही मज़ेदार गाना है। आइए साथ मिलकर एंजॉय करते हैं।

वही कहते हैं ना, रोने से प्रॉब्लम्स हल नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम्स तो और बढ़ती चली जाती है। इसके साथ दूर हो जाते हैं हमारे जो नाते रिश्तेदार होते हैं, दोस्त हैं, वो सारे दूर चले जाते हैं। भाई रोने में वक्त जाया ना करे, कुछ ना हो पाए तो बस गाना गुनगुनाया करे। और ये मजेदार गाना था बंदी फिल्म से लिया गया। जी हाँ, इसमें नजर आए थे किशोर कुमार, अशोक कुमार, अनूप कुमार, तीनों भाई, बिल्कुल चलती का नाम गाड़ी जैसी ही जोड़ी इस फिल्म में नजर आई थी। और गांगुली ब्रदर्स इस फिल्म में नजर आए थे। तो चलिए गीतों के इस सिलसिले को जारी रखते हैं। इस वक्त 7:29 और मजेदार गीतों के इस सफर में आइए आगे बढ़ते हैं। और तलत महमूद और लता जी की प्यारी से आवाज में एक और प्यारा सा गाना हम चुन लाए हैं आपके लिए।

एक और एहसान सुना सा गीत, और ये था फिल्म आवाज से लिया हुआ गाना। और ये जो गीत हमने अभी भी बजाया, तलत महमूद और लता जी की प्यारी सी आवाज में, इस फिल्म में नजर आए थे अनवर हुसैन, जगदीप, नलिनी जयवंत। और मैं आपको ये भी बताती चलूं, इस गीत के बोल सजाए थे इजिया सरहदी ने और संगीत निर्देशन था सलील चौधरी का। 1956 के दौर का बहुत ही प्यारा सा गीत आवाज फिल्म से लिया हुआ। चलिए, ऐसे गीतों को सुनकर जिया भी बल खाता है, दिल भी खुश हो जाता है और प्रॉब्लम्स कहीं छुप जाती हैं, कुछ देर के लिए ही सही। और कहते हैं ना भाई, मुस्कुराना हमें सीखना पड़ता है। किसी ने क्या लाजवाब लिखा है कि मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोना तो पैदा होते ही आ ही जाता है ना। तो थोड़ी मेहनत कीजिए, चेहरे की मुस्कुराहट को बना के रखिए, इसके लिए पैसे थोड़ी लगते हैं दोस्तों। और चलिए, प्यारा सा गीत आपके नाम करते हैं, फिल्म शारदा से लिया हुआ गाना आशा ताई की आवाज़ में। और इसके बाद आते हैं आज की छोटी सी बात को लेकर।

रेडियो मॉरिशस के लहर पर रखा हुआ आपका सबसे फेवरेट सेगमेंट जिसका आपको होता है हमेशा बेसब्री से इंतजार, उसमें आपका स्वागत है। और चलिए इस वक्त 7:38 और आज की ये छोटी सी बात में हम लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है इंसान की कीमत। ये कहानी है एक शहर में रहने वाले एक लोहार की। उसका एक 16-17 साल का बेटा था और दोनों साथ मिलकर दुकान में काम करते थे। एक दिन काम करते करते बेटे के मन में आया एक सवाल और बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी इंसान की कीमत क्या है? तो बेटे का ये सवाल सुनकर पहले तो पिता बहुत ही चकित हो गए, फिर शांत भाव से सोचते हुए बोले, बेटा इंसान का तो कोई मोल नहीं होता, वो तो अनमोल है, उसकी कीमत कैसे आंकोगे? तो बेटा पिता के इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर सवाल किया, पिताजी क्या सभी इंसान अनमोल हैं?

हाँ बेटा, पिता ने उत्तर दिया। यदि ऐसा है तो सभी इंसान बराबर क्यों नहीं? कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई इंसान समाज में अधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तो कोई अपमान के घूंट पीता है, ऐसा क्यों? बेटे ने पूछा। पिता ने बेटे का सवाल सुनकर कहा, बेटा मेरे हाथ में ये लोहे की एक छड़ी है, आप देख रहे हो ना, मैं यदि इसे बाजार में ले जाऊं और इसे बेचूं तो इसकी क्या कीमत आएगी? यदि कोई 150 रुपये, यही कोई 150-200 रुपये में आपको मिलेगा इसका भाव। और यदि इसी लोहे की छड़ी को मैं छोटे छोटे कील बनाकर 100-100 का पैक बनाकर बाजार में बेचूं, तब उसकी क्या कीमत होगी? तो बेटे ने कहा, लगभग 1000 रुपये के आसपास। और यदि मैं इससे लोहे के स्प्रिंग बनाकर बेचूं, तब इसकी कीमत क्या होगी? अलग अलग तरह के स्प्रिंग की कीमत अलग अलग होती है, मगर किलो के काफ़ी ज़्यादा भाव मिलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, इसी तरह से इस लोहे की छड़ी से मैं अलग अलग वस्तुएं बनाकर बेचूं, तो उन सब की कीमत अलग अलग होगी। यही बात इंसान पर भी लागू होती है। इंसान जो भी है, जैसा भी रहा है, वो जीवन में जैसी शिक्षा प्राप्त करता है, जैसे गुण का विकास करता है और स्वयं को उनके अनुसार ढाल कर जो बन जाता है, वही उसकी कीमत होती है। इसीलिए तुम समाज में अमीर गरीब मनुष्यों को देखते हो तो कुछ, बस कहते हैं ना कि किसी किसी की कुछ कम कीमत होती है, कम आका जाता है उनको। यदि तुम्हें अपनी कीमत बढ़ानी है तो खुद के गुणों को निखारो और सबकी दृष्टि में अमूल्य बन जाओ। दोस्तों, आज की ये कहानी का बोध बस यही है कि जो हमारे गुण है उसे बस हमें, उसी से हमारा मोल निर्धारित होता है। इसीलिए अपने गुणों को हमेशा निखारना है, अपने भीतर की जो अच्छाइयां हैं, अपने भीतर की जो क्षमताएं हैं, उस पर काम करना है। अगर हम भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी जो गुणवत्ता है वो कम होने लगे, क्योंकि आपके दिमाग में प्रतियोगिता भरी हुई है। पर आप अगर इस पर अमल करते हैं कि हमारे भीतर जो भी है उसे हम निखारने के लिए बहुत मेहनत करें, बहुत प्रयत्न करें, तो भाई आपकी जीत पक्की है। आपका जो गुण है वो ही आपको निखार कर जीवन में आगे ले जाएगा। दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी सच में हम पर लागू पड़ती ही है, क्योंकि कई बार हम जीवन की रेस में दौड़ते जरूर हैं पर दूसरों से आगे निकलने के लिए ये दौड़ होती है। अगर जीतना चाहते हैं तो दूसरों से आगे निकलने की कोशिश ना करें, बस अपने आप को संवारने की कोशिश करें, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें, अपने आप में जो खूबियाँ हैं उसको टटोलिए, उसे देखिए, उस पर काम कीजिए। जीत तो भाई आपकी पक्की है।

भाई जीवन में प्रगति करो, आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, पर साथ ही साथ दिल में वो जज्बात रखो, इंसानियत रखो, प्यार भरा दिल रखो, प्यार भरी जुबान रखो, तब जाकर ये प्रगति काम आए। और इसी के साथ प्यार भरे गीतों के सफर में गीतों के साथ साथ आपका दिल खुश करने का जिम्मा हमने लिया है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में डेडिकेशन टाइम और आप सभी के नामों को जोड़ते हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूं, दिन दुगनी और भाई कहते हैं ना कि रात चौगनी जीवन में तरक्की करते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हैं इतने सारे लोग कि मुझे यहाँ पर कागज कम पड़ने लगे हैं आपके नामों को जोड़ने के लिए। पर हमें ये बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप सच में दिल से हमारा साथ निभाते हैं। इसके लिए तहे दिल से आपको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार आप सभी को। और यहाँ पर हमेशा की तरह लोगियाल से हमारा साथ दे रही हैं माधुरी जी, और घोंघुप से श्यामा रघुनंदन, उनके प्यारे भैया जयप्रकाश, भाभी नम्रता, साथ केशव और युधीश, वीना जी हमारे साथ यहूश से, विश्वानी जी हमारे साथ कौदेमास से, प्यार भरे पुराने गीतों को बेहद पसंद करते हैं आप लोग, काट्रोबोन से यहाँ पर माला सुमारू जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और आज जन्मदिन मना रहे हैं उनके पति सूर्यदेव। चलिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ आपके चार बेटों की ओर से, कृष्ण, उत्तम, सुयश और शिरवन की ओर से, आपके आठ नाती पोते और सुमारू परिवार की ओर से, खासकर जो आपके बेटे कनाडा से हैं वहां से ढेर सारा प्यार आपके नाम और खासकर आपकी प्यारी पत्नी माला की ओर से। रोजबेल से हमेशा की तरह नवीन लक्ष्मण जी हमारे साथ है, प्यारी पत्नी चित्रा के साथ, आपके परिवार में एबक से निवेदिता और सच्चिदानंद जी, मॉडल बेस से ललिता और धनराज चरण जी, प्यारी बेटी स्वीटी के साथ, न्यू ग्रोव से राज और अमृता उबिलक, और घोंबुआ से रमेश और प्रीति जी हमेशा साथ देते हुए,

वाकवा से जुड़ी हुई हैं शोभा जी, साथ है आपकी प्यारी बेटियां अनुषा और शर्वीना, अवनीश और अर्नवी। 6 तारीख को आपकी प्यारी बहन वीना बिसेसर का जन्मदिन है, जो मनाएंगी अपना जन्मदिन शनिवार 6 तारीख को। उनके प्यारे पति विनोद, 3 बेटी 2 बेटे, 4 नाती पोतों की ओर से, और खासकर आपकी सखियां, आपकी सखी है राधा बाल गोबिंद मोचिदा से, और आपकी प्यारी बहन प्रेमिला जयमंगल मोचिदा से ही। प्रभात सोय, आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बेलगोस से। पोंफेया से गीता जी भी जुड़ चुकी हैं प्यारे पति रोहित के साथ। आपके प्यारे नाती हैं आदित्य, आरव और तनिष, और प्यारी परी जानवी, 3 बेटे 2 बहुओं के साथ हमेशा साथ देती हैं आप। क्लावेट से विजय बंधन, आपकी प्यारी पत्नी रेखा, और 3 प्यारी बहनें चंदनी, बिंदु, कुमारी, और आपके सभी दोस्त जो काम पर से हमारे गीतों को बेहद एंजॉय करते हैं। आप सभी का दिन बढ़िया रहे, टकाटक रहे हमारे गीतों की तरह। क्यूपिप से गीता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, गीतों को बहुत एंजॉय कर रही हैं। गीतों को सुनकर आपकी तबीयत और अच्छी हो जाती है भाई, यही तो है म्यूज़िक डोज की तरह। म्यूज़िक हम मेडिसिन की तरह आपको हमेशा देते रहते हैं। कोशिश हमारी यही है कि इन गानों में घुले एक बहुत ही प्यारा सा संगीत। अनीता लाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी है मोडालबिया से, सभी लाल जी, गोगा और ईतू और नागेश्वर परिवार के साथ। गौबुआ से शिवरानी जी, आप भी हमारा साथ दे रही हैं, और आपके प्यारे बच्चों का नाम ज़रूर जोड़ेंगे आज के इस कार्यक्रम में। सुधीर शर्मा सुनाही, आपकी प्यारी बहू रोशनी, नाती है शिरीष, बहू शिखा, साथ है नाती शिवान, आपके बेटे राज और आरती जो हैं गौपवा से, नाती यश, बहु अंजलि और नाती कबीर, आपकी प्यारी बेटी शर्मिला सीचन जो है काटोबोन से, और नाती उर्वशी रघुब, और आपकी प्यारी बहन कृष्णा कुमारी गौरी शंकर जो यूके से हमेशा हमारा साथ देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रेमिला सीगुलाम हमारे साथ है कौंदिमा से, और आपकी प्यारी बहनें रागिनी और साधना जो है बेचू परिवार से, रिश्मा फ्लाक से हमेशा जुड़ते हैं, और अनसुया राम किलावन जो हमेशा त्रियोले से साथ देती है। बहुत बहुत प्यार आपको। और आपकी प्यारी बहू रेणुका का जन्मदिन है 6 तारीख को यानी शनिवार को, ढेर सारी बधाइयाँ सासूमा प्रेमिला की ओर से। साथ है बेटा निवेश, बेटा निहाल, और आपके देवर हैं प्रकाश और देवरानी स्वधा, और नाती है, माफ कीजिएगा, आपके नेफ्यू भविष्य की ओर से ढेर सारा प्यार आपको। नवल फौज से गीता बाई भी हमेशा साथ देती हैं, बेटा शिवाजी, बहू है श्वेता बाई, साथ है बेटी सुधा बाई, पिस्वी बाई, दिया बाई और प्यारा मल्हार। यहाँ पर गायत्री जी भी नवल फौज से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बेटा अजय, मामी कल्याणी मोहन, और आपकी ननंद, आपकी भाभी है शकुंतला जो रहती है मोताइलोंग। नवल फौज से ही मानती जी भी प्यार से जुड़ चुकी हैं, आपकी बहनें अनंती, आरती और चिंता की ओर से बहुत बहुत प्यार आप सभी को। रांझवा साउथी से शीला जी, तबीयत नासाज है पर हमसे बात करना कभी नहीं चूकती, बहुत बहुत प्यारा, ईश्वर आपको बहुत बहुत साहस दे, हिम्मत दे, और पति साजन, बेटा विकास और गौसों। उदय जी इस वक्त गिव्यजुप्पू से जुड़े हुए हैं, गीतों को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। त्रियोले से है सूरज शर्मा सजादा, आपके बेटे निशाल के साथ। थैंक यू सो मच इंदिरा लॉटन, आप भी हमारा साथ दे रही हैं इस वक्त, थैंक यू। और आपके सभी परिवार जो लंदन से जुड़े हुए हैं उनका भी नाम हम जोड़ते हैं, थैंक यू अगेन। नीता खेदनी हमारे साथ हैं सेंट जूलिया विलाज से, बहुत बहुत प्यार। गौगोप से है सुनीता जी, 3 बहनों के साथ विमला, अमृता और वीना। वाकवा से है फुलवंती जी, पति देवानंद, बेटी है भावना, बेटा उषन। हाईलैंड से उषा जी भी बहुत प्यार से साथ दे रही है मोहन सिंह परिवार और कुंज बिहारी परिवार के साथ। सरिता जी काट्रोबोन से एंजॉय कर रही हैं पुराने गीतों को। लक्ष्मी जी है बॉम्बू से, बेटा अक्षय और बेटी आशनी के साथ। लीलो जी गौबुआ से हमारा साथ दे रही हैं, खेत में एंजॉय कर रही हैं गीतों को, साथ जुड़ी हुई है प्यारी गीता जी। सुधा जी को मॉडल से फ़ोन करके हमसे खास यही कहती है कि पुराने गीतों को सुनकर मानो जैसे दिन बहुत ही तरोताज़ा हो जाता है, बिल्कुल कड़क चाय की तरह। वाह शेरी से लीला जी भी एंजॉय कर रही हैं। विजय बेनी प्रसाद भी हमसे यही कहते हैं, कहाँ से ढूंढ लाती हैं ऐसे गाने, हाय हाय, थोड़ी मेहनत तो करनी बनती है आप लोगों का खुश, आपको खुश जो करना है। तो चलिए सभी दुली पर

परिवार जो शामुनी से जुड़े हैं और मोहताबा से आपके खास दोस्त शास्त्री बुनवाली भी हमारे साथ हैं, मोका से सुदेवी जी भी जुड़ चुकी हैं, सभी नाती नातिन सभी बच्चों का नाम आज के इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। कातकोको से कमला जी भी जुड़ चुकी हैं और कमला जी कहती हैं कल उनकी प्यारी बेटी रेशमा का जन्मदिन है, 3 तारीख बुधवार को ममा कमला की ओर से ढेर सारा प्यार रेशमा को। दामाद है सतीश, साथ है आपकी प्यारी बेटी यूर्वी और तक्षील बेटा, सभी श्यामचरण परिवार की ओर से और रामायण परिवार की ओर से बहुत बहुत प्यार रेशमा को। राजन रामा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेंट जूलिया दुतमौ से, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और साथ ही साथ यहाँ पर अमृता गंगू हैं वेडेंस से, अनीता जी रोजबेल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ गौबे से हैं उनके प्यारे बेटे रितेश जो हमेशा साथ देते हैं, मोताइलोंग से हैं इंदिरा चिंताराम, आपके प्यारे नाती जो हैं ऑस्ट्रेलिया से ओम और तुषार उनको भी कहेंगे बहुत बहुत प्यार। और आप नाम जोड़ना चाहती हैं वापियोले के स्वस्तिका रामायण मंडली के सभी सदस्यों का जो हमारे इन कार्यक्रमों को बहुत पसंद करते हैं, चलिए आप सभी को ढेर सारा प्यार ढेर सारा वंदन। और बस आप यूं ही हमारा साथ दीजिए, हम भी कोशिश में लगे रहेंगे कि ऐसे ही पुराने गीतों के साथ इस सुबह को और भी सुरीली बनाएं। और आज जन्मदिन मना रहे हैं किरण बारोट, 80 वर्ष के हो चुके हैं, लिस्पेरांस ट्रे बूशे से आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत प्यार आपको। और बस आप यूं ही स्वस्थ रहें, ईश्वर आपको सदा बहुत हिम्मत दे आगे बढ़ने के लिए, लंबी आयु हो आपकी। आपकी प्यारी पत्नी नम्रता, बेटी है नियति, बेटा है मयूर और आपके दामाद है सर्वेश। और प्रियांश और लक्ष्य की ओर से नानू को बहुत बहुत प्यार, चलिए आपकी प्यारी बहन की ओर से भी आपको ढेर सारा प्यार। और बस हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं आज का दिन आपके लिए बहुत खास हो। तो चलिए इस प्यारे से गीत के साथ आज का दिन बिल्कुल आपके लिए झूमता हुआ रहे, मुस्कुराता हुआ रहे और आने वाला हर पल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए। और वैसे यही गाना हमें जोड़ेगा 8 बजे के भोजपुरी समाचारों के साथ। मिलते हैं समाचारों के बाद।

0: सबको एक नमस्ते। भोजपुरी के समाचार में हमने आप सबको एक स्वागत करत है। जहाँ राष्ट्रीय सभा के कार्य आज दिन के 11:00 विपक्ष नेता जोली रोगव के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन से शुरू हुई। एक बाद प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम हुई। इन एजेंडा में कार्यसूची में कुल 60 से जस्ती प्रश्न बाते, जेकर में से 20 गो प्रश्न प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से पूछल जाए। ये प्रश्न संवेदनशील मामला से संबंधित हो, जेकर में रोड्रिक्स, नशा के खिलाफ लड़ाई, सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन और प्रशासनिक सेवा शामिल बाते। अबले मॉरिशस से आदिस अबाबा जाय होला यात्री लोग के जोहान्सबर्ग, नैरोबी या अंतानानारिव में ठहराव करे के परत रहल। अब कयन गो बदलाव लियानल गलबा। अफ्रीका के सबसे बड़का विमानन कंपनी इथियोपियन एयरलाइंस बहुते हाली मॉरिशस में सीधी उड़ान सेवा शुरू करी। अगल हफ्ता के इनावा सेवा के घोषणा करल गर रहल। इथियोपियन एयरलाइंस इनावा मार्ग पर सप्ताह में 3 उड़ान के संचालन करी। जुलाई 2026 से मॉरिशस में कयन गो सामाजिक अकाउंट में कल्ले कल्ले पैसा की डिपॉजिट की कमती करे के संभावना बा। ये फैसला खास करके कम आय होला परिवार के बीच कयन गो सवाल और चिंता पैदा कर ले बा। ये बदलाव में शेयर्स रे इनकम अलाउंस स्कीम बाते, जेकर प्रबंधन मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा करल जाला। ये योजना के उद्देश्य उ सब कर्मचारी और सेल्फ एम्प्लॉयड जना के आर्थिक सहायता दे के है, जेकर मासिक आय निर्धारित सीमा से कम बा। और ये बदलाव के असर कयन को परिवार पर पड़ी, जो अपन दैनिक जरूरत के पूरा करे खातिर ई सहायता पर निर्भर रहेलन जा। दूसर देश की खबर में इजराइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव फिनो से खतरनाक मोड़ ले लेबा। इजराइल के ताकत दावा कर लेबा कि उ लबनान सीमा के भीरी ऐतिहासिक किले पर कब्जा कर ले लेबा। तैकरे संगे भोजपुरी के समाचार समाप्त होल। तुह लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते और शुभ दिन।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: आठ बजकर 3 मिनट होलबा। बर्नी की खबर सुन जा। रॉयल रोड ओकुले में 77 बरिस के ससन जी से तौके मिसिज सुलमा बीबी चमरू, मिसिज सुलमा बीबी चमरू पैदाशी नाम मोहम्मद अली और जिनकरा सब कोई सुल नाम से जाना टलन जा इंतकाल कर गर हवन। उनकर जनाजा आज दिन के 11 बजे उनकर घरे रॉय रोड उकुले से उठावल जाए और दफनाए खातिर फिनिक्स का कब्रस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। प्लाटो रोड गुडलैंड्स में 90 बरिस के 90 जीजों के श्री गुलाम नबी। इस समाचार फिर से सुना जा। प्लाटो रोड गुडलैंड्स में 90 बरिस के 90 जीजों के जनाब गुलाम नबी कुतु, जनाब गुलाम नबी कुतु जिनकरा सब कोई भाई गुलाम नाम से जस्ती जाना टलन जा इंतकाल कर गर हवन। उनकर जनाजा आज दिन के एक बज के आधा उनकर बेटा बुजू हिरन

अब्दुल हकीम के घरे प्लाटू रोड गुडलैंड से उठावल जाए या दफनाए खातिर बेलमो गुडलैंड का कब्रिस्तान ने जावल जाए या फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। रॉयल रोड नोवेल डे कुवैत में 78 बरिस के ससन जिजवीतों के बीबी फातिमा लाउटन पैदाशी नाम तपसी अर्जुन करा सबके फतेह नाम से जस्ती जानटन जा इंतकाल कर घर हवन। उनका जनाजा आज दिन के एक बज के आधा उनका शौहर वाहब लौटन के घरे रॉयल रोड नोवेल डे कुवैत से उठावल जाए यार सबसे पहला नमाज जनाजा खातिर नोवेल डे कुवैत के मस्जिद ले जावल जाए फिर हुआ से दफनाए खातिर रहस्य कौस्तों सैंपिया का कब्रिस्तान फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। साब्दुल रहमान उस्मान लेन लिस्काली में 73 बरिस के 73 के जनाब अहमद बशीर कुसी जिनका रासब कोई बशीर नाम से जस्ती जानतलन जा गुजर कर हवन इंतकाल कर घर हवन। उनकर जनाजा आज फजर के दस बजे उनकर घरे से अब्दुल रहमान उस्मान लेन लिस्काली से उठावल जाए यार दफनाए खातिर लासू जी निस्काली का कब्रिस्तान ने जावल जाए या फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। सावन रोड नोवेल फ्रांस में 87 बरिस के 87 ईयर्स ओल्ड श्रीमती लक्ष्मीन बासुदेल सिंह पैदाशी नाम बाबूलाल अर्जुन करा सब कोई कुसिल नाम से जस्ती जानटलन जा गुजर गर हवन। उनकर माती आज दिन के एक बजे उनकर घरे सावन रोड नोवेल फ्रांस से उठावल जाए यार क्रियाक्रम खातिर रामदीर नोवेल फ्रांस के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टुडे एट 1 PM। नंबर 8 इंकमान स्ट्रीट वाले पीटू पोर्ट लुइस में 43 बरिस के 43 के श्री पुरेंद्र सिंह पुनीत जिनकर सब कोई पोपो नाम से जस्ती जानटलन जा गुजर कर हवन। उनकर माती आज दिन के दो बजे उनकर पिता राम पुनीत के घरे नंबर 8 इंकमैन स्ट्रीट वाली पीतो पोर्ट लुइस से उठावल जाए और बैदेदाम के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। लासूस कटबोन एवेन्यू सिनिवासन में 54 बरिस के 54 के श्रीमती चुरामनी राम भजन पैदाशी नाम दौलत अर्जुन करा सब कोई आरती नाम से जस्ती जानटलन जा गुजर कर हवन। उनकर माती आज सपहर के तीन बजे उनकर बेटा मनोज राम भजन के घरे लासूस का ट्रिबोन अविनी श्रीनिवासन से उठावल जाए यार गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टूडे 3 PM। लाकावेन नंबर 1 वाकवा में 79 बरिस के ससंजीजनेवों के श्री मेरम्मा कालीमुतु पैदाशी नाम लक्ष्मी अर्जुन करा सब कोई माना मिस कालीमुतु एकुल मातियानल नाम से जानत रलन जा गुजर गर हवन। उनकर माती आज दिन के 2 बजे उनकर बेटा तिरुवन कालीमुतु के घरे लाकावेन नंबर 1 वाकवा से उठावल जाए अर्थवा मामेल के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टुडे 2 PM। कमर्सन स्ट्रीट क्यूपिप में 34 बरिस के 34 के श्री रविन्द्र नाथ सिवरतन जिनका सब कोई प्रवीण नाम से जस्ती जानटलन जा गुजर गर हवन। उनकर माती आज फजर के दस बजे उनकर पिता किशन सिवरतन के घरे कमर्सन स्ट्रीट क्यूपिप से उठावल जाए और बिगाहा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टूडिया 1:10 AM। एवेन्यू गी रोजमोट ट्रैफलर रोज हिल में 78 बरिस के 78 के श्री गणेश वेंकटाचलम जिनका सब कोई विष्णु नाम से जस्ती जानटलन जा गुजर गर हवन। उनकर माती आज फजर के 10 बजे उनकर बहिन रोजा वैथिलिंगम के घरे एवेन्यू गी रोजमोट ट्रैफलर रोज हिल से उठावल जाए यार
क्रियाक्रम खातिर सैमौतक के शमशान भूमि।

Lady Avaljaya funeral today at 10 AM. शास्त्री रोड बापियोले त्यागुज़ में 56 बरिस के सेकंड सीज़न के श्रीमती प्रभिता चौधरी पैदाशी नाम तिरुभुवन अर्जुन करा सबको सुनीता नाम से जस्ती जनरल हैं जा गुजर कर हवन उनकर माती आज फजीर के 10 बजे उनकर घरे शास्त्री रोड बापियोले त्यागुज़ से उठावल जाए आर क्रियाम करम खातिर सिपाही भीले के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टूडिया 10 AM

नंबर 22 रोवेलिन ओकुले क्यूपिप में, नंबर 22 रोवेलिन ओकुले क्यूपिप में 80 बरिस के, 80 ans के। श्री करणदेव आलिया जिनका रसब कोई करणदेव नाम से जस्ती जाना ठलन जागुजर गर हवन उनकर माती आज दिन के एक बज के आधा, आज दिन के एक बज के आधा उनकर पत्नी लीला देवी आलिया के घरे नंबर 22 रोवेलिन ओकुले क्यूपिप से उठावल जाए और किराकरम खातिर भी गाहा के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे एट 1:30 PM। नंबर 544 मोसलमान ले प्लेन डेजेम इताज हाईलैंड्स फिनिक्स में, नंबर 544 मोसलमान ले प्लेन डेजेम इताज हाईलैंड्स फिनिक्स में 76 बरिस के, 76 ans के। श्रीमती रुकवंती लकीराम जिनकरा सब कोई लकीराम नाम से जस्ती जानत रलंजा गुजर गर हवन उनकर पैदा शी नाम गंगा भी सुन रहल और उ कालबास रहे उनकर माती काल दिन के एक बजे। केविन और अश्विन लकीराम के घरे नंबर 544 मोसलमान ले प्लेन डेजेम इताज हाईलैंड्स फिनिक्स से उठावल जाए और क्रियाक्रम खातिर आली ब्रियो फिनिक्स के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टुमोरो एट 1 PM। शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमनी के सहानुभूति बाते।�819 kHz ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: 8:20 हो चुके हैं और आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं एक विज्ञप्ति। और ये विज्ञप्ति है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई। मोगौश और बोबासें के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को, खासकर मोगौश, बाकले, बाकोगी सिंह, स्कूल लेन, व्याजा बिसम्बा, हेशा रोडे और एवेन्यू बर्कले असाइलम, सी डब्ल्यू ए बर्कले, पिसिन सियर्ज आल्फ्रेड और कुछ इलाके रिमोन रिवेट के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज मंगलवार को यानी 2 जून को सुबह 8:30 से लेकर दिन के 9 बजे तक और दिन के 3:30 से 4 बजे के अंतर्गत बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
2: सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस। एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर, रेडियो मॉरिशस पर, रेडियो मॉरिशस पर। एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर, रेडियो मॉरिशस पर,
1: रेडियो मॉरिशस। एक छोटी सी मुलाकात में एक बार फिर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सुबह का नजराना कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया ये सेगमेंट जहां पर हम बात करते हैं कुछ ऐसे अभिनेताओं के बारे में, अभिनेत्रियों के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और कुछ ही समय में बहुत बड़ा नाम कमाया है। चलिए, आज जन्मदिन मना रही है एक ऐसी अभिनेत्री जो है अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम सिन्हा की पुत्री, द दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ, 2 जून 1987 में उनका जन्म हुआ, यानी 1987 में उनका जन्म हुआ। और बिल्कुल उन्होंने फिल्मों में पदार्पण किया दबंग फिल्म के साथ। 2010 में सर्वश्रेष्ठ पदार्पण अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ। और बिल्कुल आज ये अपना जन्मदिन मना रही हैं 38 वर्षीय सोनाक्षी सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा जो कि बिहार के हैं और जो एक प्रमुख अभिनेता और एक राजनेता, और पूनम सिन्हा बिल्कुल जिनका शादी के पहले सिंधी सरनेम चंदी रामानी, जो सिंधी जिनकी ये बिल्कुल सोनाक्षी सिन्हा की जो मम्मा है वो सिंधी है, और वो दो जुड़वा भाइयों की बहन यानी लव और कुश सिन्हा, यानी इन टोटल शत्रुघ्न सिन्हा के 3 बच्चे लव, कुश और सोनाक्षी। सोनाक्षी मुंबई में आर्य मंदिर, आर्य विद्या मंदिर से अपनी स्कूल शिक्षा पूरी की और श्रीमती नाथीबाई दामोदर ट्रेक्रेस महिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी मुंबई महाराष्ट्र से उन्होंने फैशन डिजाइनिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, यानी वो एक फैशन डिजाइनर भी है। सोनाक्षी सिन्हा ने 2005 में मेरा दिल लेके देखो जैसी फिल्मों

0: उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन करके एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में अपने पेशे को शुरुआत की और उसके बाद फिर लैक्मे फैशन वीक 2009, लैक्मे फैशन वीक 2008 में रैंप पर भी उन्होंने कैटवॉक किया था और उन्होंने अपनी अभिनय की पेशा सलमान खान के साथ उन्होंने अपने बॉलीवुड में उन्होंने एंट्री ली फिल्म दबंग के साथ। सोनाक्षी सिन्हा यो-यो हनी सिंह के साथ भी एक संगीत वीडियो में दिखाई दी थी जिसका शीर्षक था सुपरस्टार। 2019 में उन्होंने कॉमेडी फिल्म टोटल धमाल में भी एक गीत मुंगड़ा में अभिनय किया था और इसके बाद उन्होंने आदित्य रॉय कपूर, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट और वरुण धवन सहित मल्टी स्टार और मूवी कलंक में भी एक बहुत ही बढ़िया अभिनय दिया था। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही थी पर सोनाक्षी ने फिल्म खानदानी शफाखाना में भी काम किया और आज के इस कार्यक्रम में हमने उन्हीं के फिल्मों के बहुत ही मशहूर मशहूर गाने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए, ये गाना तो भाई सुपरहिट रहा ही था, 2010 की मूवी दबंग का ये गाना राहत फतेह अली खान की आवाज़ में।
1: ताक

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी हाँ, 8:32 और आज की मुलाकात सोनाक्षी सिन्हा के साथ। और वैसे हम आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने बिल्कुल फैशन डिजाइनिंग में एक बहुत ही बढ़िया डिग्री हासिल की। फिल्मों में उन्होंने इसी करियर के साथ शुरुआत भी की। मैं नहीं जानती थी कि आगे चलकर वे एक एक्ट्रेस बनेंगी, पर उन्हें पहला ब्रेक मिला 2010 में उनकी मूवी दबंग के साथ। उन्होंने काम किया था सलमान खान के साथ और ये फिल्म बिल्कुल दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। और उनकी फिल्म राउडी राठौड़, जिनमें उनकी पेयरिंग की गई थी अक्षय कुमार के साथ, जो आई थी 2012 में। फिर आई सन ऑफ सरदार उसी साल, और एक बार फिर 2014 में आई फिल्म हॉलिडे, जहां पर एक बार फिर वे नजर आई अक्षय कुमार के साथ। और भाई, राउडी राठौड़ की बात करें तो राउडी राठौड़ का ये जो गाना था चित्ता ता चिता चिता, ये गाना बहुत ज्यादा सुपरहिट हुआ था। चलिए इस गाने की एक छोटी सी झलक आपको सुनाते हैं।

जहाँ एक और किया चित्ता चित्ता और वहीं पर दूसरा दूसरी ओर उनका दिल हुआ शायराना। और ये था अक्षय कुमार के साथ फिल्म हॉलिडे के बीच।

शायराना दिल और शायराना मिजाज। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा ने 2014 में की फिल्म हॉलिडे, उससे पहले आई थी फिल्म लुटेरा जो आई 2013 में, और इस फिल्म में उनकी पेयरिंग की गई थी रणवीर सिंह के साथ। और इस फिल्म का ये गाना जिसमें मुनाली ठाकुर ने अपनी आवाज़ दी थी, ये गाना भी काफ़ी सुप्रसिद्ध रहा।

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ।
1: और ऐसे ही करते हुए सोनाक्षी सिन्हा ने अपने आप को ढाल दिया, सवार लिया फिल्मों के जरिए और भाई अपने फैंस के दिलों में उन्होंने जगह बनाई। बहुत ही मज़ेदार फिल्मों के साथ उन्होंने अपने फैंस का दिल भी जीता। ऐसी कई सारी फिल्में आई जैसे मिशन मंगल, और मिशन मंगल भी एक बहुत ही लाजवाब मूवी रही जहां पर उन्होंने विद्या बालन, अक्षय कुमार और ऐसे कई सारे अभिनेता शर्मन जोशी के साथ इस फिल्म में एज अ साइंटिस्ट ये फिल्म में काम किया। ये फिल्म भी लोगों को बेहद पसंद आई और ये एक

बिल्कुल हम कह सकते हैं एक बायोपिक थी जहां पर लॉन्च किया गया था एक ऐसा सैटेलाइट मंगल ग्रह पर। और इस फिल्म की जो स्टोरी

0: साथ उन्होंने 2024 में शादी की और उनके इस रिश्ते की भनक उनकी माँ को पहली बार एक पार्टी में लगी। पर फिलहाल उनके मम्मी पापा ने इस रिश्ते को भी एक्सेप्ट किया और आजकल वे एक यूट्यूबर है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करती हैं, ट्रैवल करना पसंद करती हैं और उनके कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनके व्यूअर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।
1: एक छोटी सी मुलाकात
0: और 38 वर्षीय सोनाक्षी सिन्हा आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। तो चलिए हमारी पूरी टीम की ओर से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारे कई सारे ऐसे फैंस हैं सोनाक्षी के। गीतों के माध्यम से उनको हम बहुत ज्यादा विश करना चाहते हैं हैप्पी बर्थडे और बस जिंदगी में आगे बढ़ें। जीवन में कहते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। काम ऐसा करो कि नाम बन जाए और आपको मिले बहुत सारी शाबाशियां। फिल्म मिशन मंगल का ये गीत और इसी के साथ आज का ये सेगमेंट बस यहीं पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। आपको याद दिलाते चले कि हमारे बाद बिल्कुल 8:50 पर आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के साथ। तो ये रहेगा सुबह का नजराना कार्यक्रम का आखिरी गाना।

0: तो ये थी सोनाक्षी सिन्हा, बिल्कुल शाबाशियां हासिल करिए, काम ऐसा कीजिए कि आपका नाम हो जाए। और चलिए इसी के साथ जुड़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट के साथ जो है हमारी धरोहर।
1: 7 days a week, 24 hours a day. My, this is Radio Marches.
0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में तोहर स्वागत बा। हर बरिस यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवतावाद के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सूची में अलग अलग देश द्वारा भेजल गल प्रस्तावित करल गल अमूर्त विरासत के शामिल करल जाला। और प्रस्तावित करल गल अमूर्त विरासत ही धरोहर में शामिल होवेला, जो यूनेस्को के सब शर्त पर खरा उतरेला उही सूची में शामिल होवेला। और उस सब धरोहर में से एगो दिलचस्प धरोहर है बागेत, पै बागेत जेके बोलीला जा, एकर नामजदगी फ्रांस द्वारा करावल गल रहल। कहे कि बागेत के स्रोत ओकर जो लोरिजिन है वो फ्रांस ही है। फ्रांस में बागेत सबसे मशहूर और सबसे मनपसंद रोटी है, जेकर आनंद फ्रांस भर में भर बरिस उठावल जाला। असल में बागेत के पैदावार के पारंपरिक जानकारी और सांस्कृतिक वजह से ही एकर नामजदगी होलबा। परंपरागत पैदावार में आटा में मिलावल जाए होला अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि ओकर मेजन ओकर मात्रा कितना चाहिए रहे के और पकावे के जो तरीका बा ई सब पर बहुत जोर देवल गल बा। दूसर रोटी के तुलना में बागेत में खाली चार गो मेजन, चार गो इंग्रेडिएंट्स मिलावल जाला और वह आटा, पानी, नमक और यीस्ट लेलवे। एगो विशेष जानकारी है बागेत के पैदावार खातिर और दिन भर ई पैदा करल जाला। एकर आकार और लंबाई अलग रहेला और अलग अलग सामाजिक प्रथा में एकर इस्तेमाल करल जाला। पारिवारिक भोजन के दौरान, रेस्तोरों में, विशेष व्यंजन के संगे, ऑफिस में, स्कूल में, हर जगह बागेत के पकावल जाला। और एकर परंपरागत बेकरी भी है जो वहाँ पर बहुत अच्छा से स्थापित हो गल बा और एकर पूरा राष्ट्र स्वाद उठावेला। एकर बिना जे देखबा तो वहाँ पर जीवन ही फीका पर जाए। और बागेत के खाई होला जे लोग हवन जा उ लोग में कोनो भेदभाव नहीं बा। उ चाहे अमीर रही, चाहे गरीब रही, चाहे कोई भी लिंग के व्यक्ति रही, चाहे उ जवान बूढ़ा लड़का, सब कोई ई पसंद करेलन सा। फ्रांस के जो बागे था वो अपन जगह अंतर्राष्ट्रीय सूची में बना ले लेबा। और ई बागेत अच्छा से देखबा तो वो खाली फ्रांस के नहीं रह गल बा, ओकर सीमा पार करके दुनिया भर में फैल गल बा। मॉरिशस एगो बेहतरीन उदाहरण है, कहे कि हियाँ पर भी बागेत के इस्तेमाल बहुत होवेला, दिन भर होवेला और साल भर, और फिर एकर पैदावार फ्रांस जैसन ही है। और ई खातिर मॉरिशस में ई स्थापित हो गल बा, कहे कि यहाँ पर फ्रेंच कॉलोनाइजर्स लोग रलन सा, तो जब यहाँ पर बरतानी लोग आ रलन सा ओकर से अक्ते फ्रांसीसी उपस्थिति के कारण ही यहाँ पर भी ई जोन प्रथा बा बागेत खाए के वो स्थापित हो गल बा। बागेत हर प्रकार के रहेला और आज एक से बढ़कर एक बागेत उपलब्ध है। बटा और जाम से एक सकबा खाए, सलाद, अंडा, मछली, सब्जी, सब कुछ से एकर सेवन होवेला। एक स्टार्टर में भी इस्तेमाल करल जाला, मेन कोर्स में भी। और जब बागेत बच जाला तो ओकर से देसे अभी बनावल जाला। तो इस तरह से बागेत आज अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है जोन फ्रांस जेकर

0: लिस्टिंग करवाइले बा। कार्यक्रम के ध्यान से सुन ला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: चला हमारा हमारी धरोहर कार्यक्रम खातिर किरण जानकी जी के बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा। आउरी जैसे तू बोलन जिपे जिबे आउरी फोमाज आई ता एगो स्टेपल फूड है मॉरिशस के, और एगो बढ़िया गीत तोहर खातिन गासन सिंह ओगन के आवाज में बड़का मामा एल्बम से लेवल गए हाई गीत के संगे आगे बढ़ब सा। और आप सबको के जना देवत हाई कि आज की चर्चा कार्यक्रम अभी 9 बजे के समाचारों के बाद तू सुने सकबा। और आज के कार्यक्रम वैश्विक माता पिता दिवस पर आधारित रही, और आज के हमार अतिथि रही श्रीमान अश्विन कुतावाहू जी, और हई कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण करल जाए सुमिता सरकार द्वारा। तो बस सुनते रह, साथ देते रह, अब हम भेंट करब सा तोहर संगे 10 बजे के समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम में तबले।

0: मंगलवार 2 जून घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 9 बज रहे हैं। समाचारों को लेकर पूजा आ चुकी है। पूजा आपका स्वागत है।
1: नमस्कार आप सभी को। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय सभा के कार्य आज दिन के 11:30 बजे विपक्ष नेता जूली रोगाव के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन से होगी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम होगा। कार्यसूची में 60 से अधिक प्रश्न शामिल हैं, जिनमें से लगभग 20 प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से पूछे जाएंगे। इनमें रोड्रिक्स मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन और प्रशासनिक सेवा जैसे संवेदनशील मुद्दा शामिल हैं। अब तक मॉरिशस से अदिस अबाबा जाने के लिए यात्रियों को जोहान्सबर्ग, नैरोबी या अंतनारिवो में ठहराव करना पड़ता था, लेकिन बहुत जल्द ये स्थिति बदलने वाली है। अफ्रीका की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इथियोपियन एयरलाइंस बहुत जल्द मॉरिशस के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। पिछले सप्ताह इस नई सेवा की घोषणा की गई थी। इथियोपियन एयरलाइंस इस नए मार्ग पर सप्ताह में 3 उड़ानों का संचालन करेगी। जुलाई 2026 से मॉरिशस में कई सामाजिक अकाउंट्स में धीरे धीरे कटौती की संभावना है। इस फैसले ने विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के बीच कई सवाल पैदा किए हैं। इन बदलावों में सेज इनकम अलाउंस स्कीम है, जिसका प्रबंधन मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनकी मासिक आय निर्धारित सीमा से कम है। इस प्रस्तावित बदलावों का असर हजारों परिवारों पर पड़ सकता है, जो अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस सहायता पर निर्भर है। विदेश में कुवैत ने अपने हवाई क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने की बात कही है। इस घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब दोनों देशों के बीच युद्ध सप्ताह समाप्त करने को लेकर चल रही वार्ताएं आगे नहीं बढ़ सकी हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार और शुभ दिन।
2: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस आज की चर्चा।
1: मंगलवार 2 जून रेडियो मॉरिशस पर साथी जितने दर्शक हमें MBC के चैनल 3 के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी का हार्दिक

0: एक स्वागत हम करते हैं सुमिता की ओर से, नमस्कार स्वीकार करें। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और ये सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई होगी। आज है मंगलवार और हम हमेशा की तरह आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में आ गए हैं। आपको बता दें इस कार्यक्रम को इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसका सीधा प्रसारण हो रहा है रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर। साथ ही इसे आप लाइव इस समय हमें देख पा रहे हैं MBC के चैनल 3 पर भी। आपको ये भी याद दिला दें इसी प्रोग्राम का रीब्रॉडकास्ट जो है उससे आप सुन पाएंगे आज ही सपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर। साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे सपहर के 4 बजे MBC के चैनल 3 पर ही। तो चलिए आज की चर्चा इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। और कल 1 जून को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया, ग्लोबल पेरेंट्स डे, विश्व माता पिता दिवस। और माता पिता का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये शायद हम सब शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। सो इस दिन को मनाया जाता है हर वर्ष 1 जून को। यूनाइटेड नेशन ने 2012 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। और माता पिता जो है अपने त्याग के लिए जाने जाते हैं, अपने प्रेम, अपने मेहनत, अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तो आज इसी विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच मिस्टर अश्विन कतवारू जी जुड़ चुके हैं। अश्विन जी जो है वो है आर्य सभा एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन, साथ ही लकी चाइल्ड स्पेशल एजुकेशन नीड्स के प्रेसिडेंट है। उसके अलावा काफ़ी सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, बच्चों और ख़ासकर नौजवानों को लेकर काफ़ी कार्य करते हैं, जूरिस्ट है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। तो अश्विन जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, नमस्कार आज के कार्यक्रम में। आप हमेशा जुड़ते हैं, आज भी आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़े थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम एक बहुत ही विशेष विषय लेकर आए हैं, ग्लोबल पेरेंट्स डे जो कल मनाया गया। तो इस दिन के बारे में थोड़ा सा बताए, इस दिन के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताए, कब से इसे मनाने की शुरुआत हुई थी, इसके पीछे उद्देश्य क्या है।
1: जैसे आपने तो सबसे पहले बहुत नमस्ते, मैं आपको और जितने श्रोता और दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मेरा सादर नमन। जब से ये आपने बोला है 2012 से शुरू हुआ है, और ख़ास कर जितने जो हमारे माँ बाप है उन लोगों के त्याग समर्पण, और अभी हम बात करें तो एक माता पिता का ही देन है समाज को।
0: ये सही कहा आपने।
1: तो अब मैं, आपने बोला आर्य समाज से जुड़ा हूँ और इतने संस्थाओं से जुड़ा हूँ, एक खास मैं जेपी नारायण सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड पीस से जुड़ा हूँ।
0: अच्छा।
1: उसका मैं संस्थापक हूँ और अध्यक्ष भी हूँ और पॉलिसी एडवोकेट भी हूँ उसका
0: जी।
1: तो ये इसका उद्देश्य है, जैसे बच्चों को माँ बाप को साथ मिलाना उसका यही उद्देश्य है, तब जाकर वर्ल्ड पीस बनेगा। इसीलिए उसका नाम ही वर्ल्ड पीस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड पीस। और ये 2012 में संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे आपने बोला यूनाइटेड नेशन, उन लोगों ने सोचा कि कैसे माँ बाप को जो ये जो सब सोसाइटी है वो बिखर रहा है उसको कैसे जोड़े।
0: बिल्कुल, अभी के समय की बात करें तो हर एक रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरियां आ गई है। फिर चाहे वो दूरियां बातचीत ना होने की वजह से हो, विचारों का मतभेद हो, और काफ़ी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो इन सब का जो है कारण बनता है। लेकिन खास कर माता पिता की जब हम बात करते हैं, माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं, हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। और आज के समय में हम देखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो रोल है वो पहले जैसा नहीं रहा, समय के साथ काफ़ी कुछ बदल रहा है। तो हम चाहेंगे कि पहले कैसा था, थोड़ा सा आप इस पर बात करें, वर्तमान में कैसा चल रहा है, और वर्तमान को देखते हुए भविष्य में किस तरह की चिंताएँ जो है हम माता पिता और बच्चों के संबंध को लेकर जो है बात कर रहे थे, किस बातों पर हम जो है रोशनी डाल सकते हैं।
1: मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो आपको चौंका देगा। ये जितने जो हम अब बात कर रहे हैं माता पिता और बच्चों के जो संबंध का, तो एक दूसरा एक पहलू है उसका जो है बोलते हैं टॉक्सिक पेरेंटिंग। तो उसको थोड़ा बाद में लेंगे, तो थोड़ा अभी जो अच्छा वाला सुंदर वाला सब करके तब टॉक्सिक पेरेंटिंग वाला में बात करेंगे
0: जी।
1: तो पहला है आगे के समय में आपको ऊंची आवाज में आपके माता पिता के साथ बात करना वर्जित था
0: जी।
1: आप नहीं, आप कल्पना ही नहीं

0: नहीं कर पाएंगे कि माता पिता जी को कुछ आप बोले।
1: बिल्कुल, आज भी अगर हम अपने माता पिता को, मुझे याद है आज भी कुछ बोलने के पहले हम दो बार सोचते हैं, खासकर पिता के सामने ना, माँ के सामने तो चलो हम बोल भी देते हो, भी जब पिता नहीं होते हैं ना, पिता के प्रति आज भी डर नहीं कहेंगे, वो सम्मान है ना, बोलने के पहले दो बार सोचते कि हम बोले या ना बोले।
0: तो उस समय प्रभाव था दादा दादी का
1: जी,
0: या नाना नानी का
1: जी,
0: उस समय का
1: जी।
0: तो जो संस्कार हमको मिला था
1: जी,
0: वो अब हमको सीखने को मिल रहा था, क्योंकि जो माता पिता थे दादा दादी, उन लोगों के साथ कैसे बात करते थे, व्यवहार कैसा था, तो हम उससे सीखते थे, तो आगे आप से संबोधित करते थे, तू नहीं माता पिता है तो आप,
1: बिल्कुल हाँ।
0: तो ये जैसे डायरेक्टली एक संबंध, एक रिस्पेक्ट,
1: एक सम्मान अपने आप में आ गया बातों में ही।
0: हाँ, बातों ही में। दूसरा अब देखेंगे जो मिलेनियल्स है, मिलेनियल्स में वो भी थोड़ा जो आगे का वो थोड़ा रिफ्लेक्ट करता था, अब देखेंगे जेंजी में तो ये टू पर आ गया है। तो ये भी दो पहलू है इसमें, हम सोचते हैं कि एक तो हम बच्चों को नज़दीक ला रहे हैं, ठीक है, कोई सोचेगा मेरा बच्चा है तो मुझको जैसे खुल के बता रहा, बात कर रहा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा उसमें चाहिए कि माँ बाप को एक जैसे एक रिस्पेक्ट का वो एक लाइन, एक रेखा खींचना चाहिए उसमें, जिससे कि वो पार न हो
1: जी।
0: तो अब देखेंगे कोई कोई बच्चा तो डांट देते हैं या बिल्कुल ही गलत तरीके से व्यवहार कर लेते हैं, बर्ताव करते हैं,
1: और भाई बहन के बीच में भी देखो हम अगर बड़े हैं तो कभी नाम लेकर नहीं पुकारते थे ना, ये अपने आप में एक सम्मान ही है, या हमारे संस्कार कहे कि हमसे जो भी बड़े हैं हम उनको उसके हिसाब से पुकारते थे, छोटे हैं तो भले नाम से पुकार लेंगे, तो बड़ों को कभी नाम से नहीं पुकारते थे।
0: तो वही था। अब देखते हैं कि जो अभी तो जेंजी का समय थोड़ा निकल रहा है, अब ये अल्फा है,
1: अल्फा
0: और बीटा भी आ गया है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है अल्फा और बीटा को कैसे हम कंट्रोल करें
1: जी।
0: कैसे वापस वहाँ जो रूट है उसके जो जड़ है उससे जोड़े, तो ये हमारे हाथ में है अभी।
1: और कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन इस दिन को मना रहा है, तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल समस्या बन गई है ना, माता पिता और बच्चों के बीच में जो तनाव है। कहते हैं विदेशों में तो बच्चे 18 साल के होते ही घर छोड़कर चले जाते हैं, अपना अपना रास्ता देख लेते हैं, माता पिता को पूछते नहीं है, लेकिन अभी भी जो है हमारे एशियाई परिवारों में ये दिखता है कि माता पिता का कोई ना कोई तो है जो ख्याल रख रहा है, घर में 2-3 बच्चे तो उसमें एक जो है जो रखता है ख्याल ना। और अगर ऐसे में जॉइंट फैमिली तो अभी काफ़ी कम हो गई है, न्यूक्लियर फैमिली का एक दौर चल पड़ा है, जहाँ पर बच्चों में जो है संस्कारों की बात कहे, उठना बैठना कहे, वो रिफ्लेक्ट होता है जब आप एक संयुक्त परिवार से आते हैं, और जब आप न्यूक्लियर परिवार से आते हैं तो थोड़ा सा जो अंतर है वो दिखाई देता है हमारे बर्ताव में। तो क्या ये भी एक बड़ा मसला है अभी के समय में, बच्चों और माता पिता के बीच जो संबंध है बिगड़ते जा रहे हैं?
0: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ इतने सालों से है,
1: हाँ।
0: लेकिन उन लोगों का जो आइडिया हुआ तो 2012 में, इतने सालों के बाद आइडिया आया कि हम इस
1: दिन
0: को मनाएंगे
1: जी।
0: और अब देखेंगे कि एक दिन पहले उसका हमने मॉरिशस का मातृ दिवस मनाया। वैसे मातृ दिवस तो मनाया जाता है मार्च महीने में,
1: जैसे मध्य में, ग्लोबली,
0: हाँ ग्लोबली, लेकिन मॉरिशस में खास यहाँ पर
1: अंत में आखिरी रविवार को मनाया जाता है, शायद लोगों की तनख्वाह आ जाती है तो आसान हो जाता है।
0: ये भी एक लोबी है व्यापारों का
1: जी।
0: लेकिन ये इसको साइड में रखेंगे
1: जी।
0: तब लेकिन हम देखेंगे जब रविवार को हुआ था तो लोग सोचते हैं कि एक ही दिन हम माता जी को सम्मान देंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए
1: जी। बिल्कुल,
0: ये रोज का एक जैसे
1: नियम
0: होना चाहिए कि माता पिता को सम्मान, और जैसे जो लोग हमको इस धरती पर लाया उन लोगों के प्रति जैसे ग्रैटिट्यूड होना चाहिए।
1: एग्जैक्टली, बहुत ज़रूरी है ये, हम भूल जाते हैं शायद। हम सोचते हैं कि आजकल के बच्चे हमें कभी कभार देखने को मिलते हैं, देखिए ना हम समाज में उठते बैठते हैं, इतने हमारे जो है रिसोर्स पर्सन्स के साथ कार्य करते हैं, फिर चाहे वो एजुकेशन के फील्ड से हो या साइकोलॉजी के फील्ड से हो, सो बहुत सारे ऐसे जो है टॉपिक्स आते हैं जहाँ पर अभी के समय बच्चों में जो है वो कृतज्ञता नहीं है ना, एक ग्रैटिट्यूड, वो सोचते हैं कि आपने हमें जन्म दिया है

0: तो ये आपका फर्ज है हमारे लिए करना ना, फर्ज तो है। हाँ। ये इसमें कोई दो राय नहीं है।
1: ये माता जी जब से हम जब जन्मे थे आज तक जैसे एक बच्चे का वो ख्याल रखती है, ठीक है, लेकिन जब वो कुछ हम जो अपेक्षा है हमारा जब वो पूरा नहीं करती है तब हम उस जो नहीं दे पाई
0: जो नहीं मिला, हाँ, नहीं उस मिला, पर हमारा फोकस ज्यादा होता है,
1: फोकस ज्यादा होता है। और जितने जो अच्छा कार्य किया है हाँ, वो भूल जाते हैं।
0: कहीं हाँ, ना कहीं शायद हम भी जाने अनजाने में ऐसी चीजें करते हैं हाँ, पर कहीं ना कहीं एक ऐसे जब विषय पर हम बात करते तो ये हमें भी हमारी सोच पर रिफ्लेक्ट करने का एक अवसर देता है। तो चलिए, जितने श्रोता और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं आज हम ग्लोबल पेरेंट्स डे विश्व माता पिता दिवस पर चर्चा कर रहे हैं जो हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। अगर आप भी आज के इस कार्यक्रम में अपने विचार बांटना चाहते हैं तो 402-8085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो अश्विन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी के समय में पेरेंट्स का रोल कैसे होना चाहिए? बदलते वक्त के साथ हमारे ज़िंदगी जीने का तरीका बदल रहा है, लाइफस्टाइल बदल रही है, तो इसके मुताबिक क्या माता पिता को भी उस हिसाब से ढलना चाहिए या हमारे पुराने वैल्यूज़ पर ही टिके रहना चाहिए? ऑब्वियसली वैल्यूज़ अपने आप में एक इम्पोर्टेंस होल्ड करता ही है, लेकिन क्या बदलते समय के साथ पेरेंटिंग के नए तरीके भी अपनाने चाहिए?
1: मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं 100% जैसे बोलते हैं जैसे परफेक्ट बच्चा नहीं हूँ, ठीक है, मेरा भी कुछ खामियां है, मेरा भी कुछ कमियां है, और मेरे भी जो मैं माता पिता जी के साथ में बात करता हूँ उसमें थोड़ा उठाव चढ़ाव भी होता है, ये तो स्वाभाविक है,
0: स्वाभाविक है।
1: लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब एक बच्चा अभी के समय में जन्म लेता है तो हम उसको जो जिस युग में और जिस साल में और जिस समय में वो उसको जन्म दिया है उसको लेकर हम आगे की ओर चले, लेकिन जो हमारा वैल्यूज़ है उसको भी साथ में चले।
0: बिल्कुल।
1: और ये होता है संस्कार से, संस्कार जो अपने माता पिता ने अपने माता पिता से सीखा है और सोसाइटी में बैठका में जहाँ पर वो सीखते हैं वो उसको साथ में लेकर चलना, तब भी ये
0: एक कंप्लीट ओवरऑल जैसे कि हम कह सकते हैं, है ना, क्योंकि हम अपनी नींव को ही अगर छोड़ दे, मतलब कि अपने संस्कार जो हमने बचपन से सीखा है उसे छोड़कर अगर हम नई चीज़ों को अपनाकर आगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो फाउंडेशन है वही वीक होगा ना। जैसे हम आमतौर पर कहते हैं कि भाषा गई तो संस्कृति गई, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में प्रोग्रेस के लिए बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि एक व्यक्ति कितना भी पढ़ लिख ले अगर उसमें वो उठने बैठने का या बातचीत करने का स्वभाव नहीं होगा तो लोग पहले यही कहते कि इसकी परवरिश कैसे हुई है ना। ये एक आम धारणा है, एक आम कमेंट है जो हमें सुनने को मिलता है, फिर चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर हो या किसी भी सर्कल में आप उठ बैठ रहे हो। तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन संस्कारों का होना भी बहुत आवश्यक है जो कहीं ना कहीं हमें अपने बड़े बुजुर्गों से अपने माता पिता से ही मिल सकता है।
1: मैं एक उदाहरण दूंगा
0: जी,
1: जैसे एक आप कहीं पर जाते हैं और कोई आपके सामने आ गया, आप बैठे हैं वो सामने आ गया, तो आप जब उठकर उसको हैंडशेक करते हैं या नमस्ते बोलते हैं या हाथ जोड़कर कुछ भी करते हैं तो एकदम से बिना मुंह खोले आपको दिख जाएगा कि इसका परवरिश कैसे हुआ,
0: कैसे हुआ, बिल्कुल सही कहा,
1: और इसका संस्कार कैसा है
0: जी,
1: समझ रहे हैं ना। यदि आप कोई आपके सामने आए आप बैठे ही है या आप ऐसा कुछ आप रिएक्शन नहीं दे रहे तो वो उसको भी पता लग जाएगा कि इसका परवरिश कैसा है
0: जी। ये आपने बिल्कुल सही कहा, कभी कभार हमें मुंह खोलने की आवश्यकता हाँ, नहीं पड़ती है, हमारा जो आचरण होता है ना, जो उठने बैठने का तरीका या देखने का तरीका जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत कुछ बता देता है आपके बारे में। और इस बात पर मैं ये बात भी जोड़ना चाहूँगी, आप बताइए कि इस पर आपके क्या विचार है। आजकल कहते कि बच्चे जब कोई घर में मेहमान आता है तो अपने कमरे में बंद रहते हैं, मिलने नहीं आते हैं, उन्हें ग्रीट नहीं करते, माता पिता को फोर्सफुली उन्हें बुलाना पड़ता है, तो ये भी अपने आप में एक दिखाता है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है ना, हमारे जो नई पीढ़ी है वो कहाँ जा रही है।
1: तो हाल ही में मैं एक बैठक में था, तो वहाँ पर ये लकी चाल का है एक बैठक था, तो मैं मेरा मित्र है तो हम बात कर रहे थे कैसे जो यहाँ के जो जैसे इन जनरल कैसे बच्चे का व्यवहार होता है
0: जी।
1: तो वो एक उदाहरण देता है कि उसके जो भतीजे है उसके पूछता है खाना खाया, हाँ क्या खाया, रोटी,

0: तो ऐसा
1: एक शब्द वाला
0: और जितने जो समय वो उसके बात कर रहा था आई कॉन्टैक्ट जीरो,
1: बिल्कुल नहीं, हाँ।
0: और जो फोकस है वो मोबाइल में देखकर, तो मोबाइल में उसका फोकस है, सिर्फ एक शब्द में उसका जवाब दे रहा है,
1: यानी कि ये दिखाता है कि बच्चे को आपकी बातों में कोई दिलचस्पी
0: नहीं है,
1: और उससे बड़ी बात कि उसके आपके प्रति उसका कोई सम्मान नहीं है,
0: सम्मान नहीं है और डिस्कनेक्ट है।
1: एग्जैक्टली, और ये डिस्कनेक्शन ही है जो हमारे रिश्तों को आज इतना ख़राब कर रहा है। हम पेरेंट्स की बात करें तो सिर्फ बच्चों तक ये सीमित नहीं है, घर में अन्य हमारे रिश्ते नाते भी है, भाई बहन हुए, पति पत्नी हुए, ये सब भी आ जाते हैं, क्योंकि हम ग्लोबली बात कर रहे हैं, तो सिर्फ माता पिता तक तो सीमित नहीं रहेंगे ना, जब उनके बच्चे होंगे, वो शादी करेंगे, फिर परिवार बढ़ता जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। तो इस पर आपके क्या विचार है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि माता पिता बच्चों को अच्छा सिखा रहे हैं लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी, मतलब कि ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो बच्चा भी सोच में पड़ जाता है ना कि आप हमें कह रहे हैं कि लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करो, लेकिन आप अपने पार्टनर से या आप अपने माता पिता से वैसे ही बात कर रहे हो, और बच्चे जितना बोलते हैं उससे नहीं सीखते हैं, वो आपके व्यवहार को देख कर सीखते हैं। तो इस पर आपके क्या विचार है?
0: ये आपने सही बोला, क्योंकि जब देखेंगे तो हम बोलते हैं बच्चा जो आप उसको सिखाते हैं वो नहीं सीखता है, जो आप करते हैं व्यवहार से वो उससे सीखता है
1: जी।
0: तो ये बहुत एक गंभीर समस्या है मॉरिशस में और विश्व भर में
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए ये इसको इस दिवस में हम उसको मनाते हैं। और जब मैंने बोला था, जैसे हम आगे मैंने बोला था टॉक्सिक पेरेंटिंग में क्या हो गया कि अभी देखते हैं कि जो डाइवोर्स का रेट बहुत बढ़ गया है,
1: बढ़ते जा रहा है
0: और ग्लोबली ये समस्या है। दूसरा है ड्रग्स, और ये सब चीज़ जो होता है वो आर्टिफिशियली ये थोड़ा दबाव डालता है रिश्तों में
1: जी। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं,
0: जो समस्या है
1: जी।
0: और माता पिता में जैसे ड्रग्स है और अल्कोहलिज्म है, और एक्सटर्नल जैसे वो होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स
1: जी।
0: तो ये सब मिलाकर ये एक्सटर्नल ऑफ ये होता है जो समस्या है
1: जी।
0: जो दबाव डालता है ये बच्चों पर और माता पिता और बच्चों के रिश्ते
1: जी। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से निकलना भी कभी कभार मुश्किल होता है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि हम बच्चे को वो अच्छा एनवायरनमेंट ही नहीं दे पाते। कभी हालात ऐसे होते हैं, लोग निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है, लेकिन कभी ऐसी चीज़ों में या ऐसे हालातों में फंस जाते हैं जिससे निकल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक काउंसलर के पास जाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आज के अभी के समय में जो है मेंटल हेल्थ की बहुत बातें की जाती है, काउंसलिंग की बातें की जाती हैं, लेकिन जब उस व्यक्ति पर खुद आता है तो वो सोचता है मुझे तो कोई दिमागी बीमारी नहीं है, मुझ में तो कोई कमी नहीं है, और वो जाकर एक काउंसलर को देखना, एक साइकोलॉजिस्ट को देखना जो है इससे रिफ्रेन करता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लोग समझेंगे कि कहीं मुझ में कोई ख़राबी है जाके मैं काउंसलर को देख रहा हूँ, क्योंकि एक टैबू के रूप में अभी भी इसे देखा जाता है, लोग इसे ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं।
0: तो ये मैं बोलूँगा कि हम एक डिनायल फेज में रहते हैं, ये मेरे साथ नहीं हुआ है या ये नहीं हो सकता है, ये सिर्फ अन्य लोगों का हाँ, होता है, मेरा हाँ, कुछ नहीं होता है। तो ये एक डिनायल फेज में रहते हैं जो बुरा है
1: जी।
0: दूसरा है आप काउंसलर के पास जाएंगे, बहुत अच्छा है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो फॉर्म्ड है, उन लोगों का ये जो ट्रेनिंग होता है उसी के विषय पर है। लेकिन जो फिर जब काउंसलर आपसे बात करेगा, साइकोलॉजिस्ट आपके साथ वो बात करेंगे, तो कुल मिलाकर आपको ही कदम लेना है।
1: एग्जैक्टली
0: तो आपको खुद वो मैपिंग तो ये सब वो साइकोलॉजिस्ट कर देगा, आपको सिखा देगा क्या, लेकिन बाद में आपको ही ये सब में
1: मतलब उसी उन सब स्टेप्स को आप ही को फॉलो करना है। और बहुत से लोग यहाँ पर आकर फिर रुक जाते हैं,
0: हाँ, रुक जाते हैं, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैंने फलाना साइकोलॉजिस्ट के पास गया था, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ये वो है, काउंसलर है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो इफेक्ट जब बाद में इसको अमल में लाना है तब यही से,
1: यानी कि जब तक आप उन सभी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक वो काउंसलिंग आपके काम की नहीं है,
0: कारगर नहीं रहेगा जब तक आप इसको आप नहीं देखेंगे।
1: चलिए 4028085 है नंबर हमारा। अगर आज के इस प्रोग्राम में आप अभी अपने विचार बांटना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। अभी के लिए

0: आज की चर्चा।
1: चलिए आज की चर्चा कार्यक्रम आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम विश्व माता पिता दिवस पर चर्चा कर रहे हैं। हर वर्ष पहली जून को ये मनाया जाता है, कल इसे मनाया गया था। और माता पिता की हमारे जीवन में जो भूमिका है उसे एक घंटे के इस कार्यक्रम में हम पूरा नहीं कर सकते। वो अपने आप में इतना है कि शायद ऐसे न जाने कितने कार्यक्रम हमें करने पड़ेंगे, तब जाकर हमारी इस चर्चा कहीं ना कहीं जो है लगेगा कि हमने सारा जो है टॉपिक इंक्लूड कर लिया है, सारे फैक्टर्स पर बात कर लिया है। लेकिन चलिए फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। खासकर हम नौजवानों की बात करें, आजकल तो जैसे आपने कहा अल्फा हो गया और पता नहीं क्या क्या आ रहा है, तो कहीं ना कहीं नौजवान आजकल एक अलग ही जो है तरह के जीवन को जी रहे हैं ना। एक तो सोशल मीडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस है और ऐसे ऐसे कंटेंट वो देख रहे हैं जिस पर माता पिता का ही कंट्रोल नहीं है, तो ये भी एक प्रभाव डालता है माता पिता और बच्चों के रिश्ते के बीच। अभी के समय में एक बच्चे को कुछ करने से रोकना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना, कि कुछ टोकना कि ये तुम क्यों कर रहे हो या ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ऐसे में क्या उस यंगस्टर्स, उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है अपने माता पिता के प्रति उनकी बात को सुनना, या बदलते समय के साथ किस तरह के सोच में उनके बदलाव आना चाहिए कि वो दोनों फैक्टर्स को अच्छे से समझ पाए?
2: यहाँ

0: पर हम देखेंगे कि जब से बच्चों के हाथों में मोबाइल आ गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो वो लोग सोचते हैं कि माता पिता के पास नेचुरल इंटेलिजेंस है और हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। माता पिता सुबह निकलते हैं, काम पर जाते हैं और सुबह से शाम तक वो काम पर रहते हैं, उन लोगों के हाथों में खाना और पैसे थमा कर चले जाते हैं। और अभी के ज़माने में देखेंगे कितने एप्लीकेशन आ गया है एआई का। तो अभी हाल ही में मैं किसी एक माता जी को से बात में कर रहा था
1: जी।
0: तो वो बोलती है कि मेरा बेटा जब भी कुछ करना चाहिए उसको, तो वो एआई में वो बात करता है। तो एआई से बहुत गहरा उसका संबंध है
1: और माता पिता से कम है।
0: माता पिता से कम है। अब ये जितने जो अभी माता पिता हमको सुन रहे हैं, वो अभी इन लोगों का दिनचर्या में ये उन लोगों को देखने को मिल रहा है।
1: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि वो तो एक फटाफट वो कुछ जैसे एक सेकंड में
1: एक क्लिक पर उनको जवाब मिल जाता है।
0: एक क्लिक में उनका जवाब मिल जाता है, लेकिन जवाब अच्छा है बुरा है या जो उन लोगों का एक्सपीरियंस में है वो, क्योंकि वो तो जनरल है।
1: Exactly.
0: एक जो भी आप पूछ रहे हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं, वो उसका इंटरनेट में से जवाब लेकर आपको दे रहा है।
1: आपको दे रहा है।
0: यदि वो आप पर अडाप्टेड है, आपके जो सिचुएशन में अडाप्टेड है या नहीं, वो बच्चा को नहीं जानता,
1: वो नहीं पता, क्योंकि एआई तो आपको इन जनरल जवाब दे रहा है। शायद एआई को नहीं पता ना कि वो बच्चा है आपसे पूछ रहा है या एक नौजवान है या एक वृद्ध व्यक्ति है। शायद एआई वही सेम जवाब वही सेम सवाल का सभी को दे रहा है, लेकिन एक माता पिता के पास अगर बच्चा अपना प्रॉब्लम लेके जा रहा है तो वो उसकी उम्र के हिसाब से उसे समझाने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा,
0: उसका एक्सपीरियंस,
1: अपना अनुभव,
0: जो बच्चे का एक्सपीरियंस, उसको जानता है कि वो बीमार था, उसका अस्थमा था जब छोटा था, ये था या स्वास्थ्य के संबंध,
1: मतलब कि सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए,
0: उसका पैसा है या पैसा नहीं है। मान लो वो बच्चा पूछेगा एआई से, मैं मुझको सबसे एक बढ़िया तोहफा चाहिए, तो वो बोलेगा एक गाड़ी 10 लाख का। तो 10 लाख कहाँ से लाएगा माता पिता? तो इसीलिए जो है उन लोगों को ये आकर्षण हो रहा है एआई के प्रति, तो ये माता पिता, तो यहाँ पर जो माता पिता भी का भी एक फॉल्ट है, क्योंकि उन लोगों छोटे से ही उन लोगों को मोबाइल थमा दिया और समय ही नहीं है उन लोगों के पास बात करने के लिए। वो माता पिता जब घर पर आते हैं, खाना पकाती है या मोबाइल पर रहती है, तो बच्चों को दे दिया या उनको होमवर्क दे दिया या अपने कमरे में बंद है
1: जी। तो ऐसा नहीं है कि माता पिता पहले काम नहीं करते थे, पहले में भी ऐसे कॉर्पोरेट जॉब्स में नहीं थे, लेकिन पहले के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, दोनों ही पति पत्नी खेतों में जाते थे काम करने, या जो भी काम होता था, पढ़ाने का काम करते थे, जो भी, उस समय भी बहुत सारे ऐसे कपल्स थे जो काम करते थे। ऐसा नहीं कि एक घर पर रहता था तो एक काम करते थे। हमारे यहीं मॉरिशस में देख लीजिए कितने लोग तो कृषि से जुड़े थे, है ना, प्लांटेशन से जुड़े थे, तो दिन में वो भी काम करते थे। लेकिन ये जो बच्चे जो थे उस समय घर ही के लोग उन्हें संभालते थे, फिर चाहे घर के अन्य सदस्य हुए या बड़ी बहन हुई या चाचा चाची हुए। लेकिन अभी के समय में जस्ट बिकॉज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं, तो जब माता पिता काम करने जा रहे हैं और बच्चा एक समय घर पर लौट रहा है, देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो शायद मीडिया की ओर जा रहा है, गैजेट्स की ओर जा रहा है। ये भी एक कारण है ना, मतलब कि हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसे होते जा रही है। और फिर माता पिता बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं देंगे तो ये एक अलग फैक्टर बन जाता है लड़ाई झगड़े को बढ़ाने का ना। बच्चे काफ़ी ज़िद्दी हो जाते हैं कि मेरे दोस्त के पास तो है तो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं।
0: तो ये एक्सटर्नल फैक्टर भी है। और अब देखेंगे कि इस दौर में देखेंगे तो टीवी में इतने चैनल्स है, इंटरनेट आ गया है, इतने वेबसाइट आ गया है, और देखेंगे कि वेबसाइट में भी जैसे हम जैसे नहीं देख पा रहे हैं बच्चे क्या देख रहा है। तो अभी मैं खुश हूँ कि मॉरिशस में ये सब टेक्नोलॉजी आ रहा है, जिससे कि आप पेरेंटल
1: कंट्रोल
0: कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एक मॉरिशस में आ गया है।
1: हाँ, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स जो समझदार हैं इन सभी बातों को समझते हैं, तो मोबाइल को उस हिसाब से सेट करते हैं कि मतलब कि बच्चा क्या देख पाएगा या किस हद तक, है ना।
0: और ये भी कंट्रोल है कि आप उसको निगर...

0: निगरानी कर सकेंगे क्या देख रहा है और कितने समय तक वो देख पाएगा, समझ रहे ना। तो हमने ही छूट दे दिया है इंटरनेट एक 24 आवर्स में, वो 24/7 चलता है
1: जी।
0: लेकिन मैंने कहीं कहीं गृहस्थियों में देखा है कि लोग वहाँ पर टाइम करते हैं,
1: अप्लाई कर रहे हैं
0: 30 मिनट तो 30 मिनट में बंद
1: जी,
0: या 10 मिनट या 5 मिनट वो सिर्फ एक प्रोग्राम देखने के लिए और बंद।
1: क्योंकि कहीं ना कहीं अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है, और कहीं अनुशासन सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, आई बिलीव हम एज अ पेरेंट हम पर भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर बच्चे को एक चीज़ करने के लिए कह रहे हैं और वो हम ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर बच्चा सोचेगा कि आप नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँ,
0: है ना। ये भी है, और हमको जैसे अब तो गैजेट आ गया है ब्लू स्क्रीन जिसको बोलते हैं, तो हम इससे निकलकर जो आगे करते थे स्टोरी टेलिंग, जो मैं बहुत लकी चाल भी बहुत करता है सभी जगह, स्टोरी टेलिंग हो गया है या एक डिबेट जैसा घर में, या खाने के समय पर कुछ बातचीत माता पिता के साथ, तो ये थोड़ा कम होने लग गया है। कोई कोई तो अपना लिविंग रूम में खा रहा है, तो कोई अपना रूम में खा रहा है, तो कोई नहीं खा रहा है, कोई देर से आएगा, या
1: मतलब क्यों खाने के समय में भी आजकल लोग नहीं मिल रहे हैं।
0: तो एक समय ऐसा होना चाहिए कि जब प्रार्थना कर रहे हैं संध्या काल में या खाने के समय में, एक दिन में एक ही बार यदि मिल रहे हैं सभी एक जगह तो बहुत सुंदर रहेगा।
1: जी कहते हैं ना, एटलीस्ट एक वक्त का खाना अगर पूरा परिवार मिलकर साथ में खा रहा है तो ये कहीं ना कहीं परिवार में बॉन्डिंग को बढ़ाता है ना। क्योंकि जब हम पूरे दिन के बाद एक दूसरे से मिलते हैं तो दिन भर में क्या हुआ इस पर बात करते हैं। अब बातों बातों में पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति शायद किसी परेशानी से गुजर रहा है, या कुछ अच्छा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ना इन सभी बातों पर। चलिए 4028085 है नंबर हमारा, एक श्रोता है उनसे हम मिलते हैं। हेलो नमस्कार।
2: हेलो नमस्कार,
1: आपका स्वागत है जी। कौन बोल रहे हैं?
2: मैं हूँ श्याम, श्याम घाबा से।
1: श्याम जी बताइए क्या जोड़ना चाहेंगे आज के विषय पर।
2: मैं वो महाशय से वो माननीय महाशय से मैं आप कुछ बात करना चाहता हूँ आर्य सभा मॉरिशस पर, और माँ बाप को जब जाकर छोड़ा है उस आश्रम में, तो कैसे वो दुख सहते हैं, वो इन पर विचार करेंगे और वो इन पर कुछ करेंगे। क्योंकि वहाँ पर बहुत एसोसिएट लोग मेंबर्स लोग हैं, और वहाँ पर डाले हैं आर्य सभा मॉरिशस, उसके नाम से वो चला रहे हैं ये सब, और उसके आश्रम कई वो शख्स का आश्रम कई जगह हैं कई इलाके में हैं, और वही नाम निकल रखा है आर्य सभा मॉरिशस।
1: चलिए आपके इस प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आज हम किसी संस्था पर नहीं बात कर रहे हैं, आज हम ग्लोबल पेरेंट्स डे पर बात कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए, और चलिए माता पिता और बच्चों के बीच जो संबंध है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं।
0: मैं यहाँ पर जो भाई जी ने प्रश्न किया है, तो मैं बता देता हूँ कि मैं अध्यक्ष हूँ आर्य सभा एजुकेशन काउंसिल का, ठीक है। और हम देखते हैं मॉरिशस में, तो बोलते हैं ये जो आपने प्रश्न किया है बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन अब देखेंगे कि मेरा खुद का, अभी मेरे पिताजी का थोड़ा स्वास्थ्य भी नीचा था, तो उनका जो देखने का तो हमसे संभव नहीं है, नहीं हो पा रहा है हमसे, माताजी और मेरे से या मेरे भाई या कोई से नहीं हो पा रहा है। तो हम उसको एक केयरर हमने देखा है उसको देखने के लिए, समझ रहे हैं ना, क्योंकि कुछ काम हम कर सकेंगे खुद से, लेकिन कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो जब हम आश्रम की बात करते हैं, तो कोई मैं गया हूँ बहुत जगह, बहुत ये 2-3 आश्रम में मैं गया हूँ, लेकिन वहाँ क्यों डालते हैं माता पिता को, ये दुख की बात है, लेकिन ये है कि जिससे कि उन लोगों का डिग्निटी हो, वो उन लोगों को जो कपड़े है गीले नहीं हो या साफ सुथरा रखे, उनको खाना दें, ये सब, क्योंकि ये नहीं हो पाता है, तो हम विमर्श होकर वहाँ उसको उन लोगों को डालते हैं।
1: बिल्कुल ऐसा होता है कि कभी कभार घर में सभी लोग काम करते हैं और कोई बीमार है और जिसे शायद 24 घंटे देखरेख की आवश्यकता पड़ रही है, तो ऐसे में बहुत से लोग किसी ना किसी को अपॉइंट कर देते हैं देखभाल के लिए, या कहीं डे केयर सेंटर में रख देते हैं, ताकि क्योंकि अगर आप घर पर अकेले उनको छोड़कर जा रहे हैं और कुछ हो गया भगवान ना करे, तब ऐसे में उन्हें कौन देखेगा, है ना। तो बहुत से लोग विवश होकर छोड़ते हैं और किसी

हर एक का अपना कारण होता है, लेकिन आज हम किसी संस्था के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं, और चलिए हम ग्लोबल पेरेंट्स डे पर बात कर रहे हैं, माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम शिक्षा की बात करें अश्विन जी, तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या ये होना चाहिए कि इस पर भी जोर दिया जाए कि हमारे रिश्ते नाते कैसे हो, क्योंकि आजकल होलिस्टिक

0: शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हैं।
1: हाँ, मैंने दो तीन ये पाठ्यक्रम मैंने देखा है
0: जी।
1: और वहाँ पर स्पष्ट है कि जो माता पिता के बारे में फैमिली जो होता है उसके बारे में बहुत खुलासा उन्होंने किया है
0: जी।
1: वहाँ पर जो पाठ्यक्रम में तो देखेंगे, जैसे वो पेंटिंग हो गया है तो एक माता पिता जैसे अंग्रेजी में हो गया, फ्रेंच में हो गया, हिंदी ये माता जी है, पिता है, भाई बहन सबको एक जैसे उसमें डाला है
0: जी।
1: तो बच्चों को भी लगेगा कि वो रिलेट कर पाएगा
0: हाँ।
1: कि माता जी है, पिता जी है
0: जी।
1: अब इस नए दौर में देखेंगे कि सिंगल पेरेंटिंग आ गया है या जहाँ पर डिवोर्स हो गया है तो माता या पिताजी खुद देख रहे हैं बच्चों का, जहाँ माताजी गुजर गई तो पिताजी अकेले है, ये तो एक्सेप्शंस है
0: जी।
1: लेकिन जो नॉर्म है वो है कि जितने जो पाठ्यक्रम मैंने देखा अभी तक तो वो पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को भी साथ में जुड़ा है
0: और कहीं ना कहीं ये बहुत आवश्यक भी
1: हाँ,
0: है ना
1: हाँ।
0: क्योंकि ये फिर सिर्फ ये रिश्तों की बात सिर्फ हमारे घर तक सीमित नहीं रहती है, हम जहाँ पढ़ने लिखने जा रहे हैं वहाँ पर भी हमें इनके बारे में जब जानकारी मिलती है तो बच्चा अपने रिश्तों को अहमियत देता है, क्योंकि रिश्ता सिर्फ माता पिता तक सीमित नहीं है, क्योंकि एक बच्चा जब स्कूल में जा रहा है तो रिलेशनशिप टीचर के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते जुड़ते हैं, फिर चाहे आप काम पर भी जाए, अपने कलीग्स है, कोवर्कर्स है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे रिलेशनशिप बहुत मायने रखते हैं। और आज का ये विषय अपने आप में एक रिलेशनशिप पर ही आधारित है, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम बच्चों की बात करें, मिडल एज जो पेरेंट्स हैं उनकी बात करें या सीनियर सिटीजन्स की बात करें, बदलते समय के साथ कौन से ऐसे फैक्टर्स हमें अपनी लाइफस्टाइल में अपनाने चाहिए जिससे जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम हो और रिश्तों में और भी सम्मान और भी मधुरता आए?
1: तीन चीज़ है, एक तो है इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस है, आईक्यू बोलते हैं इसको, एक है ईक्यू और एक है एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो हम जो स्पिरिचुअली इंक्लाइन है, इंटेलेक्चुअली इंक्लाइन है, लेकिन जो इमोशनल वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है
0: जी।
1: जो एम्पैथी
0: जी।
1: अब रास्ते पे जाएंगे, कोई ब्रेक लगा दिया आपके सामने जो गाड़ी में, आप उसको चिल्लाने लगे, रोड रेज जिसको बोलते हैं, अब गाली करो तो बच्चा क्या सीख रहा है
0: जी।
1: कि जो सामने वाला है जो कोई गलती करेगा उसको गाली
0: जी।
1: देना, समझ रहे ना? तो ये जो व्यवहार है आपको कैसे मैनेज कर रहे हैं इमोशन को, तो ये बच्चा देख रहा है और वो जब पैदा नहीं हुआ था तब से वो इमोशंस पर
0: फील करता है ना, क्योंकि जब हाँ, माँ के गर्भ में है तो हाँ, सारे इमोशंस जो है बच्चा फील करता ही
1: तो, लेकिन अब इसका इमोशनल मैनेजमेंट ये सबसे महत्वपूर्ण मैं सोचता हूँ आज के ज़माने में
0: ज़्यादा आवश्यक है।
1: है,
0: क्योंकि ऐसा होता है कि आजकल हम बड़ों की बात करें, छोटों की बात करें या हमारे बुज़ुर्गों की बात करें, समय के साथ हमें पेशेंस की काफ़ी कमी आ गई है, शायद हमारा लाइफस्टाइल ऐसे हो गया है, हमारे खाने पीने का, कहते ना जो खाते हैं उसका भी असर हमारे शरीर पर पड़ता है, तो आजकल ज़्यादातर चीज़ें जो हम खाते हैं उसमें तो कहीं ना कहीं मिलावट है ना, मतलब कि प्रिजर्वेटिव्स है, हम वैसा खान पान नहीं खा रहे जो आज से कुछ सालों पहले हम खाते थे, हम वैसे बर्ताव नहीं कर रहे जैसे कुछ सालों पहले करते थे, तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे जो है बिहेवियर को भी अफेक्ट करते हैं। आजकल काफ़ी बिहेवियरल इश्यूज़ जो है हमें देखने को मिलते हैं। कुछ समय पहले हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ प्रोग्राम किया था जहाँ पर बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में आजकल जो है व्यवहार को लेकर जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बच्चे काफ़ी चिड़चिड़े हैं, ज़िद्दी हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी के समय में जैसे आपने इमोशनल कोशेंट की बात की, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होना भी बच्चों में आवश्यक है, क्योंकि जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि एक उम्र में आएंगे तब जो है हम थोड़ा सा पूजा पाठ करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे ना, लोग सोचते हैं कि अब रिटायर हो जाएंगे तो अब थोड़ा सा हम भक्ति भाव में ध्यान देंगे, तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जीवन के शुरुआती दौर से होना आवश्यक नहीं है?
1: एक चीज मैं यहाँ इस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा कुछ बातों में रेखांकित करना चाहता हूँ
0: जी,
1: कि जो आपने बताया था सीनियर सिटीजन
0: जी,
1: तो मैंने पहला जो इमोशनल क्वेश्चन मैंने बताया था वो तो है बच्चे और जो मिडिल एज, वो उसका पेरेंट, मिडिल एज ही नहीं कोई भी पेरेंट,

0: जी
1: उसका वो इमोशनली वो बॉन्ड रहता है, तो माता भी समझ पा रही है बच्चा क्या बोल रहा है और बच्चे भी समझ रहे हैं क्या वो उसको बताया जा रहा है। लेकिन अब मैं एक बहुत एक गंभीर मैं समस्या मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो माता पिता है जो अभी सीनियर सिटीजन है उनको भी पता लगना चाहिए कि वो व्यवहार कैसा कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़माना गया जहाँ पर वो जैसे बोलते थे कि उन लोगों के हाथ में सभी था, तो अभी छूटने लग गए हैं, तो उनको भी लगना चाहिए कि अब उन लोगों का जिम्मेदारी थोड़ा कम हो गया है और बच्चों को उसको जैसे लीव एंड लेट लीव। ये समस्या बहुत मॉरिशस में देख रहा हूँ कि बहुत है अभी कि वो भी सीनियर सिटीज़न है तो उन लोगों को स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ज़्यादा और यहाँ पर थोड़ा उन लोगों को जैसे
0: यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि समय के साथ हमें जो है अपनी जिम्मेदारियों को बांट देना चाहिए ताकि हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझे ना। कभी कभार ऐसा होता है कि घर में एक मुखिया होता है वही सारे फैसले लेता है और फिर वैसे में बच्चे जो है फैसला लेना नहीं सीखते हैं, तो समय के साथ साथ हमें बच्चों को भी थोड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि वो जीवन का अनुभव अपने तरीके से कर पाए। और आप तो यहाँ पर एज अ बड़े होकर है ही उनको गाइड करने के लिए,
1: जैसे एक मेंटर सिस्टम
0: है ना,
1: एक मेंटर सिस्टम जहाँ पर आप सिर्फ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ना कि टोक रहे हैं। हर चीज में टोकेंगे तब भी ये चिड़चिड़ापन
0: मतलब
1: आएगा,
0: तब वो सीख नहीं पाएगा ना।
1: और ये सब होगा क्योंकि उन लोगों भी सीख रहे हैं ना।
0: बिल्कुल, ये नहीं कह रहे कि जब आप अपने जिम्मेदारियों को बांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो अहमियत है वो कम हो रही है। किसी भी रूप में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप एक उम्र में आ गए हैं तो थोड़ा घर के कामों काज कुछ बस घर में दो तीन लोग हैं तो डिवाइड कर दो कि छोड़ो ये तुम देख लो वो तुम देख लो। जैसे हम कहते ना कि बच्चा जब वीकेंड में घर पर है तो थोड़े बहुत किचन में आप कर रहे हैं तो बच्चा भी थोड़ी सहायता कर दे, दो बर्तन धो दे, या आप आंगन की सफाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपके साथ हाथ बटा दे। तो जब बच्चा हाथ बटा रहा है यानी कि थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी अपने साथ उठा रहा है। जब वही बच्चा कुछ नहीं करता और एक ही बार में जब बड़ा हो जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ रहा है या गृहस्थ जीवन में जो है जा रहा है, तो उसने तो कुछ भी नहीं सीखा है, तब फिर मुश्किल हो जाती है, है ना।
1: ये एक बहुत बड़ा समस्या है, तो इसको एज ए सोसाइटी हम इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए।
0: जी चलिए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्लोबल पेरेंट्स डे के मौके पर हम अपने पेरेंट्स के प्रति किस तरह से अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम एक उम्र में आ जाते हैं तो वैसे में बदलाव लाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम एक लाइफस्टाइल जीते आ रहे हैं। लेकिन जो नौजवान है, जो मिडल एज है, जो मिलेनियल है, जो टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हैं, जो अपने माता पिता से भी जुड़े हैं, जो अपने बच्चों से भी जुड़े हैं, तो उनको जो है अपने रोल्स को फ्लक्चुएट बहुत करना पड़ता है। यहाँ पर माता पिता को भी समझना है, यहाँ पर अपने बच्चों को भी देखना है, अपने करियर को भी देखना है। तो किस तरह के बदलाव हम अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं ताकि हम सबको एक साथ लेकर चल पाए।
1: यहाँ पर जो जैसे आगे हमने बताया कि जो हमने सीख वहाँ से ली है और जिस जैसे साल में हम जी रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं उसका एक क्लियर हमको
0: पिक्चर होना चाहिए जी।
1: पहले ठीक है, अब देखेंगे कि अभी सभी माता पिता के पास मोबाइल फ़ोन आ गया है और अपनी तरीके से चला रहे हैं, किसी को आता है किसी को नहीं आता है, लेकिन फिर भी जैसे बोलते हैं इन है कि हमारे पास मोबाइल है, बड़े बड़े मोबाइल है। कल परसों माता दिवस था, बहुत माता पिता के हाथों में अभी नया नया मोबाइल आ गया है जिससे कि वो जैसे कॉल कर सके, वीडियो कॉल कर सके और ये सब करें। तो ये दौर है और बच्चों को के पास भी है। अब आगे माँ बाप क्या बोलते थे, आप सिर्फ मोबाइल पर रहते हैं, अब देखेंगे कि माता पिता बहुत
0: मोबाइल पर है।
1: और ये सीनियर सिटीजन के मैं बात कर रहा हूँ, जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों के पास मोबाइल आ गया है तरह तरह का, तो वो भी चला रहे अपने धुन में, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई रील्स बना रहा है, तो अपना तो ये एक प्लानिंग होना चाहिए इसका। जैसे रिटायर होते हैं तो बोलते हैं प्लान रिटायरमेंट, तो ये जो आप बता रहे हैं तो ये एक प्लानिंग में रहेगा, तो सबका अपना अपना ये रोल होना चाहिए। जैसे कि मैं जैसे एक सीनियर सिटीजन जब आगे वो डांट रहा था किसी को जो मोबाइल चला रहा था, अब उसको भी पता लग गया क्या

0: जैसे बोलते हैं क्या मजे इसमें है, तो वो
1: जी
0: भी कर रहे हैं अब,
1: जी जी यानी कि
0: समझे।
1: हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना
0: हाँ
1: चाहिए, फिर
0: एहसास
1: चाहे वो बड़ा क्यों ना हो और छोटा क्यों ना हो।
0: जी।
1: चलिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम है ग्लोबल पेरेंट्स डे पर आधारित रहा, और जाने से पहले कोई संदेश आप देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं और दर्शकों को जो इस समय हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं?
0: तो ये हम यहाँ पर है हमारे माता पिता के बदौलत, और बाद में हम भी माता पिता बनते हैं, तो ये सिलसिला जारी होना चाहिए
1: जी।
0: और मैं सोचता हूँ कि जो रिस्पेक्ट है और जो हम जड़ से हम जुड़े, अपने ग्रंथों से जुड़े, अपने जो टेक्नोलॉजी से भी आगे हम बढ़े टेक्नोलॉजी के साथ, और आधुनिकीकरण और हमारे जो जड़ दोनों साथ साथ में चलें।
1: तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन जी, आप जुड़े और आज के इस विषय पर आपने इतनी सारी जानकारी दी। जितने श्रोता और दर्शक हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, मातृ दिवस की बात करें, पितृ दिवस की बात करें, या ग्लोबल पेरेंट्स डे की बात करें जो कल 1 जून को मनाया गया, ये दिन सिर्फ एक दिन विचार करने का नहीं है, या वो एक दिन नहीं है जहाँ पर हम अपने माता पिता के साथ बैठकर समय बिताए। माता पिता जैसे कि हमारे सास की तरह है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, परवरिश की, और हर एक हमारे स्वास्थ्य में उनके प्रति एक कृतज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि आज हम जो भी है, जहाँ भी है, उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि वो नहीं होते तो हम नहीं होते। तो चलिए, इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होने को चला। जल्द आपसे हम फिर मिलेंगे। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी प्रोडक्शन टीम, टेक्निकल टीम को, हमारे प्रोड्यूसर रितेश को, साथ में टेक्निक्स पर अंजू और काद्या का साथ हमें मिला, और साथ ही हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुषा, आपको भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, जल्द हमारी आपकी भेंट फिर होगी। नमस्कार आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह की ठीक 10 बजने को है। आइए जुड़ते हैं 10 बजे के समाचारों के साथ।

आपको मेरा नमस्कार। राष्ट्रसभा के कार्य आज दिन के 11:30 बजे विपक्ष नेता जूली रोगो के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन से होगी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम होगा। कार्यसूची में 60 से अधिक प्रश्न शामिल हैं, जिनमें से लगभग 20 प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम से पूछे जाएंगे। अब तक मॉरिशस से

0: अदिस अबाबा जाने के लिए यात्रियों को जोहान्सबर्ग, नैरोबी या अंतानानारिवो में ठहराव करना पड़ता था, लेकिन बहुत जल्द ये स्थिति अब बदलने वाली है। अफ्रीका की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इथियोपियन एयरलाइंस मॉरिशस के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। पिछले सप्ताह इस नई सेवा की घोषणा की गई थी। इथियोपियन एयरलाइंस इस नए मार्ग पर सप्ताह में 3 उड़ानों का संचालन करेगी। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी की सीआरजे इनकम अलाउंस स्कीम से लाभान्वित लोग, विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के बीच कई सवाल उठ रही हैं। ये इसलिए क्योंकि जुलाई 2026 से मॉरिशस में इन लोगों के अकाउंट्स में धीरे धीरे कटौती लाने की संभावना है। इस योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनकी मासिक आय निर्धारित सीमा से कम है। इन प्रस्तावित बदलावों का असर हजारों परिवारों पर पड़ सकता है जो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस सहायता पर निर्भर है। और विदेश में रूसी हमलों में यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें से ड्रेनिपो में 6 और राजधानी कीव में 4 लोग शामिल हैं। पिछले सप्ताह मॉस्को ने चेतावनी दी थी कि वो यूक्रेन पर संगठित हमला करेगा। ये प्रतिक्रिया पिछले महीने यूक्रेन के रूसी नियंत्रित लुहांस्क क्षेत्र में छात्रावास पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में थी, जिसमें 21 लोग मारे गए थे। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। प्लाटो रोड गुडलैंड्स में 90 साल के 90 इयर्स ओल्ड जनाब गुलाम नाबी कुतु, जिन्हें लोग भाई गुलाम नाम से ज्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे इनके बेटे बुजू हिरन अब्दुल हकीम के मकान प्लाटो रोड गुडलैंड्स से उठाकर दफनाने के लिए बेलमो गुडलैंड्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.TV. 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्ति घड़ी में भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर
1: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा। जी हाँ, रेडियो मॉरिशस पर एक बार फिर पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, आप पहुँची हूँ आज के इस भक्तिमय यात्रा में और भक्तिमय भजनों के साथ। आज के इस कार्यक्रम को हम प्रस्तुत कर रहे हैं 11 बजे तक। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे आचार्य सुदेश बद्री जी को वेद सुधा कार्यक्रम में। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं इस प्रथम गणेश भजन।

वेद सुधा कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। आज का कार्यक्रम तीन भागों में विभाजित है। प्रथम वेद पाठ एवं भवार्थ, द्वितीय एक प्रेरणादायक भजन और अंत में एक वैदिक मंत्र की गहन व्याख्या। तो आइए वेद पाठ के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ॐ अग्ने विवस्वदा भरास्मभ्यमूतये महे देवो ह्यसी नो दृशे। हे प्रकाश स्वरूप प्रभो, हमारे साक्षात्कार करने के लिए एकमात्र परम दर्शनीय देव केवल आप ही हैं। हे प्रभुवर, आपका साक्षात्कार करने के परिणाम स्वरूप जो महती तृप्ति मिलती है, जो महान आनंद की अनुभूति होती है, जिससे कि हमारी आत्मा गदगद हो जाती है, जिससे कि हमारी आत्मा आनंद विभोर हो जाती है, उसी महती तृप्ति के लिए, उसी महान अनुपम आनंद की प्राप्ति के लिए आप हमें वह अद्वितीय प्रकाश प्रदान करो। ओम नमस्ते अग्न ओजसे घृणन्ति देव कृष्टय अमेर मित्रमर्दय। हे प्रभु, जो सच्चे कृषक हैं वे तुझे ओज बल शक्ति उत्साह आदि प्राप्त करने के लिए श्रद्धा भक्ति से तेरी स्तुति करते हैं, तेरे गुणगान करते हैं। ओम उपत्वा जामयो ओ गिरो दे दिशतिर्हविष्कृता वायोरनीके अस्थिरन। जो आत्मसमर्पण पूर्वक उस प्रकाश स्वरूप प्रभु को भजता है, उसका वह भजन ही उसको भव सागर से पार उतार कर उस प्राण प्रिय प्रभु के समीप पहुंचा देता है। ओम आवैर्वृघ बृघश्च्युत प्रदावदा हवे अग्निम समुद्रवा समम। ज्ञानी एवं कर्मशील महापुरुष जैसे अपने ज्ञान और कर्म के प्रति सजग रहते हैं, वैसे ही मैं अपने प्राण प्रिय प्रभु की प्राप्ति में सदा जागरूक रहूं। ओम शांति शांति।

श्रोताओं, वेद मानव जाति की आदि ज्ञान है। वेदों में परमात्मा, जीव और प्रकृति का अत्यंत गूढ़ तथा वैज्ञानिक स्वरूप वर्णित है। वेद केवल पूजा पद्धति का ग्रंथ नहीं, अपितु संपूर्ण जीवन दर्शन का आधार है। वेद मनुष्य को यह शिक्षा देते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मोन्नति, धर्मपालन, सत्याचरण

और परमात्मा की प्राप्ति है। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषाविधेम। श्रोतागण, अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक मंत्र है। इस मंत्र में परमात्मा के स्वरूप, उसकी महानता, जीवों के साथ उसके संबंध तथा उपासना के वास्तविक आधार का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। यह मंत्र मनुष्य को यह सिखाता है कि संसार में वास्तविक शक्ति, जीवन, अमरत्व और व्यवस्था का आधार केवल परमात्मा है। यह मंत्र का भाव इस प्रकार है, जो परमात्मा समस्त जीवों को आत्मा, चेतना और बल प्रदान करता है, जिसकी आज्ञा को संपूर्ण संसार तथा विद्वान पुरुष स्वीकार करते हैं, जिसके आश्रय में अमरत्व और जिससे विमुख होने पर मृत्यु प्राप्त होती है, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा की हम श्रद्धा और यज्ञ भाव से उपासना करें। श्रोताओं, परमात्मा आत्मदाता है। मंत्र में परमात्मा को आत्मदा कहा गया है। इसका अर्थ है आत्मा देने वाला, जीवन प्रदान देने वाला। वैदिक सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा अनादि है, किंतु जीव को शरीर, चेतना के प्रकट होने का अवसर और जीवन व्यवस्था परमात्मा से प्राप्त होती है। मनुष्य अपने शरीर का निर्माण स्वयं नहीं करता। गर्भ में शिशु का विकास किस अद्भुत व्यवस्था से होता है, यह परमात्मा की महान शक्ति का प्रमाण है। एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। गर्भ में एक सूक्ष्म कोशिका पूर्ण मानव शरीर में विकसित हो जाती है। यह सब परमात्मा की दिव्य व्यवस्था के बिना संभव नहीं। श्रोताओं, आज विज्ञान भी स्वीकार करता है कि शरीर की रचना अत्यंत जटिल और आश्चर्यजनक है। हृदय का धड़कना, रक्त का प्रवाह, श्वास प्रश्वास, मस्तिष्क की क्रियाएं, ये सब स्वतः चल रही है। मनुष्य सोता है, फिर भी उसका शरीर कार्य करता रहता है। यह परमात्मा की व्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अतः परमात्मा ही वास्तविक आत्मदाता है। फिर मंत्र में परमेश्वर को बलदा कहा गया है, अर्थात बल प्रदान करने वाला। यह बल केवल शारीरिक शक्ति नहीं है। परमात्मा मनुष्य को अनेक प्रकार के बल देता है, शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मिक बल, नैतिक बल, बुद्धि बल, धैर्य बल, सहन शक्ति। जब मनुष्य संकट में होता है और सब ओर से निराश हो जाता है, तब भीतर से जो शक्ति उसे उठाती है, वही ईश्वर प्रदत्त आत्मबल है। श्रोताओं, महापुरुषों के जीवन में यह स्पष्ट दिखाई देता है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने अकेले संपूर्ण समाज में फैले अंधविश्वासों का विरोध किया। यह साहस केवल बाहुबल से संभव नहीं था, यह ईश्वर प्रदत्त आत्मबल था। श्रोतागण, आज भी जो व्यक्ति नियमित यज्ञ, स्वाध्याय, सत्याचरण और ईश्वर उपासना करता है, उसमें विशेष आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता दिखाई देती है। मंत्र कहता है यस्य विश्व उपासते, अर्थात संपूर्ण विश्व जिस उसकी उपासना करता है। यह उपासना का अर्थ केवल समी बैठना नहीं है। यहां उपासना का अर्थ बताया गया है कि सभी प्राकृतिक शक्तियों परमात्मा के नियम का पालन कर रही है, यही उनकी उपासना है। मनुष्य जब सत्य, न्याय और धर्म का पालन करता है, तब वह भी परमात्मा की वास्तविक उपासना करता है। मंत्र में प्रशिषम शब्द आया है, जिसका अर्थ है शासन, नियम, आज्ञा। इस संसार में हर वस्तु नियम के अधीन है। यदि सूर्य थोड़ी देर के लिए भी अपना नियम छोड़ दे तो
संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाए। यदि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का नियम

0: छोड़ दे तो सब अस्त व्यस्त हो जाए। वेद कहते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड परमात्मा के नियमों से संचालित हो रहा है। मनुष्य जब प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तब दुख उत्पन्न होता है। उदाहरण के रूप में असंयमित भोजन रोग उत्पन्न करता है, अनियमित जीवन मानसिक तनाव देता है, अधर्म सामाजिक अशांति उत्पन्न करता है। अतः परमात्मा के नियमों का पालन ही सुख का मार्ग है। यस्य देवाः, विद्वान और श्रेष्ठ पुरुष भी उसी परमात्मा की उपासना करते हैं। वेदों में देव शब्द का अर्थ प्रकाशमान, श्रेष्ठ, विद्वान और गुणवान व्यक्ति होता है। सच्चे ज्ञानी कभी अहंकारी नहीं होते। जितना अधिक ज्ञान बढ़ता है उतनी अधिक विनम्रता आती है। ऋषि मुनि, तपस्वी और विद्वान सभी परमात्मा को सर्वोच्च मानते हैं। महर्षि दयानंद ने कहा था, ईश्वर सत्य ज्ञान का मूल स्रोत है, इसीलिए विद्वान पुरुष ईश्वर की उपासना करते हैं। मंत्र का अत्यंत गुड़ भाग है यस्य छायामृतम, अर्थात जिसकी छाया में अमरत्व है। यहां अमृत का अर्थ केवल शरीर का अमर होना नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ है मोक्ष, आत्मिक शांति, दुखों से मुक्ति, आनंद की अवस्था। जो मनुष्य ईश्वर के समीप रहता है, धर्म का पालन करता है, सत्य बोलता है, संयमित जीवन जीता है, वह मानसिक शांति प्राप्त करता है। आज संसार में धन बहुत है परंतु शांति कम है, भौतिक साधन बढ़े हैं परंतु तनाव भी बढ़ा है। कारण यह कि मनुष्य ईश्वर और धर्म से दूर होता जा रहा है। ईश्वर की छाया का अर्थ है ईश्वर का स्मरण, सत्य का पालन, सदाचार, यज्ञ, स्वाध्याय, सेवा, इन्हीं से जीवन में अमृत तुल्य आनंद प्राप्त होता है। मंत्र कहता है यस्य मृत्यु, अर्थात परमात्मा से दूर होना ही मृत्यु है। यह केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है, असत्य, अधर्म, पाप, लोभ, क्रोध, अहंकार, ये सब आत्मा की आध्यात्मिक मृत्यु है। जो व्यक्ति सत्य छोड़ देता है उसका चरित्र मर जाता है। जो व्यक्ति धर्म छोड़ देता है उसकी आत्मिक उन्नति रुक जाती है। इसलिए वेद सिखाते हैं कि वास्तविक जीवन धर्ममय जीवन है। कस्माय देवाय विषाविधेम, अर्थात हम किस देव की उपासना करें, उत्तर स्पष्ट है, उसी परमात्मा की जो आत्मदाता, बलदाता और संपूर्ण विश्व का नियंता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि परमात्मा के निकट रहने पर मनुष्य आत्मबल, शांति और आनंद प्राप्त करता है, जबकि उससे विमुख होने वाला व्यक्ति दुख, अशांति और पतन का अनुभव करता है। अतः हमें उस परम प्रकाश स्वरूप, आत्मदाता और बलदाता परमेश्वर की श्रद्धापूर्वक उपासना करनी चाहिए। प्रिय श्रोतागण, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं। आशा है कि आज के वैदिक संदेश से आपको अवश्य ही लाभ एवं मार्गदर्शन मिला होगा। इस कार्यक्रम की तैयारी में श्रीमती अंजू जी का विशेष योगदान रहा, उनके प्रति कृतज्ञता। आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नवीन प्रस्तुति के साथ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा।

भक्तिधारा में पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं और वेद सुधा कार्यक्रम के लिए हम आचार्य सुदेश बद्री जी को हृदय की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हैं। श्रोताओं, मनुष्यों के जीवन में संतुष्टि का भाव बहुत आवश्यक है। इच्छाएं, आवश्यकताएं और नींद, इच्छाएं, आवश्यकताएं और हमारी निद्रा यानी हमारी नींद जीवन में कभी पूरी नहीं होती। जो जितनी सुविधा में है वो उतनी ही अधिक दुविधा में है। जीवन को अगर संतुष्टि का भाव देना चाहते हैं तो संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। जीवन में सुविधाएं ना देखें, संतुलन को महत्व दें, संतुष्टि को महत्व दें।

तो श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आपने ध्यान और भक्ति भाव से हमारा साथ दिया। ईश्वर सभी का कल्याण करे। इस अंतिम भजन को सुनते आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय रहे। और इसी के साथ रत्ना को दे अनुमति, 11 बजे के समाचारों के बाद आप विविध भाषाओं के कार्यक्रमों का आनंद उठा पाएंगे। तो इसी के साथ रत्ना को दे अनुमति, नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: पूजा के स्टूडियो में उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, आप सभी को मेरा नमस्कार। राष्ट्रीय सभा के कार्य आज दिन के 11:30 बजे शुरू हो रहे हैं और आज का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन प्रधानमंत्री को संबोधित है। विपक्ष नेता जूली रोग सिंथेटिक ड्रग्स पर सवाल करेंगे और आपको बता दें कि कार्यसूची में 60 से अधिक प्रश्न भी शामिल हैं जिनमें से 20 प्रधानमंत्री को संबोधित होंगे। कांटोहल में पेश आई घटना के सिलसिले में पिंक कपड़े पहने और कथित रूप से तलवार लिए उस युवती को कल CCID में पेश किया गया। हिंसा की घटनाओं के 15 दिन बाद अपने वकील गौफ गुलबुल की मौजूदगी में उसके साथ पूछताछ की गई। 22 साल की इस युवती ने इस आरोप से इनकार किया है। पाया की रहने वाली इस लड़की को पूछताछ के बाद घर लौटने की अनुमति दी गई है।

0: अफ्रीका की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इथियोपियन एयरलाइंस मॉरिशस के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। पिछले सप्ताह इस नई सेवा की घोषणा की गई थी। इथियोपियन एयरलाइंस इस नए मार्ग पर सप्ताह में 3 उड़ानों का संचालन करेगी। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी की सीएसआरए इनकम अलाउंस स्कीम से लाभान्वित लोग विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के बीच कई सवाल उठ रही हैं जो उनकी चिंताएं बढ़ा रही हैं, इसलिए क्योंकि जुलाई 2026 से मॉरिशस में इन लोगों के अकाउंट्स में धीरे धीरे कटौती लाने की संभावना है। इस स्कीम के तहत उन कर्मचारियों और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को आर्थिक मदद दी जाती है जिनकी मासिक आय निर्धारित सीमा से कम है। इन बदलावों का असर हजारों परिवारों पर पड़ सकता है जो अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस सहायता पर निर्भर हैं। और विदेश में, जी हाँ, विदेश की खबरों में रूसी हमलों में यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें निप्रो में 6 और राजधानी कीव में 4 लोग शामिल हैं। रात भर के हवाई हमलों में अपार्टमेंट ब्लॉक को निशाना बनाए जाने के बाद दर्जनों लोग भी घायल हुए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। लाकावेन नंबर एक वाक्वा में 73 साल के 73 years old जनाब साफिक रामजान बोला जिन्हें लोग बोला नाम से ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे इनके मकान लाकावेन नंबर एक वाक्वा से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। नंबर 8 इंकमैन स्ट्रीट वाले पिटो पोर्ट लुइस में 43 साल के 43 years old शिपुरेंद्र सिंह पुनित जिन्हें लोग पुपु नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके पिता राम पुनित के मकान नंबर 8 इंकामन स्ट्रीट वाले पिटो पोटलिस से उठाकर थौकबाव कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। और नंबर 5 144 मोसेलमॉ ले प्लेन दे एमिताज हाईलैंड्स 5 कॉम्पन फिनिक्स में 76 साल की 76 years old श्रीमती रुकवंती लकीराम पैदाशी नाम गंगा बिसुन और जिन्हें लोग शांता लकीराम नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे इनके बेटे केविन और आश्विन लकीराम के मकान नंबर 544 मोसलमोडले प्लेन लेमिताज हाईलैंड्स 5 कॉम्पन फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैया फिनिक्स कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: शम्मे फरोजा।
3: आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर दिल को साफ नहीं रखता جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزاں ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ آج کی اس اردو نشریات میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک۔

अहमद मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब का बयान, नातो सलाम और आपके पैगामात। तुम अल्लाह ताला के ज़िक्र में दिल लगा लो, सुकून और इत्मीनान तुमसे दिल लगा लेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आज आप समाअत फरमाएंगे सूरह अन्नजम की तिलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

सदाकल्लाहु लज़ीम। ए पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत क़ुरान पाक की तौफीक अता फरमा, आमीन। अल्लाह ताला वाहिद है, वही पैदा करता है, वही मौत देता है, वही मौत के बाद क़यामत के दिन फिर ज़िंदा करेगा। अल्लाह पाक सब कुछ कर सकता है, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई कुछ नहीं कर सकता। जहाँ कहीं हम होते हैं वो हमारे साथ होता है, वो हमारे दिलों की बात भी जानता है। वही सबको रिस्क देता है, जिसको चाहे थोड़ा और जिसे चाहे बेहिसाब।

मोजिस अमीन इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:20 हो चुके हैं। मंगल का दिन है, जून की 2 तारीख है और आज माह ज़िलहज की 15 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। ताखीर ना करते हुए अब आप समाअत फरमाएंगे ख़तीबो इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना।

0: जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समाअत फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिही वसहबिही अलैहिम अजमाईन अम्मा बाद। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فصلي لربك وانحر آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم। اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم। سامعين حضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। ذی الحجہ کا مقدس مہینہ ہے और क़ुरबानी से आप फरागत पा चुके हैं, यानि क़ुरबानियाँ आपने जो नेक नेतियों के साथ की है, नेक नियत के साथ की है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और उसका अजर अज़ीम इस दुनिया और आख़रत में अता फरमाए और उसके फ्यूज़ो बरकात साल हा साल अल्लाह ताला अता फरमाए। हमें ये देखना है कि क़ुरबानी हमें क्या सबक देकर गया। तो ज़रा सा हम पीछे हटेंगे रमज़ान शरीफ और रमज़ान से लेकर आ जाएंगे क़ुरबानी तक, और क्या सबक हमें मिला इसमें। नमाज जिस तरह अल्लाह की बहुत बड़ी इबादत है, ईमान के बाद सबसे अफजल इबादत नमाज है, इसी तरह क़ुरबानी भी एक इबादत है। जिन बंदे और बंदियों ने अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के लिए तरीक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ुरबानियाँ की हैं, बेशक उन्हें पूरा साल क़ुरबानी के फ्यूज़ो बरकात रोज़ाना सुबह शाम मिलते हैं और मिलते रहेंगे। और इसके साथ ही साथ क़ुरबानी जो जज्बा दे के गया है, जिस तरह माह रमज़ान में आपने अपने लिए के लिए कपड़ा ख़रीदा, तो ग़रीबों का भी ख़्याल रखा, अपने लिए ईद के दिन खाने पीने का अहतमाम किया, तो ग़रीबों के लिए भी राशन की शक्ल में आपने उनके घर को भेजा, ताकि कहीं से ये बात ना महसूस हो कि मैं ग़रीब हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं। उसके मनपसंद कपड़े जो ख़रीद के दिए, असल क़ुरबानी यही है। जो आप अपने लिए खाने का अहतमाम किए, वही तमाम रमज़ान में आपने भाई बहन अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए किया। यही रमज़ान से सिलसिला शुरू रहा, आ गया क़ुरबानी। यहाँ भी यही ज़हन है जो हमें सबक माह ज़िलहिज्जा दे रहा है। इन तमाम असबाक में पहला सबक तो ये है कि हमें जो भी नेक अमल करना है वो अल्लाह के लिए करना है, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो क़ुरबानी हो, चाहे हम माँ बाप की ताज़ीम भी करें तो अल्लाह की खुशी के लिए करें, हम किसी की मदद भी करें तो इस नज़रिए से ना करें कि ये हमको आकर शुक्रिया कहे, हमारे एहसान के नीचे दबा रहे, हमारे सामने सर झुका के खड़ा हो। नहीं, अल्लाह ने हमें अपने भाई की मदद की तौफीक दी

तो तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। लेकिन शैतान इबलीस ये कहता रहता है, तुमने फलां के लिए इतना किया और उसने आकर आपको अपनी मॉरिशियन ज़बान में मेसी बुकू भी नहीं कहा, शुक्रिया भी नहीं कहा। आदमी कहता अब इसके लिए मैं नहीं करूँगा, यानी शैतान वहाँ कामयाब हो गया। तुम अपने सुनने वालों को ये दावत दे रहा हूं कि आप जो भी करो रब की खुशी के लिए करो, इंसान की खुशी के लिए नहीं, बल्कि रब का शुक्र अदा करो। अल्लाह तूने मौका दिया है कि तेरे बंदे की मुश्किल मेरे जरिए से तूने दूर की है, और उस वक्त ये भी सोचो अगर इसकी जगह मैं आज इस मुश्किल में होता, एक वक्त का खाना ना होता और ये मदद करता, तो मुझे क्या करना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ा सबक है, कभी इंसान को मغرور नहीं होना चाहिए, घमंड गुरूर नहीं होना चाहिए हमने फलां के लिए किया। और अक्सर व बेशतर देखा जाता है एक भाई भाई के लिए कुछ मदद कर दिया, घर बना दिया, सीमेंट दे दिया, कुछ दे दिया, वो हमेशा ताना देता, मैं ना देता तुम्हारा घर ना बनता। ये बहुत बुरी बात है, तुमने इंसान के लिए फिर किया, और इंसान के लिए नहीं बल्कि शैतान को खुश करने के लिए तुमने किया है। और अगर रब के लिए तुम करते तो कभी ताना ना देते। तो कुर्बानी एक सबक दे रहा है, नमाज है कुर्बानी, सब रब के लिए, रब की खुशी के लिए। और साथ ही साथ इंसान को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जो कमा रहे हैं ये सब मेरा है, नहीं, इसमें सबका हिस्सा है। और जब आप सबके हिस्से को नज़र में रखते हैं कि मुझे इसमें से अपने वालदैन पर भी खर्च करना है, अल्लाहु अकबर। कुरान हकीम की आयत मुबारक पढ़ें, यस अलूनका माज़ा युन्फ़िकून, लोगों ने सवाल किया आके दो सल्लम से कि मैं कैसे और किन पर खर्च करूं, तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही मुबारक भेजी और कहा ऐ महबूब कह दो قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ, तुम्हारे पास जो हलाल पैसे आए हैं सबसे पहले अगर खर्च करना है, मिन खैरिन, तो वालदैन है, वल अकरबीन फिर आपके अजीज़ो अकारिब हैं। फिर कुरान ने कहा वल यतामा वल मसाकीन, फिर यतीम और मिस्कीन है, फिर कहा वबनी सबील, आखिर में जो है पांच बातों का जिक्र है। कुलमान फ़क्तुम मिन खैरिन फलिल वालदैन वल अकरबीन वल यतामा वल मसाकीन वबनी सबील, पांच चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। और पांच नमाजें भी हैं, अहले बैत में पांच हैं। बहरहाल तो इस पर आप ध्यान दें कि हम जो खर्च कर रहे हैं, कुरान ने कहा सबसे बेहतर खर्च माँ बाप है, उन पर खर्च करो। आज की कुछ औलादें हैं माँ बाप पर खर्च करती हैं तो आँख दिखाती हैं कि इस महीने में हमने इतना तुमको दिया था। और अजीज़ व अकारिब पर खर्च करती हैं तो आँख दिखाती हैं, भाई पर, बहन पर, भाई के बच्चों पर, अपने सास ससुर पर, जी नहीं, फिर वहाँ शैतान तुम्हारे साथ है, वो कामयाब हो गया। और जब इन लोगों पर खर्च करो अल्लाह के राह में, यतीम गरीब सब पर, लेकिन इनमें सबसे बेहतर कुरान ने कहा माँ बाप, फिर अकरबीन है। तो कुर्बानी ने सबक दिया कि आपने गोश्त अपने लिए रखा, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए रखा और गरीब यतीम मिस्कीन के लिए रखा। तो ये सिर्फ कुर्बानी का ये सबक सिर्फ ज़िलहिज्जा तक महदूद नहीं है, बल्कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में हमा वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि जब भी अल्लाह हमें मौका देगा तो हम अपने लिए जो कमा रहे हैं उसमें हम अज़ीज़ व अक़ारिब को भी देंगे और यतीम

0: गरीब को भी देंगे। कुर्बानी का ये सबक है, कुछ भी कमाओ तो शैतानी जहन न बनने दो कि शैतान आपके दिमाग को ख़राब करे कि हमने कमाए सब मेरे लिए है। नहीं, ये फ़लसफ़े कुर्बानी ज़िलहिज्जा आपको सबक दे रहा है, और जो इस पर अमल करते हैं कि अपनी कमाई से वालदैन हैं, अज़ीज़ व क़ारिब हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, अल्लाह के राह में ख़र्च करते हैं, वो लोग दुनिया में भी खुश रहते हैं और इंतकाल के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं, दुआए खैर के साथ, नेक अमल के साथ याद करते हैं। और जो लोग इस दुनिया में रियाकारी दिखावे के लिए करते हैं, लोग पीठ पीछे कहते हैं अरे उन्होंने किया लेकिन 10 जगह कहकर मेरी बेइज्जती कर दी, उन्होंने किया लेकिन 10 जगह जाकर कहे मैं ना करता, और कभी कभी करने वाले के सामने ये बात कह देते हैं, उसके दिल को तकलीफ पहुंचती है। दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। तो फ़लसफ़े क़ुरबानी हमें सबक दे रहा है, ऐ मोमिनो तुम नमाज अल्लाह के लिए पढ़ो, क़ुरबानी अल्लाह के लिए करो, आपकी नमाज क़ुरबानी, आपकी ज़िंदगी, आपकी मौत, ये सब अल्लाह के लिए है। ये ना ख्याल करो कि मैं फलां को पाल रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, लिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाल रहा है, अल्लाह खिला रहा है, और अल्लाह का एहसान मानो कि अल्लाह ने आपके ज़रिए किसी की मदद की तो उसमें रब की रहमत शामिल हाल है, रब का करम है, एहसान अजीम है। आखिर में चलते चलते मैं फिर अपने सामेईन से कहूँगा कि हमेशा बच्चों को हज़रत इब्राहीम व इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़ियात, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर नबी करीम सल्लम तक अंबिया के एक एक वाक़े को सुनो और सुनाते रहो, ताकि दिल में अल्लाह और उसके रसूलों की, अंबिया की ताज़ीम रहे, अहले बैत के वाक़ियात, अस्हाब रसूलुल्लाह के वाक़ियात, सालहीन के वाक़ियात, अपने वालदैन के बड़े बुज़ुर्गों के दिनों को उन्हें सुनाते रहो, याद दिलाते रहो, ताकि जहन में शैतान ना दाखिल हो, बल्कि जहन व फ़िक्र में अल्लाह की रहमतें, रसूलुल्लाह की बरकतें, अज़मतें शामिल हों। अल्लाह तबारक तआला फ़लसफ़े क़ुरबानी पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौज़ समीन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफ़ी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही सबक आमोज़ बयान। आइए समात फरमाइए एक ऐलान। जुमेरात 4 जून, जी हाँ, जुमेरात 4 जून सुबह 10 बजे बैतुलनूर से मौशाल पोर्ट लुइस में आलिमा शमीमा की सरपरस्ती में एक रूहानी महफिल का एहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है।

जो शख्स अक़ल रखता है वो अक्सर खामोश रहता है। खामोशी फ़िक्र की खेती है और दिल में खोट रखना बुराई का बीज है। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ताज़गी बख्शते हैं, उसी तरह अल्लाह ताला का ज़िक्र मायूस दिलों को रोशनी बख्शता है।

माँ पर नाजमाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया है। मौज़े सामीन, माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी पुर नूर, आँखों में ठंडक, अल्फाजों में मोहब्बत, आगोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफ़क़त और पैरों तले जन्नत है।

मौज़े सामीन, इस कलाम की फरमाइश हमसे की थी शुमैगनी की अफरोज़ ने। शुमैगनी की अफरोज़ ने मरहूमा मोमिन बुदू, जी हाँ, वालिदा मरहूमा मोमिन बुदू, वालिद मरहूम अमीन बुदू और मरहूम शरीफ बुदू और बुदू फैमिली के तमाम मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब की गुजारिश की है और वो दुआगू हैं कि अल्लाह पाक बुदू फैमिली के तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इसके अलावा वाकवा से मुस्लिम चिबाई हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं और ईसा सुबानी और उनकी फैमिली पोर्टलिस से, जो कि हमेशा हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, उन्होंने दुआए मगफिरत की गुजारिश की है तमाम मरहूमीन के लिए। इसके अलावा वो उन तमाम लोगों के लिए दुआएं भेज रहे हैं जो किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं। और रहीमा नूर बख्स, सत्तार नूर बख्स, दादी फिया के लिए दुआओं की गुजारिश की गई है। जी हाँ, दुआओं की गुजारिश की है शबनीज़ ने और वो दुआगो हैं कि अल्लाह पाक मरहूमीन की खबरों में रोशनी अता फरमाए और उनकी मगफिरत फरमाए। इसके अलावा सैपुल से रेहाना और रियाज, तमाम हाजियों को जो मदीने जा रहे हैं या जो जा चुके हैं, उन सबको मुबारकबाद भेज रही हैं। और रेहाना ने एक कलाम की फरमाइश भी की है जिसे इंशाल्लाह ताला आप कल समात फरमाएंगे। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: इस समय दिन के ठीक 12 बजे हैं। आगे बढ़ने से पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई कुछ विज्ञप्तियों पर आइए नजर डालते चलें। ये विज्ञप्ति है शिवाला लेन मेबर्ग के निवासियों के लिए, जहां पर गुरुवार 4 जून को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही साथ रोज बेल के कुछ इलाके जिनमें है जिबिया रोड, मॉस्क रोड, तेलुगु लेन, शिवाला लेन, आक्यू लेन, लेटोड लेन, बागेलू लेन, पारासोल लेन, प्रिंसेस मार्गरेट लेन नंबर 1 और नंबर 2, मोफियाचिल, बारामिया, ड्रीम प्राइज, न्यू ग्रोव और कुछ इलाकों रॉयल रोड के आसपास न्यू ग्रोव में गुरुवार 4 जून को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही साथ वाले पीटो के आसपास के कुछ इलाके जिनमें है रू आलमां, एपास आलमां और सौजिए के आसपास के इलाकों में रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल बुधवार 3 जून को सुबह 9:30 बजे से लेकर दिन के 1 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। और श्वाजी पेजुकाप के निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 4 जून को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आगे का कार्यक्रम तेलुगु भाषा में प्रस्तुतिकरण है वर्षा की।
3: On the hour, every hour, Radio Mauritius.

0: 您所收听的是毛里求斯广播电台819频道。
1: 女人说，你一定要听我的。

Thank you.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम है आपकी पसंद, जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं, हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। चलिए, मंगलवार का दिन है आज और मंगलवार का ये दिन आपके लिए बेहद ही मंगलमय हो, हमारी यही कामना है। तो चलिए श्रोताओ, इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। आपकी पसंद कार्यक्रम 4028085 पे आपको हमें फ़ोन करना है, अपनों के नाम शुभकामनाएँ भेजना इसी नंबर पर, या फिर मैसेजेस भी आप भेज सकते हैं 5251700552517005 पर। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा गीत है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये प्यारा सा गीत जो है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की मीठी आवाज़ों में आप सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओ, बहुत ही बढ़िया सा गीत इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़ चुके हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हमें भेज रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप हैं रम माउंटेन की रहने वाली शकुंतला जी और उनकी भाभी है गायत्री और साथ में बेटे अजय जो कि न्यू फ्रांस के रहने वाले हैं। तो उनके नाम जो है ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेखा जी जो कि दीपने की रहने वाले हैं, हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे।

है उनके समस्त परिवार। तो सुरेखा जी की पसंद पे ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं। और हमारे साथ इस समय अनिता जी हैं जो कि पिछवेजे सैंपिया की रहने वाली हैं। ये गीत जाएगा उनके पति बालदेव जी के लिए, उनकी तीन बेटियाँ काजल, शीतल और दीक्षा, उनके दामाद है वितिश, उनके सभी बच्चों के लिए। तो चलिए अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में पुरानी फिल्म अंदाज से लिया गया ये सदाबहार गीत।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट मैं मोडारबिया की अनिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ में है करुणा, अमृता, उनके सभी दोस्तों के नाम। फिल्म दामिनी

का ये प्यारा सा गीत हम इस कार्यक्रम में शामिल करने वाले हैं। और ये गीत जो है बहुत ही प्यारा सा गीत है, कुमार सानू और अलका याग्निक की मीठी आवाज़ों में ये गीत जाएगा इन सभी परिवारों के लिए, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों के नाम भी ये प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद है रेडियो मॉरिशस पे, और ये कार्यक्रम जो है इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक चलने वाला है। तो कार्यक्रम जो है आप ही के सहयोग से चलता है, आप ही की फरमाइशें जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं, और पुराने गीत हो या नए गीत हो, गज़ल हो, हर तरह के गाने इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। तो चलिए श्रोताओं, अगर आप इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म दामिनी से लिया गया आपके लिए।

चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और अगले गाने की ओर हमारे साथ विश्वानी डुमन जी हैं, वाकवा की रहने वाली। ये अगला गीत जाएगा उनकी सहेली है शोभा। शोभा का जन्मदिन है और समस्त डुमन परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। शोभा की बेटी है मीनाक्षी, साथ में है उनके बेटे राजीव, उनके समस्त परिवार है, तो शुभकामनाएं एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत जो है हम चलाने वाले हैं शोभा जी के जन्मदिन के मौके पर। बस हमारी यही कामना है कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ये प्यारा सा गीत उनके नाम करेंगे। वैसे जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे। तो बहुत ही प्यारा सा गीत जो है हम शामिल करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। 2:50 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम है आपकी पसंद, और आपकी पसंद कार्यक्रम जो है इस समय से लेकर शाम के 4 तक ये कार्यक्रम जो है चलने वाला है। तो यूँ ही आप हमारा साथ देते रहे, हौसला बढ़ाते रहे, आपकी प्यारी प्यारी बातों से हमें हिम्मत तो मिलती ही है। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं बहुत ही प्यारा सा गीत, खास करके शोभा जी के लिए।

चलिए, कुमार सानू की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत हमारे साथ आशा जानू जी है कॉटेज की रहने वाली, ये गीत जाएगा उनकी मामा कुमारी के लिए, उनके नेफ्यूज़ है शुभम, ऋषभ, दीदी है आरती, जीजू है राज, समस्त जानू परिवार है, चित्रा जी है, भाई विजय है और साथ में है नंदिनी, जेनिता, धीरज, तो इन सभी लोगों के लिए ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं।

तो चलिए श्रोताओं, सुपहर के 3 बजने वाले हैं, आप समाचार बुलेटिन सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखने वाले हैं इसी चैनल पर।

0: एग्जैक्टली 3 पीएम देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। जनवरी 2025 से पहली जून 2026 के बीच देश में करीब 900 मिलियन रुपए से ज्यादा कीमत के मादक द्रव्य जब्त किए गए। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि के बीच सिंथेटिक ड्रग से संबंधित 1594 मामले दर्ज किए गए, जिससे 1650 गिरफ्तारियां की गई। 44 सड़क दुर्घटनाओं में शामिल 168 चालकों के ड्रग टेस्ट पॉजिटिव साबित हुए थे। इन बातों की जानकारी प्रधानमंत्री डॉ. रवीन्द्र गुलाम ने राष्ट्रीय सभा में आज विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है और नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए मई 2025 में नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल की स्थापना की गई और साथ ही संघर्ष तेज करने के वास्ते एक कार्य योजना भी लागू की गई है, साथ ही पुलिस कार्रवाइयां भी बढ़ाई गई हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों के ओवरटाइम का भुगतान इस महीने के आखिर से किया जाएगा और दमकल कर्मियों के लिए संडे अलावेंस और पब्लिक हॉलीडे अलावेंस की अदायगी शुरू हो चुकी है। इन एलोकेशंस का पूरा भुगतान वित्तीय साल 2026 के आखिर से पहले कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्विसेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा लगाए गए एक प्रेस सम्मेलन के अंतर्गत आज सुबह इन फैसलों पर चर्चा की गई। युवाओं में तंबाकू और निकोटीन का सेवन साथ ही वेपिंग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। 31 मई को मनाए गए विश्व तंबाकू रहित दिवस के संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल सोमवार को एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। विषय रहा आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। इसका उद्देश्य रोकथाम प्रयासों को मजबूत करना और विशेष रूप से युवाओं में तंबाकू, निकोटीन और वेपिंग उत्पादों से जुड़े खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल रहा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एबोला के नए वायरस से निपटने के लिए 3 नए टीके विकसित किए जा रहे हैं, जिससे अब तक लगभग 250 लोगों की मौत हो चुकी है। एक टीके पर काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव का कहना है कि इस बार एबोला का सबसे खतरनाक प्रकोप फैला है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इसके संक्रमण के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: ये है रेडियो मॉरिशस।

तो चलिए श्रोताओं, एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम है आपकी पसंद, जी हाँ, आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक रेडियो मॉरिशस पे। हमारा फ़ोन नंबर वही है 4028085, और व्हाट्सएप नंबर है 5251700005। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हुए बहुत ही प्यारा सा गीत आशा जानू जी की फरमाइश पे, ये गाने जो है समाचारों से पहले पूरा नहीं सुन पा सके, तो चलिए कार्यक्रम को जारी रखते हुए ये प्यारा सा गीत, इसे हम आशा जानू की फरमाइश पे चला रहे हैं उनके समस्त परिवारों और दोस्तों के लिए।

तो चलिए श्रोताओं अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारा सुमारू जी है कथबोन की रहने वाले। आज उनके पति सूर्यदेव जी की के जन्मदिन के मौके पर समस्त परिवारों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आई हैं और चार बेटों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण है, उत्तम, सुयश, शिवम, उनके आठ छोटे बच्चे भी है और मामा है माला जी और पापा है। वैसे सूर्यदेव जी का जन्मदिन है तो ढेर सारी शुभकामनाएं जो है माला जी की तरफ से और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। सूर्यदेव जी आप हमेशा खुश रहे, आप स्वस्थ बनी रहे, तो आपकी लंबी उम्र की कामना करते हुए ये प्यारा सा गीत जो है आपके समस्त परिवारों की तरफ से हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में।

तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। हमारे साथ हफेज जी है, लावेनिया की रहने वाली, और ये गीत जाए गांव के सभी परिवारों के लिए, उनके बेटे के लिए, साथ में बहू है, उनकी बेटी है, दामाद है, समस्त बाबा साहेब परिवार है, और ख़ास जो है उनके बेटे जिलानी के जन्मदिन के मौके पर। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत है, उनकी फरमाइश पे माता दिवस के शुभ अवसर पर उनके लाइन नहीं मिले हैं, तो उन सभी माताओं के नाम जो है ये प्यारा सा गीत बजवाना चाहती है। आप है आफेज जी, लावेनिया की रहने वाली।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम स्टूडियो की घड़ी में सपहर के 3:20 हो चुके हैं। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस समय साधना जी हैं, वैदिक ख्याल की रहने वाली हैं आप, और ये अगला गीत आपकी पसंद पे जाएगा आपके पति देवानंद के लिए। साथ में है आपके बेटे नितिश, साथ में है कुशल, करण है, और आपकी बेटियां हैं अनुषा, मंशा, नातिन है जिया, तेजल है, और नाती है, जी आपकी नातिन है जिया, साथ में है तेजल, गौरव, कियान, तस्वीक, समस्त जीवन परिवार है वैदिक ख्याल की रहने वाली। तो प्यारा सा गीत है, मिस्टर इंडिया फिल्म से लिया गया, किशोर कुमार की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत हम सुनेंगे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं श्रोताओं, और काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही प्यार के साथ निभा रहे हैं। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। हमारे साथ इस समय जो है आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप है भाई हरीश जी। भाई हरीश जी है बुबासा के रहने वाले, हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो उनकी पसंद पे ये अगला गीत, जी हाँ अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। और प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम श्रोताओं के नाम जो है, बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक गीत है ये। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना। तो इसी फिल्म से लिया गया गीत आप सुन पाएंगे सोनू निगम और अलका याग्निक की मीठी आवाज़ों में।

तो चलिए श्रोताओं, अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। फिल्म का नाम है गुमराह, और ये प्यारा सा गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ इस समय, शोभा जी है। शोभा जी है पोम्पे मुसेस की रहने वाली, ये गीत उनकी पसंद पे हम चला रही है।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं और अगला गीत फिल्म तकदीर से लिया गया है। फिल्म तकदीर से लिया गया गीत जाएगा समस्त बंधु परिवार के लिए जो कि त्रियोले के रहने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, तो ये गीत खास करके आपके लिए, समस्त बंधु परिवार के लिए। तो श्रोताओ, इस समय जो है स्टूडियो की घड़ी में सपहर के 3:35 हो चुके हैं। आपकी पसंद को हम जारी रखेंगे शाम के 4 बजे तक।

चलिए अगली पसंद की ओर बढ़ेंगे. आप हैं सरिता जी कथबोन की रहने वाली, तो आपकी पसंद पे ये अगला गीत हम सुनेंगे.

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस समय लॉन्ग माउंटेन की नारायणी जो है जुड़ी हुई है, तो चलिए उनकी पसंद पे फिल्म साथी का ये प्यारा सा गीत हम चलाएंगे।

तो बहुत ही प्यारा सा गीत है, ये गीत आप सुन सकेंगे मुकेश और साथ में है सुमन कल्याणपुर। तो इन दोनों की मीठी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत फिल्म साथ ही से लिया गया सभी सुनने वालों के लिए।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली बहस में फिल्म का नाम है मयूर पंख और ये गीत जाएगा मेबर की सोहंती, विशाल, स्वीति, कृषिका, हरवेश, राजीव, अमित साथ में है, हमारे साथ विद्यानंद जी की फरमाइश पे ये प्यारा सा गीत हम सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओं, हमारे साथ इस समय महाराज जी हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई है और उनकी बहन है श्रीमती। श्रीमती जी के जन्मदिन पर ये प्यारा सा गीत जाएगा, खास करके महाराज जी की तरफ से, और उनकी बहन है देवी। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत जो है इनकी फरमाइश पे हम चला रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ये गीत हम चला रहे हैं।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम की अंतिम भेंट में ये प्यारा सा गीत अनिता जी है त्रियोले की रहने वाले, उनके स्वर्गीय पति राज के लिए। उनकी बेटी है अंजू, दामादवेद है, बेटा है सचिन, साथ में रियांश, फिया, उनकी बहू है पूजा, रेखा है, साथ में है रेखा परिवार है, रामचंद परिवार है, बुलीराम परिवार है, जिन्या परिवार है। तो इन सभी लोगों के लिए ये प्यारा सा गीत। और इसी गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम का समय पूरा हो चला। साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए, प्यार भरे मैसेजेस के लिए। चलिए हम आपको कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कुछ ही घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं और आप तमिल भाषा में कार्यक्रम कलावाणी के साथ सुन पाएंगे।

तो चलिए जी, चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में 5:07 हो चुके हैं। आप सभी लोगों का बड़े प्यार से हम स्वागत करना चाहेंगे भूले बिसरे गीत में। जी हाँ, वैसे दोपहर धर रही है दोस्त, शायद आप घर की तरफ लौट रहे हैं या हो सकता है रसोई में शाम की तैयारी कर रहे हो। ऐसे खूबसूरत पलों में साथ दीजिए रेडियो मॉरिशस पर भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत का जहाँ हर गीत पुरानी यादों की मीठी खुशबू लेकर आ जाती है। हो सकता है कि ट्रैफिक में हो, सफ़र में हो या घर की रसोई में कुछ काम चल रहा है, तो बस हम चाहते हैं कि पूरे शिद्दत से आप हमारा साथ दीजिए। थोड़ी देर के लिए वक्त को पीछे खेले चलिए, सुनिए ये खूबसूरत सा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर, जहाँ हर सुर दिल के किसी खास कोने को छू जाता है पुराने बॉलीवुड के अमर गीतों के साथ, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

0: भोले बिसरे गीत हर गुरुवार रेडियो मॉरिशस पर भोले बिसरे
1: गीत। बहुत ही प्यारा सा नगमा था लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी जी की आवाजों में दो सितारों का जमीन पर, खासकर हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स के नाम जो साथ बड़े प्यार से दे रहे हैं। और चलिए जी, फिलहाल के लिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। और हम आपको ज़रूर कहना चाहेंगे कि कुछ गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं ही होते हैं, कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते हैं, महसूस किए जाते हैं दोस्त। तो आइए दोपहर से शाम के इस सफ़र को और भी हसीन बनाएं भूले बिसरे गीत में। बिल्कुल जी, भूले बिसरे गीत के साथ रेडियो मॉरिशस पर पुराने बॉलीवुड गाने जो आज भी दिलों में जिंदा हैं। और वैसे अगर आप किचन में हो तो जितने भी लेडीज या इवन जेंट्स हैं, अगर आप हमारा साथ दे रहे हो तो चलिए जी, ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके नाम। और बाकी जो हमारे लिसनर्स हैं, अगर आप अपने दिल की बात लिख के भेजना चाहोगे तो भेजिएगा ज़रूर ऑन 5251705 पर, बिल्कुल 5251705 पर।

0: भोले बिसरे गीत हर गुरुवार रेडियो मॉरिशस पर भोले बिसरे गीत।
1: कैसा लग रहा है ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस, ये है आपका भोले बिसरे गीत। ऐसे अगर आप स्टीयरिंग व्हील के पीछे हैं दोस्त, या घर पहुंचकर शाम के कामों में व्यस्त हैं, तो अपने साथ रखे रेडियो मॉरिशस। बिल्कुल भूले बिसरे गीत लेकर आए हैं वो नगमे जो आज भी दिल को उतनी ही खुशी देते हैं जितने की पहली बार सुनने पर दी थी। पुराने गीत, नए एहसास, भूले बिसरे गीत सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। तो चलिए जी, अगला नगमा हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी के बहुत ही डाई हार्ड फैन हैं। बहुत ही प्यारा सा गाना है, टेकन फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी, जो 1967 से लिया गया है, बेखुदी में सनम।

0: भोले बिसरे गीत हर गुरुवार रेडियो मॉरिशस पर भोले बिसरे गीत।
1: वाकई दिल से अगर आपको ये खूबसूरत नगमे अच्छा लग रहा है तो हमारे दिल को भी बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्त। एक्चुअली देखा जाए तो हर गीत के साथ जुड़ी होती है एक याद, एक कहानी या एक एहसास। कभी किसी अपने की याद, तो कभी बचपन की बात, तो कभी जिंदगी के हसीन पल। रेडियो मॉरिशस पर ये भूले बिसरे गीत के जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं, पुराने बॉलीवुड के अनमोल मोती की तरह हैं, जिन्हें सुनकर दिल खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है। तो चाहे आप हो सकते हैं सफ़र में हो या घर पर हो, तो चलिए जिन सदाबहार गीतों के साथ अपनी शाम को और भी हसीन बनाइए। और ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके नाम मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में हम लेकर आए हैं, पेश कर रहे हैं फ्रॉम द मूवी अप्रैल फूल, जो 1964 से दिया गया, आ गले लग जा।

0: भोले बिसरे गीत हर गुरुवार रेडियो मॉरिशस पर भोले बिसरे गीत।
1: बिल्कुल जी, भोले बिसरे गीत में ऐसे कुछ गीतों का सिलसिला चल रहा है आपके और हमारे बीच में, जो शायद आपके दिल को छू रहा है। बिल्कुल जी, ये वो गीत हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं सीधा दिल तक पहुंच जाते हैं। वो सुर जो कभी रेडियो पर गूंजते थे और अभी उतनी ही मोहब्बत से हम सुनते हैं, बस सुने चले जाते हैं। रेडियो मॉरिशस पर सुनिए भूले बिसरे गीत और खो जाइए बॉलीवुड के सुनहरे दौर में। एक से एक बढ़कर एवरग्रीन गाने, मधुर संगीत और यादों से भरी एक खूबसूरत महफिल हमेशा आपका इंतज़ार करता है। तो बस यूं ही साथ देते रहिए और अगला नगमा खासकर आपके लिए मुकेश दा की आवाज़ में, स्पेशली फॉर यू।

0: भोले बिसरे गीत हर गुरुवार रेडियो मॉरिशस पर भोले बिसरे गीत।
1: तो चलिए जिस खूबसूरत सफर यहीं पे समाप्त होता है आपके और हमारे बीच में भोले बिसरे गीत, हम फिर वापस लौट के आएंगे एक और खूबसूरत से भोले बिसरे गीत के इस खूबसूरत से शो को लेकर अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, बस अपना ख्याल रखना।

0: अभी हमसे।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: घड़ी मिलाइए, शाम के ठीक 6 बज रहे हैं। नमस्कार, सायंकालीन समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मेलरोज के हाई सिक्योरिटी प्रिजन में कुछ महीने पहले हुई कैदी आंदी सेल्मो की मौत के सिलसिले में गठित जांच आयोग की रिपोर्ट आज प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम के सुपुर्द की गई। जनवरी 2025 से अब तक मॉरिशस में 957 मिलियन रुपए मूल्य के सिंथेटिक ड्रग जब्त किए गए हैं। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में पीएमक्यू सत्र के दौरान दी। पीएमक्यूटी के दौरान आगामी बजट 2026-2027 पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राप्त सभी प्रस्तावों पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारत में

0: इन दिनों भीषण गर्मी का कहर। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेलरोज की हाई सिक्योरिटी प्रिजन में कुछ महीने पहले हुई कैदी आंदी सेल्मो की मौत के सिलसिले में गठित जांच आयोग की रिपोर्ट आज प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम के सुपुर्द की गई। पूर्व जज पल लाम शांगलिन ने इस रिपोर्ट में पूरा घटनाक्रम, आयोग के निष्कर्ष और कई सिफारिशें पेश की, खासकर कैदखानों में सुरक्षा और संचालन को लेकर। जनवरी 2025 से 1 जून 2026 के बीच देश में करीब 900 मिलियन रुपए से ज़्यादा की कीमत के मादक द्रव्य जब्त किए गए हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि के बीच सिंथेटिक ड्रग से संबंधित 1594 मामले दर्ज किए गए, जिससे 1650 गिरफ्तारियां की गई हैं। 44 सड़क दुर्घटनाओं में शामिल 1068 चालकों के ड्रग टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। इन बातों की जानकारी प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है और नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए मई 2025 में नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल की स्थापना की गई है। साथ ही संघर्ष तेज करने के वास्ते एक कार्य योजना भी लागू की गई है और पुलिस कार्रवाइयां भी बढ़ाई गई हैं। राष्ट्रीय सभा में आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान अन्य कई मुद्दों के साथ साथ 2026-2027 के भावी बजट पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी प्रस्तावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा। सिल्वर बैंक के संबंध में भी एक प्रश्न उठाया गया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने दावा किया कि बैंक के संदिग्ध प्रबंधन के बावजूद पूर्व वित्त मंत्री ने इस संस्था में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में 3 बिलियन रुपए के निवेश के लिए मंजूरी दी थी। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की नाजुक वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए 150 रुपए का टेलीविजन लाइसेंस फी समाप्त करने का प्रस्ताव स्थगित किया गया है। सिल्वाना पारिमामन, करुणा लालू।
1: Madam Speaker, the Ministry of Finance launched...
2: प्रधानमंत्री ने बताया कि बजट 2026-2027 एक विश्वार्थिक अनिश्चितता के माहौल में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रालयों से अपने प्रस्ताव रखते समय इसे ध्यान में रखने की मांग की गई।
1: The Ministry of Finance is currently...
2: वित्त मंत्रालय वर्तमान में सभी मंत्रालयों के साथ नीति संवाद बैठकों का आयोजन कर रहा है। मैं सभी संबंधित पक्षों को ये आश्वासन भी देना चाहता हूं कि प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों और सिफारिशों का सावधानीपूर्वक और गहनता से अध्ययन किया जा रहा है, ताकि उन्हें 2026-2027 के बजट की तैयारी और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में उचित रूप से ध्यान में रखा जाए। COVID-19 प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट फंड के बारे में जानकारी दी गई। पूर्व वित्त मंत्री ने सिल्वर बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में 3 बिलियन रुपए के निवेश को मंजूरी दी। इसके बाद 3 बार पैसे निकाले गए। ये अत्यंत चिंताजनक बात है जब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड की सरप्लस राशि को निवेश करने के लिए कमर्शियल बैंकों से कोटेशन मांगे गए थे, तो सिल्वर बैंक लिमिटेड द्वारा दी गई दर अन्य बैंकों की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा थी। उदाहरण के लिए स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ने 12 महीनों के लिए 0.75% की दर प्रस्तावित की। बैंक वन मॉरिशस ने 12 महीनों के लिए 1.25% की दर, जबकि सिल्वर बैंक लिमिटेड ने 12 महीनों के लिए 4% की दर दी, जो बहुत अधिक थी। स्पष्ट है कि कुछ असामान्य स्थिति थी, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से सिल्वर बैंक को ये फंड उस उच्च दर पर प्रदान कर दिया गया। ये सब ऐसे समय हुआ जब बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नकदी उपलब्ध थी और लगभग रिकॉर्ड स्तर पर अतिरिक्त तरलता मौजूद थी। इस समस्या के साथ अभी भी जूझ रहे हैं। ये निर्णय किसी भी वस्तुनिष्ठ वित्तीय आधार पर उचित ठहराना कठिन है। बाजार की परिस्थितियों का कोई भी समझदारी भरा मूल्यांकन ये समर्थन नहीं कर सकता कि अन्य प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक दर स्वीकार की जाए। सबसे संभावित व्याख्या ये है कि

0: ये निवेश केवल सिल्वर बैंक की वित्तीय स्थिति और उसके बैलेंस शीट को कृत्रिम रूप से मजबूत दिखाने के उद्देश्य से किया गया था। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने बताया कि 150 रुपये की टेलीविजन लाइसेंस फी हटाने का फैसला टाल दिया गया, एमबीसी की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए ऐसा किया गया। मासिक टेलीविजन लाइसेंस फी को समाप्त करने का मुद्दा सरकार के विचाराधीन है, लेकिन ऐसा कोई भी निर्णय लेते समय ये ध्यान रखना आवश्यक होगा कि एमबीसी की वित्तीय स्थिरता बनी रहे और ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसका सार्वजनिक प्रसारण का कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहे। वर्तमान में एमबीसी की वित्तीय स्थिति अत्यंत नाजुक है, इसलिए फिलहाल मासिक टेलीविजन लाइसेंस फी को समाप्त करने का निर्णय स्थगित किया गया है। ये उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जब ये सरकार नवंबर 2024 में सत्ता में आई तब उसने एमबीसी की गंभीर वित्तीय स्थिति को ध्यान में लिया। इसमें शामिल थे लगभग 1.5 बिलियन रुपये का संचित घाटा, कुल 165,005,000 रुपये का कर्ज और लगभग 1.8 बिलियन रुपये की पेंशन ओब्लिगेशन।
1: The new management of the corporation, together with the MBC board, embarked on a major transformation plan aimed at strengthening the corporation's operation, financial and public service performance.
2: Puis-je demander à l'honorable Premier ministre si le dossier de libéralisation des ondes est arrivé de télévision privée Progress?
1: They are looking into the matter. This is the commitment we have taken during the election campaign and we intend to actually oblige on this.
0: एमोरशिस के स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तलाश के बारे में एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि एयरलाइन अभी इस तरह के कदम पर विचार नहीं कर रही। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने साफ किया कि नेटवर्क और फ्लीट का मूल्यांकन किया जा रहा है। जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक VAT के तौर पर 52.2 बिलियन रुपये जमा किए गए।
3: दक्षिण अफ्रीका तब तक मॉरिशस को पूरा समर्थन देगा जब तक कि शागस द्वीप समूह की पूर्ण संप्रभुता मॉरिशस के अधीन न आ जाए। इस बात का दावा मॉरिशस के लिए दक्षिण अफ्रीका की राजदूत और कूटनीतिक कोर की डीन डॉक्टर लामालानी नेली मंजीनी ने किया। मॉरिशस में उनका कार्यकाल समाप्त होने चला है और स्टेट हाउस हजवी में गणराज्य के राष्ट्रपति धरम गोहुल के साथ एक खास मुलाकात के दौरान उन्होंने औपचारिक तौर पर उनसे विदा लिया। फागाकोना की रिपोर्ट। दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त और कूटनीतिक क्षेत्र के डीन डॉक्टर हलामालानी नेली मंजिली ने स्टेट हाउस रिज्यू में राष्ट्रपति धरम गोकुल से रस्मी मुलाकात की और उनसे विदाई ली। इस औपचारिक दौरे से ही मॉरिशस में उनके कूटनीतिक मिशन का समापन हुआ। इस बैठक की बदौलत मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंधों को मजबूत करने के चरणों पर भी बात करने का मौका मिला। राष्ट्रपति धरम गोकुल ने उन कई परियोजनाओं की सराहना की जिन्हें कूटनीतिज्ञ ने अपने कार्यकाल के दौरान साकार किया। साथ में शागस पर दक्षिण अफ्रीका का समर्थन भी मिला। डॉक्टर हलामालानी नेली मंजिनी ने कहा, मॉरिशस के साथ हमारी द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने शागस मामले को लेकर हमारे समर्थन को भी सराहा। दक्षिण अफ्रीका शागस पर मॉरिशस की प्रभुसत्ता का समर्थन करने के लिए अन्य अफ्रीकी देशों के बगल में डटा रहा। समझौते पर अंतिम निष्कर्ष तक मॉरिशस का समर्थन करते रहेंगे। ये बात उल्लेखनीय है कि डॉक्टर मंजिनी के कूटनीतिक मिशन के पूरा होने पर इस महीने के अंत में देश से वे रवाना हो रही हैं। और चलिए एक ऐसी फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करते हैं जिसकी शूटिंग सितंबर 2022 में शुरू हुई थी। निर्माता एवं निर्देशक कृष्णादत्त रामरोज की फिल्म गुरु दक्षिणा केवल भेंट देने तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन में प्राप्त ज्ञान, संस्कार और मूल्यों के लिए आभार व्यक्त करने की भावना को उजागर करती है। ये फिल्म इसी शिक्षा पर केंद्रित है जिसकी लॉन्चिंग पिछले हफ्ते MC ने फ्लैक में की गई। पूजा सुकालू।
4: फिल्म की शुरुआत होती है दादा और पोते के इस शॉट के साथ। दादा जो हमेशा से अपने नाती पोतियों की रक्षक रहे हैं, यहाँ गुरु दक्षिणा नाम के इस फिल्म में शुरू से ही अपने पोते का मार्गदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं।
5: गुरु पूर्णिमा एक बरिस में एक ही हार आवेला।
6: एक बरिस में तका

0: हे दादा, गुरु पूर्णिमा एगो खास दिन है जहाँ पर सब लड़का लोग अपन गुरु के दर्शन देके वो लोग आशीर्वाद लेने लगे।
1: निर्माता एवं निर्देशक कृष्णदत्त रामरुच की फिल्म गुरुदक्षिणा भोजपुरी भाषा, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को समर्पित एक महत्वपूर्ण सिनेमाई प्रस्तुति है। इस फिल्म की शूटिंग सितंबर 2022 में शुरू हुई थी। गुरुदक्षिणा मॉरिशस के विभिन्न मनोरम और ऐतिहासिक स्थलों पर फिल्माया गया है, जिनमें से एक देश के प्राचीन और प्रसिद्ध कोविल है, जो फिल्म को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गहराई प्रदान करता है। फिल्म का शीर्षक गुरु दक्षिणा भारतीय परंपरा में गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और समर्पण का प्रतीक है। ये केवल गुरु को दी जाने वाली भेंट नहीं, बल्कि जीवन में प्राप्त ज्ञान, संस्कार और मूल्यों के प्रति आभार व्यक्त करने की भावना को दर्शाता है।
2: दक्षिणा जब जब लेसन लोबे तो पीए कहे चला ना दू ऐसे छात्र लग हमन सा गए समय गुरु लगे शिक्षा लोबे तो छोटा से जलन सा जब बड़ा हो गलन सा तब उन लोग के अब जाए चाहेला घरे लौटे चाहेला फिर से नहीं जानी सब गुरु के शिक्षा लो भी तो गुरु की दक्षिणा देवे चाहेला ना तो गुरुआ दक्षिणा मांगेला तो इफ में गुरु कौन सी मांगेला और छात्र लोग सकेला देवे कि नहीं तो इफ फिल्मों में देखबा तो जान जाएगा।
1: हाल ही में 29 मई को एम सिनी फ्लैक में फिल्म का भव्य प्रीमियर और लॉन्च आयोजित किया गया।
3: हम मैं फिल्म में गुरु काम गुरु हैं तो हम तो बहुत साल से गुरु के काम कर रहे हैं। कॉलेज में रही तो सोचते हैं जो जवान लोग देखें सब बड़े आदमी लोग भी देखें सब तो अपन लेकर होके है शिक्षा दिए सब।
4: हम गुरु दक्षिणा में भाग ले रही, हम रोल कर ले हैं दादी के
5: फिल्म एंड गुरु के लिए फैनो अपन वन ऑफ द रिस्पेक्टेड जो तुम अनग्रह जबून एक जनूरान सर्विस सो ओकेन सो दे रहे तू।
1: गुरु दक्षिणा का मुख्य उद्देश्य हमारे पूर्वजों की भोजपुरी भाषा को संरक्षित करना और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है।
6: पूरे देश को हिला देने वाली एक त्रासदी जिसमें दो लोगों ने जान गंवाई, 24 वर्षीय मनीषा बधू और 31 वर्षीय नोविक सालेस के शव पिछले गुरुवार को युवक की गाड़ी में बरामद की गई। माना जा रहा है कि उनकी मौत कार्बन मोनोऑक्साइड की इंटॉक्सिकेशन के कारण हुई है। ये कैसे हुआ और इस गैस के क्या खतरे हैं, इस पर विस्तार अंजू राम गुलाम की इस रिपोर्ट में विवरण रजनी बिकर का।
7: कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका रासायनिक प्रतीक केमिकल सिंबल CO है, ये कार में कैसे पाया जाता है एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक विशेषज्ञ ने समझाया।
8: सासे एन मैनिफोल्ड दिस सोच पाला दिस पास डाउन इन पाइपिंग इन अ बान रेजोनेटर इन अ बान कैटालिस्ट इन एन कैटालाइजर कि ली फिल्ट्रे प्रे 60-70% सा बान कार्बन। Après, il y a les sauts ou l'échappement l'œil. Mais si il y a une addition dans ce banc de connexion, parce qu'il y en a 3 ou 4 connexions dans la ligne l'échappement, là, la fumée, là, le carbone, là, ça veut dire qu'il commence à refouler un petit peu à l'intérieur.
7: गैराज का दरवाजा बंद था। नोविक सालेस और मनीषा बधू के शवों को प्राप्त करने वाली परिजनों को कार के अंदर पहुंचने के लिए उसकी खिड़कियां तोड़नी पड़ी। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अदृश्य और गंधहीन गैस है। फिर ये 2012 मॉडल की शेवोले कार के अंदर इतनी मात्रा में कैसे जमा हो गई कि घातक साबित हुई? क्या ये AC के डक्टों के माध्यम से अंदर प्रवेश कर गई होगी?
8: Ça veut dire si vous mettez l'eau sur fond, automatiquement il vous vient l'eau sur ce système là, ça veut dire qu'il prend l'air de haut, il y a bouillon d'eau. Là où capable de faire un carbon monoxide.
7: और यदि खिड़कियाँ थोड़ी खुली हुई थी तो
8: ठीक मैं जाऊँ दें दाराज ऑटोमेटिकमा लाफी मेला पूरा होता लेते ये दो कैबिन शर्टू गेट बन व्हीकल की एंपे एंसियन जो दो दो कार्बन एंड चिपे प्लीफो।
7: कार्बन मोनोक्साइड को खतरनाक बनाने वाली बात इसका शरीर पर असर करने का तरीका है।

0: Il y a un gaz qui très rapidement absorbé à travers les poumons. Les poumons attachent-les avec l'hémoglobine 240 à 250 fois plus rapidement que l'oxygène. Il reste là et donc nos organes vitaux, le cœur, le cerveau, mais ils sont déprivés d'oxygène. C'est comme si nous payons tout. Nous payons des affaires de, disons, 10 minutes avant que les symptômes commencent.
1: इसके लक्षणों में सिर दर्द, चक्कर आना, असामान्य थकान, भ्रम और अत्यधिक नींद आना शामिल हैं। जब गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और अक्सर उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वो गंभीर खतरे में है।
0: Ben, chauffe-eau à gaz, c'est une source assez fréquente d'empoisonnement parce que l'installation a été mal faite. Peine de ventilation et gaz là peut accumuler. Nous entendez, non? Dis-moi, il allait une prendre douce et puis après 20 minutes, pas trop de sortie, à guetter, c'est une finie mort.
1: कार्बन मोनोक्साइड के मामले में हमेशा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ये मौन हत्यारा जो न दिखाई देता है न ही जिसकी कोई गंध होती है बिना किसी चेतावनी के जानलेवा साबित हो सकता है।
2: थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे जनवरी 2025 से अब तक देश में करीब 900 मिलियन रुपए से ज़्यादा की कीमत के मादक द्रव्य जब्त किए गए हैं। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाब ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता की PNQ के जवाब में दी।
3: इंडिकेट द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूजर्स thereof.
4: सिंथेटिक ड्रग की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है, न केवल मॉरिशस में बल्कि दुनिया भर में, कहा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने। प्रधानमंत्री ने इस पर स्पष्टीकरण दिया कि इन पिछले 1.5 वर्षों के दौरान कितने गाड़ी चालकों पर सिंथेटिक ड्रग संबंधी टेस्ट पॉजिटिव साबित हुए हैं। उन्होंने कहा,
3: Since January 2025 to the 1st of June 2026, police has established 1,594
4: कमिश्नर ऑफ पुलिस की ओर से सूचित किया गया है कि 2025 के जनवरी महीने से पहली जून 2026 तक पुलिस ने सिंथेटिक ड्रग से संबंधित 1,594 मामले दर्ज किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप 1,650 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस अवधि के दौरान 44 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिनमें ऐसे गाड़ी चालक संलग्न रहे जो खतरनाक मादक द्रव्य सेवन के लिए पॉजिटिव पाए गए और इनमें से 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और अन्य 6 लोग घायल हुए। प्रधानमंत्री ने इस समस्या को अधिक फैलने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया।
3: 461 vehicles have been stopped and checked, resulting in 1,068 persons being tested positive for synthetic drugs. From January 2025 to the 2nd of June 2026, police has carried out 361 crackdown operations, resulting in seizure of synthetic drugs for an amount of 957 million rupees.
4: इसके साथ साथ मादक द्रव्य और अपराध के खिलाफ राष्ट्रीय संघ दफ्तर की 224 वाली रिपोर्ट के सुझावों के मद्देनजर नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के सुझावों के अंतर्गत कार्य जारी है। इनमें मादक द्रव्य तस्करी से प्रभावित इलाकों का मैपिंग करना, संबंधित लोगों की निगरानी, कार्रवाइयों को बढ़ाना, आजसू को दिए जाने वाले माध्यम एवं उपकरण बढ़ाया जाना तथा निगरानी मिशन के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल आदि शामिल है। फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के स्तर पर सिंथेटिक ड्रग्स ऐसे पदार्थ रहे हैं जिनका इस्तेमाल 2025 में 1,100 मामलों में ज्यादा पाए गए हैं।
3: The National Agency for Drug Control is launching a study on the prevalence and determinants of synthetic drug use among secondary school students in Mauritius.
4: National Agency for Drug Control की तरफ से मॉरिशस में माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को सिंथेटिक ड्रग संबंधी सेवन पर एक अध्ययन चलाया जाएगा। दूसरी बात, नादेक एक कार्रवाई चलाएगा जिसका मकसद होगा मादक द्रव्य लेने वालों के साथ 2021 में कायम जांच के नतीजों को अपडेट करना ताकि प्रवृत्तियों के विकास को देख सके, समय के साथ बदलावों का मूल्यांकन किया जा सके और सबूतों पर आधारित हस्तक्षेप स्ट्रेटेजीज एवं नीतियां निर्धारित की जा सके। दूसरी तरफ सिंथेटिक ड्रग्स संबंधी रोकथाम को लेकर एक स्टीयरिंग कमेटी कायम की गई है। मादक द्रव्य और अपराध के खिलाफ राष्ट्रीय संघ दफ्तर की रिपोर्ट के अनुरूप नादेक स्वास्थ्य संस्थाओं और संबंधित प्रयोगशालाओं के सहयोग से एक ऐसी चेतावनी प्रणाली

0: अमल में लाएगा, जिसकी बदौलत तीव्र गति से पता चल जाए कि किस तरह के नए सिकोएक्टिव पदार्थ हैं और मादक द्रव्यों से जुड़े उभरते खतरों के चलते राष्ट्रीय संस्थाओं में शीघ्र ही जवाब मिले। मादक द्रव्यों के आयात और वितरण नेटवर्क को लेकर जांच से संबंधित सांसद किरेन के एक अतिरिक्त प्रश्न पर प्रधानमंत्री ने बताया कि मॉरिशस को अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरों की मदद मिल रही है। नेशनल ड्रग कंट्रोल मास्टर प्लान में निर्धारित तत्काल कदमों पर विपक्ष नेता जूली जोगो के एक अतिरिक्त प्रश्न का जवाब देते हुए डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ये जवाब दिया।
1: You should read the report, the master plan.
2: You should read the report, and you should read the report what it says. It says in the last 10 years, this is the toxic legacy that we've inherited from the MSM.
3: Exactly.
2: And this is what they are, you can't expect it to do overnight, what you didn't do in 10 years. But they are doing what has to be done.
4: Le Premier ministre peut-il dire à la Chambre si au niveau de la police...
0: Madak Dravya Jaisi Burai... मुख्य रूप से सिंथेटिक ड्रग राष्ट्रीय चिंता का विषय बना हुआ है। राजनीतिक विभाजन से परे होना चाहिए। जो लोग हमारे नागरिकों का हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उन्हें प्रमुख चुनौती से निपटने के लिए अपने प्रयास संगठित करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज को खतरनाक तरीके से प्रभावित कर रही है।
2: For that area, including the, I mean, in the Indian Ocean. This is that kind of collaboration we are getting through our friends from abroad.
5: स्वतंत्र आशा खबरों की ओर। मई महीने के दौरान भारत के कई प्रांतों में रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी की लहर चली। कुछ राज्यों में 48 डिग्री तक का तापमान दर्ज किया गया। इससे वहां ऊर्जा की मांगें भी काफी हद तक बढ़ी हैं। उधर जापान में भी पारा रिकॉर्ड रहा है। विधि मासी बोरन।
6: दिल्ली के निवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलना जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 4 जून तक बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ने, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। उत्तर और दक्षिण गोवा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और 4 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बाकी दिनों के लिए कोई चेतावनी नहीं है, जबकि महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। यहां गरज चमक तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को अपने नवीनतम पूर्वानुमान में कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों के भीतर केरल पहुंचने की उम्मीद है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी राज्यों के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। दूसरी ओर एक सीवियर ट्रॉपिकल तूफान ने दक्षिण पश्चिमी जापान में भारी तबाही मचाई, जिससे हजारों घरों की बिजली गुल हो गई, सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी और 9 लोग घायल हो गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने ऊंची लहरें उठने, भूस्खलन और बाढ़ की चेतावनी जारी की है, क्योंकि जांगमी तूफान सोमवार को सब ट्रॉपिकल द्वीप ओकिनावा से टकराने के बाद अब उत्तर की ओर बढ़ रहा है। क्यूशु द्वीप पर स्थित मियाज़ाकी शहर की पूरी आबादी लगभग 3.9 लाख लोगों को अपने घरों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया गया है।
5: आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर हल्की सामान्य हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान आशात और कल सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। कल दोपहर बाद दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लेटो वाले कुछ इलाकों पर हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठ सकती हैं। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 21 से 23, अधिकतम 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:39 पर सूर्योदय, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा।

0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: शोक समाचार सुनिए. नंबर 54 एवेन्यू अलामांडा, मोंसेलमेंट प्लेन दे एर्मिटाज हाइलैंड्स में. नंबर 54 एवेन्यू अलामांडा, मोंसेलमेंट प्लेन दे एर्मिटाज हाइलैंड्स में. 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड श्रीमती रूपवंती लकीराम, श्रीमती रूपवंती लकीराम, पैदाइशी नाम गंगा बिसुन, जो सांता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके अर्थी कल दिन के एक बजे इनके बेटे श्री केविन लकीराम के मकान नंबर 54 एवेन्यू अलामांडा, मोंसेलमेंट प्लेन दे एर्मिटाज हाइलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलेवैयों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. मायावराम रोड सुयाक में, मायावराम रोड सुयाक में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड श्री अदामा, श्रीमती आदामा स्वामी, श्रीमती आदामा स्वामी, पैदाशी नाम पुताया, जो सरोज नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनकी बेटी श्रीमती माला रामिया के मकान मायावरम रोड सुयाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंबा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट नून. गांधी रोड एन एस फ्लोरेंस बेलिया में, गांधी रोड एन एस लॉन्ग बेलिया में 52 साल की 52 ईयर्स ओल्ड श्रीमती देवयानी लक्ष्मण, श्रीमती देवयानी लक्ष्मण, पैदाशी नाम जहाजिया, जो बबीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी गुरुवार 4 जून को दिन के 11:30 बजे इनकी अर्थी गुरुवार 4 जून को दिन के 11:30 बजे इनके पति श्री विनोद स्तम लक्ष्मण के मकान गांधी रोड एन एस लोहा बलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन ऑन थर्सडे 4 जून. गालिया गली कास्टेल में, गालिया गली कास्टेल में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड श्री उत्तम दत्त सामनाथ, श्री उत्तम दत्त सामनाथ, जो प्रीतम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी गुरुवार 4 जून को दिन के 11 बजे इनके मकान गालिया गली का स्थल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भुइयों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन ऑन थर्सडे 4 जून. शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है.

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी चंद विज्ञप्ति सुनिए। सीईबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि इन इन जगहों में बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 3 जून 2026 को वैलीपिटो में विशेषकर हुई आलमा एपास आलमा तथा सुजिए में सुबह 9:30 बजे से दिन के 1 बजे के बीच और गुरुवार 4 जून 2026 को श्वाजी बेजुकाप तथा आसपास के इलाकों में सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों के बाद बिना पूर्व सूचित के बिजली की आपूर्ति पुनः जारी की जाएगी। इस कटौती के कारण सीबी क्षमा प्रार्थी है।

0: आज की सूचनाएं।
1: आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है हिंदी स्पीकिंग यूनियन के तत्वाधान में माध्यमिक विद्यालय हिंदी भाषण प्रतियोगिता का फाइनल चरण बुधवार 3 जून 2026 को सुबह 9:30 बजे म्यूनिसिपल सिटी काउंसिल पोर्टलिस के सभागार में आयोजित किया जाएगा। सभी आमंत्रित हैं। और मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वाधान में सत्यर्थ प्रकाश प्रचार मास के उपलक्ष में यज्ञ और सत्संग का आयोजन बुधवार 3 जून 2026 को शाम के 4 बजे से 5:30 बजे तक भरतिंडू इंस्टीट्यूट रॉयल रोड

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजले प्रभु का नाम, रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।

सादर प्रणाम देवी और सज्जनों, एमबीसी रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आध्यात्मिक कार्यक्रम है भजते प्रभु का नाम। मैं हूं देविना और हम प्रभु भक्ति, मधुर भजनों, प्रेरणादायक सुविचारों तथा आध्यात्मिक संदेशों के साथ जुड़ेंगे। ईश्वर का नाम वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। जब मन अशांत हो, तब जीवन की राह कठिन लगे, तब प्रभु का स्मरण आत्मा को शक्ति देता है। वैसे कहते हैं, जिस हृदय में प्रभु का वास होता है वहां चिंता नहीं, केवल शांति तथा विश्वास होता है। तो आइए मन के द्वार खोलिए तथा प्रभु की भक्ति में डूब जाए। प्रथम जो भजन है वो है गणेश वंदना।

श्रोताओं, भक्ति वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को भी आशा देना जानती है। जीवन में सुख तथा दुख दोनों आते हैं, परंतु जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास रखता हो वह कभी निराश नहीं होता। वैसे कहते हैं, प्रार्थना शब्दों से नहीं सच्चे हृदय से की जाती है। ईश्वर हमारे हर कर्म को देखते हैं श्रोताओं, इसलिए सदैव अच्छे विचार रखें, मधुर वाणी बोलें तथा दूसरों की सहायता करें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस पर। वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो चुका है। वैसे मनुष्य जीवन अनमोल है, धन दौलत तथा प्रसिद्धि सब यही रह जाते हैं, परंतु हमारे अच्छे कर्म तथा प्रभु भक्ति सदैव साथ रहती है। वैसे आज का एक प्रेरणादायक संदेश यह है, जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर को धन्यवाद देता है, उसके जीवन में प्रसन्नता स्वतः बढ़ने लगती है। कभी भी अपने जीवन से निराश मत होइए श्रोताओं, ईश्वर जब भी परीक्षा लेते हैं उसके साथ शक्ति भी देते हैं। बढ़ते हैं अगले भजन की ओर।

श्रोताओं, क्रोध, ईर्ष्या तथा अहंकार मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देते हैं, परंतु प्रेम, दया तथा भक्ति आत्मा को निर्मल बना देते हैं। वैसे कहते हैं, जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। हर सुबह प्रभु का नाम लेकर दिन की शुरुआत कीजिए तथा हर रात उनका धन्यवाद करके दिन समाप्त कीजिए। देखिएगा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा।

प्रिय श्रोताओं, धीरे धीरे आज का हमारा भक्तिमय सफर अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ गया। आशा है कि आज के भजनों तथा आध्यात्मिक विचारों ने आपके मन को शांति तथा नई ऊर्जा प्रदान की होगी। ईश्वर पर विश्वास रखना कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह वही देता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। वैसे जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखें, अपने परिवार तथा बड़ों का सम्मान करें, मानव सेवा को अपना धर्म बनाइए, क्योंकि मानव सेवा ही सच्ची प्रभु सेवा है। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, विदा लेते हैं इसी प्रार्थना के साथ कि प्रभु आपके जीवन को सुख, शांति, स्वास्थ्य तथा समृद्धि से भर दे। सादर प्रणाम, शुभ रात्रि।

कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ऐ शहरे मदीना, कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ऐ शहरे मदीना, गो हाजरी बार बार हो हसरत नहीं जाती। सामईन ज़ी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु। इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस से आपसे मुखातिब हैं और आपके दिल की दुनिया को मुअत्तर करने के लिए हाजिर खिदमत हैं महफिल शब प्रोग्राम के साथ। निसार अख्तर आप तमाम लोगों का दिले बेकरां से इस्तकबाल करता है। उम्मीद है ये महफिल आप सामईन की तवज्जो का बाइस बनेगी। आइए सामईन इस बज़्मे शबाना का आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत कलाम के साथ। मुलायजा फरमाइए।

चमक रहा है मदीना गुलाब जैसा, चमक रहा है मदीना गुलाब जैसा, नबी का रोज़ा भी रश्के माहताब जैसा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसी शेर के साथ हमारा आज का शबाना प्रोग्राम महफिले शब अपने अख्तिताम की जानिब रवा दवा है। माना महफिल मुख्तसर थी, मगर यकीन मानिए हर लम्हा आपकी मौजूदगी से ख़ास रहा। उम्मीद है आपने इसे ज़रूर पसंद फरमाया होगा। अब अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। नेक ख्वाहिशात के साथ हम आपसे रुख्सत हो रहे हैं। अगले मंगल की शब फिर आपसे मुलाकात होगी।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
2: रात के 9:04 हो गल बाशोटा लोग नमस्कार आदाब और रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर तुह लोग के स्वागत बातें रात्रि के सुंदर बेला बा और तोहर सुनहरा साथ बा भोजपुरी प्रेमी लोगन और संगतिया लोग उषा के नमन स्वीकार कर जा भोजपुरी तरका तोहर बरिया प्रोग्राम तोहर खातिर रोज चलेला और आज भी तोहर सेवा आज होल चलल आए तो चला रात के 11 बजे हम सात देवब जा और यहाँ पर ही नंबर घुमा हुआ कात होवे सैंक और मैसेजेस कर सके ऑन 525-7005 भेजा सकब जा तो चला आज का पहल का गीत नीरज गुप्त मधु के गावल गीत

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:14 श्रोता लोग रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर तुहर स्वागत बात एक बार फिर से। भारतीय मॉरिशस में MBC रेडियो ही नंबर वन बातें और भोजपुरी तड़का सब प्रोग्राम में है। तुहर आँखों के तारा ऐसन गीतवन की फरमाइश करा जा और अगला गीत जोन बा सोना नोयन के गावल गीत खासकर देवरानी जी खाते जन हमनी के सुनता मेबग से साथ देने खातिर धन्यवाद तोरा। और चल

0: भोजपुरी
1: तड़का।
2: रात के 9:22 हो गल बा श्रोता लोगन। जी हाँ साथी लोगन, ठंडा के मौसम त चलाल, बहुत कोई ठंडा खुशी रहेलन स त औरु कोनो बा त गर्मी के मौसम के मजा लेवेलन जा। यही त जीवन है, कभी खुशी कभी गम, कभी बारिश कभी गम। चला अगला गीत सुनीता जी खातिर जन हमने के सुना था काठो बोन से साथ देने खातिर धन्यवाद। कृषि के गावल गीत और ये गाना राजन जी खातिर जन हमने के सुना था बोबासा से।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
2: रात के 9:30 बज गल बा और श्रोता लोग भोजपुरी तड़का में अच्छा अच्छा बात करे के खूबे मन करेला तो लोग अपन हवा जा कुछ अच्छा बातें कि हमनी के कर्तव्य है हमेशा अच्छा सोचा अच्छा बोला और अच्छा सुना जा। तो चला अगला गीत भाई विशाल खातिर और एक धर्म पत्नी रीना खातिर और जितना कोई के ई बखत काम करता ई दोनों ई बखत काम करता तयकर खातिर ई गाना माचो के गावल गीत और जितना कोई ई वक्त काम करत अवन जा गाड़ी चला चला तवन जा तर खातिर ई गाना माचो के गावल गीत

hyper.

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:06 हो गल बा। तो चलो श्रोता लोग, हमने के भाई बहन लोगन, आशा करत हैं कि तोह लोग अपन शरीर के ख्याल रखत हो। स्वास्थ्य सब से बड़ा धन है। रोज के रोज व्यायाम कर जा, कोनो बोलेला कि समय नहीं मिलेला। 24 घंटा में 15 मिनट निकाला तो तोहर रूप में निखार चलाई है ना। तो चला यहाँ पर सुदेवी जी जो हमने के सुना था वाकवा से और गाना मांगा तवंजा अपन बहन संगीता खातिर। और रोहित जी जन रही बुबास है वक्त हमने के सुना था। तो चला नीरज गुप्त माधु के गावल गीत

देवी और सज्जनों, ये जो महीना है बड़ी महत्वपूर्ण बातें। 21 जून के विश्व भर संगीत दिवस मनावल जाए, परंतु ये पूरा महीना तो संगीत मास है। और 11 जून से जग के सबसे बड़ा प्रतियोगिता फुटबॉल में शुरू हुई वर्ल्ड कप 2026 जून यूएसए कनाडा और मेक्सिको में आयोजन होता। तैयार हो जा इत 4 साल में एक बार आवेला। 10:25 हो गल बा और अगला गीत सोना नोयन के गावल गीत खास कर इंद्रानी जी खातिर जोन रहेला काठो बोन और खतमनी के सुनाता गाना मांगा तवंजा अपन पति देव खातिर और बेटी अंजू खातिर।

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर

क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब घर की आटा गीला

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:43 होल बा श्रोता लोग, और यहाँ पर अगला गीत चलाओ अब जा भोजपुरी बॉयज के गावल गीत, और ही एक कार्यक्रम तोहर खातिर

और रेशमा जी जो रहीला काओ लालियान वाक्वा ये बखत हमने के सुना था और काम करा था। तो चला अगला गीत तुहर खातिर और परिवार खातिर।

दस बजकर 57 मिनट हो गल बा। इरा हर तोहर खातिर भोजपुरी तरका हर दम ऐसे ही तोहर प्यार से साथ देवब सा ई वादा बाते तो हो लोग भी वादा करे जा कि कबो MBC रेडियो के नहीं भूल बा। उषा के अनुमति देवा जा, फिर से मुलाकात होए। नमस्ते और शुभ रात्रि।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ समस्त श्रोताओं को नितुषा का करजोर प्रणाम। आप इस समय रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं एक बार फिर सुनहरे पल कार्यक्रम में। आप सबका अभिवादन स्वागत, क्योंकि आज की तारीख बहुत ही खास है बॉलीवुड के लिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आज ही के दिन एक महान, एक लेजेंडरी एक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, महान कलाकार थे वो थे राज कपूर। आज उनकी बरसी है, तो आइए इस महान कलाकार की दुनिया में आज आपको सैर कराते हैं।

राज कपूर को हिंदी सिनेमा का शोमैन कहा जाता है। उनका नाम बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। राज कपूर सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, बल्कि एक विजनरी फिल्ममेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी थे, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को दुनिया भर में एक अलग पहचान दी। उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती थी, बल्कि समाज को एक गहरा संदेश भी देती थी। उनका अंदाज, उनकी सिंप्लिसिटी और उनकी कला के प्रति लगन ने उन्हें अमर बना दिया।

राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। वे लेजेंडरी एक्टर पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे। वैसे कपूर परिवार का सिनेमा से गहरा रिश्ता था और इसी माहौल ने राज कपूर के अंदर बचपन से ही एक्टिंग और फिल्म मेकिंग के प्रति जुनून पैदा कर दिया। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था।

राज कपूर ने अपने करियर की शुरुआत क्लब बॉय और असिस्टेंट के रूप में की थी। बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद ही उन्हें एक्टर के रूप में पहचान मिलनी शुरू हुई। उनकी पहली मेजर फिल्म नीलकमल थी, लेकिन असली सफलता उन्हें बरसात से मिली। इस फिल्म ने राज कपूर को एक रोमांटिक हीरो के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और इनोसेंस चार्म ने लोगों का दिल जीत लिया।

बहुत कम उम्र में राज कपूर ने अपना स्टूडियो आरके फिल्म्स स्टूडियोज एस्टैब्लिश किया। ये उस समय एक बहुत बड़ा कदम माना जाता था। आरके बाना के तले बनी फिल्में आज भी इंडियन सिनेमा की मास्टरपीसेस मानी जाती हैं। राज कपूर की फिल्म मेकिंग स्टाइल बहुत यूनिक थी। वे आम आदमी की कहानियों को इमोशंस और सोलफुल म्यूजिक के साथ पेश करते थे। उनकी फिल्में सोशल मैसेज और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ करती थी।

0: क्यों?
1: इसलिए कि भौरा तुम्हारी हसीना उड़ाए,
0: बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना।
1: क्यों?
0: इसलिए

बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इस समय आप हमारे हम सफर बने हुए हैं सुनहरे पल कार्यक्रम में। वैसे एक्टर के रूप में राज कपूर का अंदाज बहुत अलग था। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में एक सिंपल और गरीब आदमी का रोल निभाया जो सपने देखता था और सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करता था। उनका कैरेक्टर अक्सर चार्ली चैपलिन से इंस्पायर लगता था। श्री 420, आवारा या फिर जागते रहो जैसे फिल्मों में उनका इनोसेंट और इमोशनल एक्टिंग स्टाइल लोगों के दिल में उतर गया।

डायरेक्टर के रूप में राज कपूर एक जीनियस माने जाते हैं। उन्होंने आवारा, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आइकॉनिक फिल्म्स डायरेक्ट की। हर फिल्म में उन्होंने इमोशंस, म्यूजिक और विजुअल्स का एक मैजिकल बैलेंस क्रिएट किया। उनकी फिल्में सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि सोवियत यूनियन, मिडल ईस्ट और दुनिया के कई देशों में भी बहुत मशहूर हुई। आवारा हूँ जैसे गाने इंटरनेशनल लेवल पर भी फेमस हो गए।

श्रोताओ, क्योंकि राज कपूर साहब के इतने सारे गाने हैं और इनके बारे में बस एक घंटे में कहना वो मुमकिन नहीं है, इसलिए इस श्रृंखला को यानी कि सुनहरे पल कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाएंगे अगले हफ्ते। साथ निभाते रहिएगा। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।

0: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।
1: ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा।